मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 मई सन 2026, 5:56:40 हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने वाले हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुरुआत कर रहे हैं मातृवंदना से।

समूह स्वर में अभी आपने सुनी भीष्म सिंह चौहान की देशभक्तिपूर्ण रचना। लीजिए अब सुनिए शोभा गुरटू के स्वर में ये भजन।

नरेंद्र जंजल और साथियों के स्वर में अभी आपने सुना रवि चोपड़ा का भजन। लीजिए अब सुनिए उमाकांत रमाकांत गुंदेचा के स्वर में ये भक्ति रचना।

0: सुमर।
1: अनूप जलोटा के स्वर में अभी आपने सुना भजन। इस भजन के साथ ही आज की वंदना संपन्न हुई। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए चिंतन, आलेख श्री शमसुद्दीन का है।
2: कुछ लोग सोचते हैं कि केवल पूजा पाठ करने, मस्जिदों और गिरिजाघरों में जाकर प्रार्थना करने और निरंतर शब्द कीर्तन सुनने से भगवान प्रसन्न होते हैं, किंतु ये उनका भ्रम।

0: हाँ, ईश्वर उपासना के अनेक तरीकों में से ये एक तरीका अवश्य है। कारण पूजा करने, प्रार्थना करने अथवा शब्द कीर्तन सुनने का मतलब है ईश्वर के समीप बैठना, उनके संपर्क में रहना और उनसे शक्ति, प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त करना। किंतु इसे ही अंतिम लक्ष्य नहीं समझ लेना चाहिए। संसार में दीन दुखी और गरीबों की मदद करना ईश्वर उपासना ही है। 13वीं सदी में एक बार भारत में भयंकर अकाल पड़ा। उन दिनों गोलकुंडा के मंगल बेड़ा प्रांत का कारोबार संत दामाजी पंत के जिम्मे था। वे दयालु के साथ साथ बड़े भगवत भक्त थे। भूख से पीड़ित गरीब लोगों की गुहार सुन उनका मन करुणा से भर गया। बादशाह की अनुमति लेने में विलंब होता, अतः उसके लिए रुके बगैर उन्होंने राज्य का अन्न भंडार लोगों के लिए खोल दिया। किसी ने बादशाह से शिकायत कर दी कि दामाजी ने आपकी अनुमति के बगैर सारा राज की अनाज लुच्चे लफंगों में बांट दिया है। क्रोधित होकर बादशाह ने दामाजी पंत को पकड़कर लाने का आदेश दे दिया। किंतु इसी बीच एक चमत्कार हुआ। बिठू नामक एक ग्रामीण, जिसके कंधे पर कंबल और हाथ में एक छोटी सी लाल रंग की थैली थी, बादशाह के पास आया और बोला, आपकी प्रजा भूख से मर रही थी, उससे बचाने के लिए दामाजी ने आपकी आज्ञा के बगैर सरकारी अनाज गरीबों में बांट दिया। मैं उनके अन्न पर पला, उनका एक भक्त सेवक हूं और उस अनाज का दाम पटाने आया हूं। इतना कह उसने अपनी थैली उल्टा दी और उसमें से तब तक सिक्के गिरते रहे जब तक अनाज की कीमत पूरी नहीं हो गई। बाद में दामाजी से पूछने पर पता चला कि वे ऐसे किसी व्यक्ति को जानते ही नहीं। किंतु दामाजी सब कुछ समझ गए और बोले, बादशाह बड़े भाग्यवान हैं जो स्वयं भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। कुछ लोग धार्मिक कर्मकांड और आडंबर में अधिक विश्वास करते हैं और इन्हीं को ईश्वर की उपासना समझ बैठते हैं। ये बार बार तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं और किसी भी पर्व पर पुण्य स्नान किए बगैर नहीं रहते। फिर भी इनके तन मन शुद्ध और पवित्र नहीं होते। ये मंदिर मस्जिद बनवाते और धर्मशाला अथवा अनाथालय खोलने के लिए दान देते हैं, किंतु चाहते हैं कि उनके नाम की पट्टी का वहां अवश्य लगाई जाए। तात्पर्य ये कि नाम और यश के स्वार्थ और अहंकार से प्रेरित होकर वे ये सब करते हैं। ऐसे लोगों से ईश्वर बहुत दूर रहता है। वास्तव में निस्वार्थ सेवा और शुद्ध मन से परोपकार द्वारा ही ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है। कहावत है, लघुता से प्रभुता मिले, अर्थात दीनता और नम्रता से ही बड़प्पन अर्थात ऊंचा दर्जा प्राप्त किया जा सकता है। एक बार किसी ने संत राबिया से पूछा, आपने ये दर्जा कैसे पाया? वे बोली, अपनी सारी चीजों को खुदा की चाह में डुबाकर और खुदा की इबादत कर। पुनः पूछे जाने पर, क्या मुझे भी ऐसा दर्जा मिल सकता है? वे बोली, बेशक, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ नसीहत लेनी होगी और अपनी कमी को दूर करना होगा। फिर उन्होंने मोमबत्ती, सुई और बाल लाकर कहा, देखो, मोम ये नसीहत देती है कि खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी दो। सुई की खासियत है कि वो खुद तो नंगी रहती है लेकिन दूसरों को कपड़े सी कर देती है, और रहा बाल तो उसके जैसा लचीला और हलीम अर्थात नम्र बनो। इस तरह खल्क की खिदमत में अपने को लगाकर तुम निश्चय ही इस दर्जे को हासिल करने के काबिल हो जाओगे।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख था श्री शमसुद्दीन का। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस कांड।

प्रयाग क्षेत्र को तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गंगा, यमुना तथा सरस्वती के संगम पर स्थित इस पुण्य भूमि पर पहुंचकर सबके मनोरथ सफल हो जाते हैं। ऐसी पावन भूमि के दर्शन कर श्री रामचंद्र ने परम सुख का अनुभव किया। उन्होंने सीता, लक्ष्मण तथा सखा निषादराज को तीर्थराज प्रयाग की महिमा कह सुनाई। सभी ने त्रिवेणी के दर्शन किए, वहाँ स्नान कर विधि पूर्वक शिव तथा तीर्थ देवताओं की पूजा की और फिर भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुँचे। श्री राम ने भरद्वाज मुनि को दंडवत प्रणाम किया तो मुनिराज ने उन्हें हृदय से लगा लिया। आनंदातिरेक में आशीर्वाद देते हुए उन्हें ये प्रतीति हुई कि देवी सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम के दर्शन कराकर विधाता ने उनके संपूर्ण पुण्यों का फल लाकर आंखों के सामने रख दिया है। प्रेम सहित पूजन करके भरद्वाज जी ने उन्हें कंद मूल फल खिलाए और स्नेह सनी वाणी में अपने उद्गार प्रकट किए। आपके दर्शन कर आज मेरी तपस्या, जप योग, तीर्थ सेवन और त्याग, वैराग्य सभी सफल हो गए। प्रभु दर्शन के अतिरिक्त लाभ और सुख की कोई अन्य सीमा नहीं है। जब तक मनुष्य मन, वचन और कर्म से छल कपट त्याग कर आपका दास नहीं हो जाता, तब तक कोटि उपाय करके भी उसे स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, कलाकार थे भूपिंदर सिंह। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कृषि चर्चा इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए, खरीफ धान की सिंचाई हेतु आवश्यक जल प्रबंधन, इस विषय पर जानकारी देते हुए डॉक्टर देवेंद्र कुमार कुर्रे।
1: माह मई में जल और सिंचाई प्रबंधन कृषि कार्य संबंधित कैसे किया जा सकता है? तो सर्वप्रथम फसलों की सिंचाई का प्रबंधन हेतु गर्मी की फसलें में सब्जियां, मक्का, मूंग, तरबूज इत्यादि में 5 से 7 दिन के बीच में अंतराल में हल्की सिंचाई करनी चाहिए। फलदार पौधे अगर हैं आपके पास, आम, अमरूद, नींबू इत्यादि को भी 7 से 10 दिन के बीच में गहरी सिंचाई करें। यह सिंचाई करने के दौरान सुबह जल्दी या फिर शाम को करना चाहिए ताकि वाष्पीकरण, मॉइस्चर कंजर्वेशन हेतु खेतों में मल्चिंग का उपयोग करना चाहिए, जैसे पुआल, सूखी घास है का उपयोग करना चाहिए। इससे पानी की बचत होती है, खरपतवार कम आते हैं और मिट्टी में का भी तापमान नियंत्रित रहता है। सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग करना चाहिए जिसमें

0: ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई का वह साधन है जिसमें हमें 40 से 60% तक की पानी की बचत होती है और इसमें पौधे को आवश्यक रूप में जहाँ पर ज़रूरत होती है वहीं पर पानी प्राप्त होता है। वर्षा जल संचयन की तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए। इस दौरान गर्मियों में मेड़बंदी और फार्म पॉन्ड डबरी इत्यादि की सफाई और मरम्मत भी करनी चाहिए। खेत में अगर नाली की सुविधा है तो नाली को साफ सफाई करना भी अत्यंत उपयोगी होता है। धान की फसल के लिए नर्सरी और खरीफ की फसल की भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। धान की नर्सरी के लिए पानी की व्यवस्था करना चाहिए। नर्सरी क्षेत्र को समतल करना और सिंचित रखने की तैयारी करना चाहिए। बीज उपचार का भी तैयारी कर लेनी चाहिए। जल संरक्षण हेतु मुख्य फसल के लिए समतलीकरण हेतु लेजर लेवलिंग के उपयोग करने के बाद जो खेत समतलीकरण किया जा सकता है। इससे पानी और खाद समान रूप में पौधे को मिलती है और समान रूप से फैलता है। खेत में रीज और फरो मेड़ और नाली का भी उपयोग किया जा सकता है। यदि आप सब्जी की खेती करते हैं तो रीज और फरो का भी उपयोग किया जा सकता है। इससे पानी की बचत और बेहतर जल निकास होती है। बागवानी फसलों में विशेष करके थाल बनाया जाता है जिसमें थाल के चारों तरफ मल्चिंग और ड्रिप का उपयोग भी किया जा सकता है। पशुपालन में जल प्रबंधन के लिए ठंडा और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना चाहिए। पशु शेड में पानी के छिड़काव करते रहना चाहिए और गर्म हवा से बचने के लिए ढकना भी चाहिए। महत्वपूर्ण सावधानी ये है रखना चाहिए कि दोपहर में सिंचाई ना करें, पानी की बर्बादी अधिक ना करें, अधिक सिंचाई करने से बचें और जहाँ तक हो सके जड़ में सिंचाई करने का कोशिश करें। निष्कर्ष यह है कि मई माह में सही सिंचाई प्रबंधन और जल संरक्षण तकनीक अपनाने से पानी की बचत होती है, फसल को बेहतर वृद्धि होती है और खरीफ सीजन के लिए भी की तैयारी मजबूत से होती है। खरीफ की धान की फसल के लिए आवश्यक सिंचाई वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। सर्वप्रथम अगर आपके खेत के आसपास डबरी नहीं है तो फार्म पॉन्ड या फिर डबरी निर्माण भी उपयोगी होती है। इससे वर्षा जल का संग्रहण और संरक्षण होता है और धान में उपयोग होने वाले जो आवश्यक सिंचाई है यहाँ से किया जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर वर्षा जल संचयन भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में मेड़बंदी करना, कंटूर बंडिंग करना बहुत महत्वपूर्ण होती है। खेतों में पानी रोकने के लिए छोटी छोटी नालियाँ भी बनाया जा सकता है और विशेष करके अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 5% मॉडल का उपयोग किया जा रहा है जिसमें खेत के 5% हिस्से को गड्ढा करके खुदाई करके वर्षा जल का संरक्षण किया जाता है जिससे वर्षा का अंतराल ज़्यादा होने पर जल से सिंचाई किया जा सकता है। जब हम धान की फसल के किस्मों का चयन करते हैं तो ऐसे फसलों का चयन करना चाहिए जो सूखा का सहनशील धान की किस्में हो। जैसे सहभागी धान, DRR धान 42 और छत्तीसगढ़ की विशेष छत्तीसगढ़ बरानी धान। धान कम पानी में भी ज़्यादा ज़्यादा उत्पादन प्रदान करती है। विभिन्न प्रकार की तकनीक भी हैं जिसे कम पानी में ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। जैसे SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन और डायरेक्ट सीडेड राइस एक ऐसा तकनीक है जिसमें कम पानी में अधिक उत्पादन होता है। DSR जो डायरेक्ट सीडेड राइस है उसमें रोपाई की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें पानी की भी बचत होती है। अगर आप अगला तकनीक देखें तो इसमें अल्टरनेट वेटिंग और डाइंग भी एक तकनीक होता है जिसमें खेतों में लगातार पानी की भराव ना करने के बजाय इसको बीच बीच में सुखा के बीच में गीला रखना और सुखा के रखना, यह एक विधि है जिसमें सूखने और गीला करने के चक्र को अपनाया जाता है।
1: खरीफ धान की सिंचाई हेतु आवश्यक जल प्रबंधन कृषि चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर देवेंद्र कुमार कुर्रे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सराईपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। स्पोर्ट्स स्कैन आप सुनेंगे रात 8:30 पर। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:05 पर सुनिएगा सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। सुबह 8:30 पर छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भैया में आप सुनेंगे लोक गायिका श्रीमती जयंती यादव ले भेंटवार्ता। भेंट करता होंगे नेमीचंद साहू। आप सुनेंगे इस भेंटवार्ता का तीसरा भाग पारिवारिक धारावाहिक अजी सुनिए। आप सुनेंगे सुबह 9:00 लेखिका होंगी श्रीमती प्रमदा ठाकुर। प्रस्तुति समीर शुक्ल की होगी। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:40 और रात 8:15 पर कलाकार होंगे।

जी साहू और साथी। प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर सुनिएगा सुबह 10 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण समय है दोपहर 12 बजे। हमर हाथी हमर गोठ, ये प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5 बजे। और प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियाँ सुनिएगा शाम 6:30 पर। समूहगान शिक्षा के कार्यक्रम में असमिया भाषा में समूहगान शिक्षा आप सुनेंगे सुबह 11:05 पर। साथ ही सुनिएगा समूह स्वर में सुगम संगीत। छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आप मन के गीत आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। कार्यक्रम घर आंगन में दोपहर 1:30 पर सुनिएगा आज के गोट। इसमें हमर घर हमर परिवार यही है जीवन मा सार, इस विषय पर चर्चा। साथ ही सुनिएगा डॉक्टर वीणा साहू की वार्ता पर्यावरण संरक्षण। साथ ही आप सुनेंगे बहिनी मन की चिट्ठी और गीत संगीत। शाम 5:10 पर युववाणी कार्यक्रम के आकर्षण होंगे कौशल विकास जरूरी है, इस विषय पर अपन गोट और होगा क्रम सवाल जवाब और माटी के गीत। शाम 7:21 पर कार्यक्रम चौपाल में आज की बात का विषय होगा अभी लेकर अब पानी बचाए के उद्यम। किसानवाणी में हेलो किसानवाणी आप सुनेंगे, इसमें सुनिएगा गर्मी में पशुओं की देखभाल और आहार प्रबंधन, इस विषय पर डॉक्टर निधि बंजारी वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी पशु चिकित्सालय भाटा गांव द्वारा की गई बातचीत। संचालन करेंगे चंपेश्वर गोस्वामी, प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडे। रात 9:30 पर आप सुनेंगे लोक सुधा कार्यक्रम में हल्बी गीत, कलाकार होंगे मेघनाथ पटनायक और साथी। और आप सुनेंगे कमार गीत, कलाकार होंगे भोड़ भोड़ा सूरी और साथी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर बसंत तिमोथी का वायलिन पर बजाया राग जन सम्मोहिनी आप सुनेंगे। श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद सुनिएगा रात 10 बजे। सदाबहार रखमे आप सुनेंगे सुबह 11:30 पर। चित्रपट संगीत सुनिएगा सुबह 9:15, 10:30, दोपहर 1:05, 2 बजे, 2:30, शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9:15 पर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:55 होने को हैं। आइए समाचार सुनें।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। पश्चिम एशियायाः संघर्षः दशकस्य बृहत्तमेषु संकटेषु अन्यतमः इति वर्णयन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय संसाधनेषु भारः न्यूनीकर्तुं नागरिकाणाम् आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमंत्री ह्यः गुजरातस्य वडोदरा नगरे सरदार धाम छात्रावासस्य उद्घाटनानन्तरं जनसभां संबोधयन् आसीत्।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकट में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। वडोदरा में कल सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था

0: काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाली एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों ने पी वेलु मणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडप्पडी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कृषि बदलाव से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस पहल से लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
2: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
1: खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया है। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी गिरफ्तार पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया है। 211 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। माधव तिवारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर।

एक और सुहानी सुबह में नमस्कार रायपुर लेकर हाजिर हूँ मैं सौम्या रिस्वी। आप सभी को हमारा नमस्कार। कहा जाता है श्रोताओं कि अगर कोई काम शिद्दत से करें तो कभी ना कभी वो दुनिया की नज़रों में आ जाता है। ये बात एक छोटे से गांव माउली नोंग के निवासियों पर शत प्रतिशत सही बैठती है। शिलोंग से 90 किलोमीटर

दूर स्थित इस गांव के बाशिंदों को साफ सफाई से काफी प्रेम है। गांव को साफ रखने के लिए गांव वाले कड़े अनुशासन का पालन करते हुए काफी मेहनत भी करते हैं। जब वहां की सरकार ने प्लास्टिक पर पाबंदी के बारे में सोचा भी नहीं था, तब से वहां के निवासी प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करते। थोड़ी थोड़ी दूर पर डस्टबिन रखे हुए मिलेंगे। गंदगी को इधर उधर न फेंक कर इसमें डालने का अलिखित नियम बना हुआ है। यहाँ की बेमिसाल साफ सफाई देखने लोग दूर दूर से आते हैं। इस गांव से हम सभी को पर्यावरण साफ रखने की सीख जरूर लेनी चाहिए। फिलहाल नमस्कार रायपुर का सुरीला आगाज इस गीत के साथ।

0: बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ शत प्रतिशत प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
1: नोबल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिवस पर हर साल दुनिया भर में आज यानी 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ये दिन स्वास्थ्य सेवा में नर्सों के निस्वार्थ योगदान, सेवा भाव और समर्पण को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। इस दिन का उद्देश्य है मरीजों की देखभाल और चिकित्सा क्षेत्र में नर्सों की भूमिका को सराहने और उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना। साथ ही इस दिन के महत्व पर ये बात भी उल्लेखनीय है कि फ्लोरेंस नाइटिंगल द्वारा क्रीमिया युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की सेवा और नर्सिंग को एक सम्मानजनक पेशा बनाने के उनके योगदान को याद करना। सन 1974 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिस द्वारा इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई। आज के दिन सेमिनार, कार्यशालाएं और पुरस्कार समारोह आयोजित किए जाते हैं ताकि नर्सों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया जा सके। नर्सें स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ होती हैं जो कठिन परिस्थितियों में कार्य करती हैं। हम उन्हें सलाम करते हैं।

0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं की खबरें प्रतिदिन हमें पढ़ने और सुनने मिल रही हैं। साइबर अपराध से हम कैसे बच सकते हैं, हमें मोबाइल के उपयोग के समय किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, इस संबंध में बता रहे हैं रायपुर पुलिस कमिश्नर की ओर से एडिशनल DCP क्राइम रायपुर।
1: डिजिटल अरेस्ट, इसमें ठग अपने आप को पुलिस का अधिकारी या कस्टम का अधिकारी बताकर कॉल करता है और इनके द्वारा ऐसा बताया जाता है कि आपकी निजी बैंक अकाउंट, आधार कार्ड का यूज इनलीगल एक्टिविटी में हो रहा है, जैसे हवाला का पैसे के ट्रांसफर पे या ड्रग्स के व्यापार पे, और इस प्रकार आपको भय या डर के आधार पर आपके साथ ठगी करने का प्रयास किया जाता है। इसमें आम व्यक्ति समानता डर जाता है, तब ठग उन्हें वीडियो कॉल करता है और यह बोलता है कि आप अपनी लीगल प्रोसेस के लिए एक एक्स या वाई किसी सिटी पे पिछले 2 घंटे के अंदर पहुंचिए। जब आप उस सिटी में पहुंचने में असमर्थ होते हैं, तब वह बोलता है कि जब तक लीगल प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, आप वीडियो कॉल में बने रहेंगे, और लगातार आपको डरा और धमका कर आपके साथ ठगी करने का प्रयास करता है। कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, आप हमेशा सतर्क रहें। कोई भी पुलिस ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर वीडियो कॉल पे कोई भी लीगल प्रोसेस कंप्लीट नहीं कराता। यदि फिर भी आपके साथ किसी प्रकार की ठगी होती है तो आप 1930 पर कॉल कर अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं।
2: श्रोताओं, इस संदेश के पहले जो गीत था वो था फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो से कर सलाम। वैसे सलाम उन सभी को जो सफाई अभियान में जुटे रहते हैं। ऐसे कई समूह हैं जो चौक चौराहों की सफाई करते हैं और सभी को प्रेरित करते हैं। श्रोताओं, स्वच्छता अच्छी आदत है जो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और स्वस्थ जीवन शैली के लिए ज़रूरी है। ये संक्रमण फैलाने वाले कीटाणुओं को रोककर बीमारियों से बचाती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है और हमारे आसपास के वातावरण को सकारात्मक बनाती है। वातावरण को स्वच्छ रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, फिलहाल चर्चा करें इस पर। अगर आपकी उम्र 75 साल से ऊपर है और आपकी आय सिर्फ पेंशन या बैंक ब्याज से होती है तो टैक्स भरने की चिंता ज़्यादा ना करें। ऐसे पेंशनर्स की टैक्स गणना संबंधित बैंक खुद करेगा और TDS जो भी टैक्स बनेगा उसे काट लेगा। इसके लिए अपने बैंक से संपर्क कर आयकर विभाग का फॉर्म 125 भरना होगा। इससे समय बचेगा और परेशानी भी कम होगी। दरअसल ये नया नियम ज़्यादा उम्र वाले पेंशनर्स को टैक्स संबंधी परेशानियों से मुक्त करने और उनके जीवन को आसान बनाने के लिए लाया गया है, खासकर वे बुजुर्ग जो अकेले रहते हैं या शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं। हालांकि अगर पेंशन या ब्याज के अलावा आय के अन्य स्रोत हैं तो अपने बैंक के सीनियर सिटीज़न डेस्क को बताना होगा। फॉर्म भरने के 2 तरीके हैं, अपने पेंशन वाले बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर या ऑनलाइन ये फॉर्म भर सकते हैं। ये फॉर्म हर साल एक बार जमा करना होगा ताकि बैंक को पता रहे कि छूट का लाभ लेना चाहते हैं। अगर

आपकी पेंशन और ब्याज अलग अलग बैंकों से आता है तो फॉर्म 125 लागू नहीं होगा। फिलहाल एक और गीत आपकी नज़र।

चांद कोई होगा तुमसा कहाँ। वैसे हर खूबसूरत चीज़ हमें अच्छी लगती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा गांव और शहर खूबसूरत लगे तो साफ़ सफाई रखना ज़रूरी है। आजकल डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम चल रहा है, तो हमारी भागीदारी इसमें ज़रूरी है। गीला कचरा हरे टप्पे में, सूखा कचरा नीले टप्पे में डालें। रोज़ के रोज़ हम घर का कचरा उन डब्बों में डालकर कचरा कलेक्शन करने आई गाड़ी में ज़रूर डालें। वैसे ज़रूरी है इस जानकारी पर ध्यान देना। श्रोताओं, देश में डिजिटल ठगी का शिकार होने वालों में 60% से अधिक बुजुर्ग और रिटायर्ड कर्मचारी हैं। इधर ठग भी अब OTP या बिजली बिल झांसे तक सीमित नहीं हैं। वे टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ट्राई, CBI अफसर के नाम से कॉल जैसे तरीक़ों से डराते हैं। ऐसे में बुज़ुर्ग कैसे बचें? हाल ही में आए AI चैटबॉट अभय जैसी तकनीक मदद कर सकती है। मोबाइल कंप्यूटर पर https://abhay.cbi.gov.in टाइप करें। अभय चैटबॉट पर अपना नाम, मोबाइल नंबर डालें। इस पर संदिग्ध नोटिस अपलोड कर दें। अभय AI पावर नोटिस वेरिफिकेशन चैटबॉट है। संदिग्ध नोटिस मैसेज कॉल जो CBI के नाम से आते हैं, उन्हें ये डेटाबेस से तुरंत मैच कर चेक कर देगा। CBI के अब हर नोटिस पर QR कोड होगा। अगर स्कैमर्स QR कोड वाला नोटिस भेजें तो चैटबॉट से स्कैन करते ही हकीकत पता चल जाएगी। स्कैमर्स डिजिटल अरेस्ट के दौरान कई तरीक़ों से बुज़ुर्गों को डराते हैं। ऐसी स्थिति में अभय यूज़र्स को शांत रहने और सही फैसला लेने में भी मदद करेगा। फ़िलहाल एक और गीत पेशे खिदमत है।

ये जमीन गा रही है, आसमान गा रहा है। वैसे प्रकृति तभी गाती हंसती मुस्कुराती है जब हम उसे साफ सुथरा रखते हैं। श्रोताओं, हमारी सड़कें साफ नहीं होती ऐसी बात नहीं है, हम साफ सड़क को दोबारा कचरा फेंक कर गंदा कर देते हैं। तो सड़क पर कचरा ना फेंकें, नियत स्थल पर ही कचरा डालें। डस्टबिन रखे होते हैं तो उसका उपयोग ज़रूर करें। वैसे एक पोर्टल का उपयोग वे विद्यार्थी ज़रूर करें जो मेरिट स्कॉलरशिप चाहते हैं। खबर कुछ इस तरह से है, ONGC फाउंडेशन ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए मेरिट स्कॉलरशिप की शुरुआत कर दी है। ये योजना विशेष रूप से SC ST OBC और JEE EWS वर्ग के उन मेधावी छात्रों के लिए है जो आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा में पीछे नहीं रहना चाहते। उन्हें प्रतिवर्ष 48,000 रुपये की सहायता मिलेगी। इस योजना के तहत कुल 2,000 स्कॉलरशिप दी जाएगी जिसके

ये पोर्टल खुला हुआ है। इसके लिए 15 मई तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। योग्यता है इंजीनियरिंग MBBS MBA जियोलॉजी के प्रथम वर्ष के छात्र, 12वीं या स्नातक में 60% अंक और आयु 30 वर्ष से कम, 50% स्कॉलरशिप विशेष रूप से लड़कियों के लिए आरक्षित है। आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है। सबसे पहले माय भारत स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाएं, फिर होम पेज पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर अपनी बेसिक जानकारी भरें। अपने ज़रूरी कागज़ जैसे मार्कशीट, आईडी और आय प्रमाण पत्र अपलोड करें। सब कुछ चेक करने के बाद फॉर्म सबमिट करें और आगे के लिए एप्लीकेशन आईडी को अपने पास सेव कर लें। इससे आगे आने वाली कुछ परेशानियां हो तो बचा जा सके। फिलहाल आप इसकी से बचकर कहीं नहीं जा सकते।

बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। जी हाँ, गंदगी से बच कर रहिए, नहीं तो बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। प्लास्टिक का कचरा कितना फैलता है ये हम सभी को पता है, उसके बाद भी हम प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं। बारिश जब तेज़ होती है तो नालियाँ जाम हो जाती हैं, और नाली जाम होने का मुख्य कारण प्लास्टिक का कचरा होता है। तो श्रोताओं, प्लास्टिक की थैली का प्रयोग बंद कर कपड़े की थैलियों का हम प्रयोग करें। कपड़े की थैली का प्रयोग करेंगे हम नित, पशु पक्षी संग हम सभी रहेंगे सुरक्षित। वैसे सुरक्षित भविष्य के लिए अच्छी तरह से सोचना विचारना ज़रूरी है। श्रोताओं, हर साल लाखों छात्र बेहतर रैंक प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश और सुरक्षित भविष्य के सपने के साथ कोचिंग की राह चुनते हैं, लेकिन सफलता का रास्ता केवल किसी बड़े नाम वाले संस्थान से होकर नहीं गुजरता। बिना पूरी जानकारी और बिना सही समझ के लिया गया फैसला समय, पैसा और मानसिक संतुलन तीनों पर भारी पड़ सकता है। दाखिला लेने से पहले उस संस्थान में ये ज़रूर जांच लें कि वहाँ की फैकल्टी कितनी अनुभवी है, पढ़ाने का तरीका कितना प्रभावी है, और क्या छात्रों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिलता है या नहीं। अपनी क्षमता और ज़रूरत के हिसाब से कोचिंग चुनें। ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि संस्थान क्या दे रहा है। बेहतर स्टडी मटेरियल, नियमित टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, मेंटरशिप, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग और व्यक्तिगत फीडबैक जैसी सुविधाएं छात्रों की तैयारियों को मजबूत बनाती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी केवल पढ़ाई का नहीं बल्कि मानसिक संतुलन का भी खेल है। टेस्ट, रैंकिंग, तुलना अपेक्षाओं का दबाव भीतर से तोड़ सकता है। ऐसे में ऐसी जगह चुनें जहाँ पढ़ाई के साथ काउंसलिंग, मोटिवेशन और भावनात्मक सहयोग का माहौल भी हो।

0: दसवीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
1: इस संदेश के पहले जो गीत था वो था फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन से, तू मेरे साथ साथ आसमां से आगे चल। वैसे साथ की बात निकली है तो जब जागरूक लोगों का साथ हो तो शहर को साफ सुथरा रखा जा सकता है। वैसे जब हम कार में निकलते हैं तो कचरा सड़क पर फेंक देते हैं, कोशिश करें कि कार में कोई थैली रखें और उसमें कचरा डालें और नियत स्थान पर कचरा फेंकें। पार्क में, सार्वजनिक स्थलों पर भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कचरा डस्टबिन में ही डालें, यहाँ वहाँ न थूकें। अक्सर सीढ़ियों के कोने पान की पीकों से लाल नज़र आते हैं तो सीढ़ियों को गंदा ना करें, उसकी स्वच्छता का ध्यान रखें। वैसे अभी ध्यान दीजिए रोज़गार संबंधी जानकारी पर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस के 1865 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। ख़ास बात यह है कि इस भर्ती में किसी विशेष विषय की डिग्री की बाध्यता नहीं है। किसी भी विषय से ग्रेजुएशन करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। https://bfsiscc.com/unionbankofindia.bank.in/en/common/recruitment पर जाकर 19 मई तक आवेदन किया जा सकता है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। ग्रेजुएशन का रिजल्ट 1 अप्रैल 2026 या उससे पहले घोषित होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवार ने 1 अप्रैल 2022 या उसके बाद स्नातक पूरा किया हो। आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष

एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं, हमें थमना नहीं है श्रोताओं, हम सभी को मिलकर स्वच्छता अभियान में जुटना होगा। पिकनिक स्थल या पर्यटन स्थल हम जाते हैं तो वहाँ कचरा ना फैलाएं। अक्सर हम देखते हैं कि लोग वहाँ कचरा फेंकाते हैं, खूबसूरत पर्यटन स्थलों को गंदा करते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वहाँ गंदगी ना करें। हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने गांव, अपने शहर, अपने राज्य और अपने देश को साफ सुथरा रखें। फिलहाल एक और जानकारी, डाक सेवाओं से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए रायपुर संभाग में 20 मई को डाक अदालत लगाई जाएगी। प्रवर अधीक्षक डाकघर रायपुर संभाग की ओर से सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक ये अदालत स्टेशन रोड स्थित कार्यालय में लगेगी। उपभोक्ता 15 मई शाम 5 बजे तक अपनी शिकायतें पूर्ण विवरण के साथ जमा कर सकेंगे। डाक अदालत में डाक वस्तुओं के वितरण, काउंटर सेवाएं, स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री, मनी ऑर्डर, वीपी पार्सल, एक्सप्रेस पार्सल, डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। इसके अलावा आरडी, बचत बैंक और बचत पत्र जैसी लघु बचत योजनाओं से संबंधित मामलों का भी समाधान किया जाएगा। फिलहाल ये गीत आपकी नज़र।

0: नमस्कार, रायपुर का आज का सफर बस यहीं तक। अब हमें दीजिए इजाजत, आप सभी को सौम्या रिस्वी का नमस्कार।
1: पूछो ना यार।

अभी आप सुन रहे थे सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व सरमा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल

0: करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर हेमंत बिस्व सरमा के साथ आज चार अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन चार कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलु मणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
4: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित

0: तीन गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
2: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
3: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
1: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
4: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
1: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमेरिका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज पर संपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
5: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर

0: कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जांच के लिए 3 सदस्यों की जांच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
2: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, PM नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के 1-1 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगरपालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in a bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. 4 ministers, 2 from BJP and 1 each from AGP and BPF to also take oath. ADRS former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Damdam Municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden and Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduced consumption of petrol and diesel. Stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis, Prime Minister

जम्मो श्रोता संगवारी मल्ला हमर नमस्कार। मोर भुइया में क्रम हमर संस्कृति हमर कलाकार में आज हमन लोक गायिका श्रीमती जयंती यादव के संग गोठ बात के तीसरा कड़ीला सुनबो। पिछले कड़ी में हमन लगभग 80 वर्षीय जयंती यादव जी के जीवन के जो अनुभव है वोला सुनेन। अपन गीत के माध्यम ले समाज ला एक नवा रद्दा दिखावत है जयंती जी हा। सुनहा बिहान, नवा बिहान, चंदैनी गोंदा औ दौना पान के समय ले जयंती जी हा गीत के माध्यम ले लोगन मन के दिल में जगह बनाए है। ये तीसरा भाग में फिल्मकार मनु नायक जी और लता मंगेशकर जी के साथ ओकर भेंट कैसे होइस तेला सुनबो। ता आवो सुनथन भेंट वार्ता के तीसरी कड़ी।

0: मनुनायक मनुनायक ला जानतो हाँ हाँ
1: कही देवे संदेश फिल्म बनाई
0: संदेश फिल्म बनाई
1: हाँ हाँ
0: वो समय में एक लेखक महतारी रहे हूँ
1: हाँ हाँ
0: नहीं दू जन हो गए रहे
1: हाँ
0: हाँ अब घर लली पत हो
1: हाँ हाँ
0: मनुनायक
1: हाँ
0: अब मलाई चक्रवर्ती खोजात खोजात खोजात खोजात
1: हाँ
0: वो दीपक गुरुजी मर गए बिचारा पोटिया के गा
1: दीपक चंद्राकर
0: चंद्राकर
1: हाँ हाँ
0: ओला धार के आई दीपक घर की सर कोई छत्तीसगढ़ में खोद डाल रहे गांव गांव खोद रहे दुर्ग में चले गया कहाँ कहाँ रायगढ़ चले गया बोले छत्तीसगढ़ गवा मोर पिक्चर में गवा आए बार मैं चाहत हूँ ऐसे छत्तीसगढ़ के गवैया बोला भिड़ा देते थे है ये ला हम पुलिस दीपक ला
1: हाँ
0: फिर चाहे के थे एक जन है अरे वो कर अब्बर नाम सुने वो लड़का कहाँ रहते
1: हाँ, हाँ,

0: खेरागढ़ के जेला लता मंगेशकर ला वो सिखाए रही से गुरुजी ते मोला देखे लाइस ये गाना कौन गा है।
1: अच्छा तो कही देवे संदेश में ये गीत लगाए रहे हो आप।
0: हाँ
1: अच्छा
0: ईचे गा रहे हो।
1: हाँ आकाशवाणी ले।
0: हाँ
1: अच्छा
0: ये लग गिरी से यहाँ हाँ। के सब मशीन लग गिरी से।
1: हाँ हाँ अच्छा
0: मुरली चंद्राकर घर।
1: हाँ हाँ
0: पूरा मशीन धर के गिरी से।
1: हाँ
0: वो नाम बता तो
1: बरसाती
0: भी बरसाती हाँ। अब एक जनऊ
1: बिसाहू
0: हाँ। अब एक जनऊ रही से।
1: हाँ हाँ
0: तीनों जन गेरी से
1: हाँ।
0: मोर गाना ला
1: हाँ हाँ।
0: रिकॉर्डिंग करे बर।
1: अच्छा
0: ता वो मन गेरी से
1: हाँ।
0: ता ये गाना मन ला सुने तो वो रेडियो में आए।
1: हाँ हाँ
0: तो वो रेडियो ला सुन के
1: हाँ हाँ
0: खेरागढ़ के
1: हाँ।
0: पड़ोसर आके मोला कहते बेटी ये गाना कैसे गाए है।
1: हाँ।
0: ये गाना तोला कौन ऐसे
1: हाँ।
0: गुरु जी तोला बता है और सिखा है।
1: हाँ।
0: मोर कोई गुरु नहीं है।
1: हाँ।
0: मैं अपन
1: हाँ।
0: गाथो छत्तीसगढ़िया गाना।
1: हाँ।
0: अच्छा मनु नायक
1: हाँ।
0: गाल लिपत रहे हूं। अब दीपक चंद्राकर बैल आए पड़ोसर आए बड़े जान साहब आए जनती।
1: हाँ,
0: हाँ, अरे तोर गाना गवाए बा फिल्म में।
1: हाँ, हाँ,
0: मोर फिल्म में गाना गाओ।
1: हाँ,
0: ये देई कतका बहागे मोर।
1: हाँ,
0: अब वो मनाइन बैठा
1: हाँ,
0: रहे वो मल्ला
1: हाँ,
0: मनु नाइक ला
1: हाँ,
0: भाई मनो राखी बांधे हो।
1: हाँ, हाँ,
0: अब बोला
1: हाँ,
0: का कहते मलाई चक्रवर्ती आई।
1: हाँ,
0: ले तो गा।
1: हाँ,
0: तो गायो गाना।
1: हाँ,
0: वो मन खुश हो गए।
1: हाँ,
0: तब खरोरा में होतरी से
1: हाँ,
0: शूटिंग
1: हाँ,
0: ओकर मन के।
1: हाँ, हाँ, कही देवे संदेश फिल्म के।
0: फिल्म
1: हाँ,
0: के
1: हाँ,
0: मोहम्मद रफी आए रही से।
1: हाँ, हाँ,
0: लता मंगेशकर आए रही से।
1: हाँ,
0: वाह देखियो आ लता मंगेशकर ला देखियो।
1: हाँ,
0: चित
1: हाँ, हाँ,
0: मैं कहो माँ सरस्वती देखा थो।
1: हाँ,
0: आज मैं हा रेडियो में माता ला सुने
1: हाँ,
0: कर आवाज ला गाय वो मेरी सोनरी सोनरी सोनरी दे दूंगी जान जुदा मैं तू हो नरे मैंने तुझे पड़ा दे रुमियाना होया कसु रुखपा मैं तू हो नरे मैं तोर बहुत पुजारी हूँ माता और तोरे गाना गा के मैं बहुत आज ऊंचा हूँ फिर छत्तीसगढ़ी गाना सीखी हूँ
1: हाँ
0: ता यह सब चलत रहा है
1: हाँ
0: मोहम्मद रफी।

0: देखियो कल रसीफ तो देखो ऐसे ऐसे कलाकार के संगत हो इस मूर्ते तो वो गात रहा है ओकर गाना रहा है मोहम्मद झमकत नदिया बहिनी लागे पर्वत तोर मितान रे रे भाई पर्वत तोर मितान हो ये सब अरे बाप रे ऐसे ऐसे कलाकार और माता ला छत्तीसगढ़ हिंदी बोले ला कौन ला
1: लता जी ला
0: नहीं यार छत्तीसगढ़ी गाना नहीं आयो गाय वो बोला गवाय भर लाए रही से मनु लाए का पैसा में वो गानी से के छत्तीसगढ़ी अब वो कहा पंजाबी गवैया मद्रासी गवैया आए मराठी गवैया माता हा छत्तीसगढ़ ला वो बासी साग नून चटनी वो का गानी और का गोछाई वो हमरे सॉरी हम मन का गोछा था तैसे कहा जाता तो का साग है वो नूने का वो मिर्चा का वो है गोंदली रामकलिया ओला जानी वो लता मंगेशकर
1: है तब फिर कैसे हुई
0: ओला गाना दे रही माला बिहनिया ली उगबे सूरज देवता तेरी चरणों की प्रभु जी

0: माता मोला कथे छत्तीसगढ़िया कैसे गाती है बेटी तू बता। मैं बोलो वोला टोक दे हूँ माता ला, नहीं हमारे छत्तीसगढ़ी हमें ऐसे नहीं गा माँ। तो कैसे गाती है? डर के मारे भाई, इतना बड़े कलाकार वो कर सामने में गाना कौन ला इसे लगी बेटा। तब मैं माताल बोलो देख माँ छत्तीसगढ़ ये छत्तीसगढ़ की गाना बड़ा सुरीली है। छत्तीसगढ़ में ये छत्तीसगढ़ ऐसे गढ़ माता जे में भारत ही में समाए है, ये सारी इंडिया पूरा ही छत्तीसगढ़ में समाए है। एकर पीरा ला माता हम गाथन छत्तीसगढ़ महतारी मोर, हम गाथन आर पैरी के ढार महानंदी है अपार, ओकर अंग अंग ओकर उंगरी के नख नखल हमन जोड़ के कभी मन बता बना है ऐसे तेला हमारी आवाज के माध्यम से ओला हम पिरोथन मां छत्तीसगढ़ ला, हम जागृत करथन मां छत्तीसगढ़ ला। बोले कितनी अच्छी सोच है तेरा, रिहर्सल हो 15 दिन ले रहे हो माता के साथ में, लता मंगेशकर के माता के साथ में, वही मोला पढ़ाई से माता बोला लेगदरी से बम्बे तेरी आवाज बहुत सुंदर है कि ये दादा मोर नाना लेके मैं नहीं जाऊँ मोर छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ ऐसे ही के। तब वो गाइस
1: कौन से गाना
0: बिहनिया ली उगवी सूरज देवता तेरी, मैं बोलो नहीं माँ छत्तीसगढ़ तेरी नहीं है हिंदी हो गए माँ, हिंदी में नहीं क्या गाऊं तो बच्चे बोल बेटी ऐसे है गाना गाना बिहनिया ली उगवी सूरज देवता तोर चर

0: माम लेंगे बॉम्बे।
1: अच्छा
0: धार के लेंगे।
1: हाँ
0: यही लेंगे तोर का कथे
1: मनु नायक जी है
0: मनु नायक।
1: हाँ,
0: चल ऊंचे चल कह के तोर लोग लेकर उधर के चल कह।

0: लेकिन हम माता
1: हाँ।
0: तोला तनखा मिली
1: हाँ।
0: तोर बहुत बड़े बिल्डिंग रही
1: हाँ।
0: ते वहाँ चल
1: हाँ।
0: मैं काकरो भाड़ को निम नहीं आए बेटा
1: हाँ।
0: मोर छत्तीसगढ़ महतारी
1: इंचे सेवा करूं की के नहीं
0: मोर छत्तीसगढ़ की पीरा ते का जान में बम्बई वाले मन अपन ढंग से तुम गाओ बजाओ माता राम अपन ढंग से मैं अपन छत्तीसगढ़ में एक दिन ते जागृत हो बे माता छत्तीसगढ़ में मोहूला जागृत होना है मोला पैसा नहीं चाहिए मैं पैसा तो दुनिया कमाईस आओ गाइस मगर मैं हाँ पैसा नहीं कमाई बेटा मैं सिर्फ तुम्हार मन के आशीर्वाद तुम्हार मन की प्यार ला छत्तीसगढ़ के मोर आचराम समेट के रखे तब तो बुला है का तभी तो मोर याद करतो का नहीं तो मोला कौन जानती।

0: दीदी आप मन ह बड़ सुघर जानकारी देवत हो, और हमर जो नवा पीढ़ी है, हमर छत्तीसगढ़ के जो श्रोता संगी है, हमर छत्तीसगढ़ के नोनी बाबू है, ते मन ला आप आशीर्वचन के रूप में अपन का संदेश देना चाहू।
1: ओहो हो हो, धन्य धन्य। अरे कोनो गात रथे पहली जमाना के छत्तीसगढ़ ला, हमर कतना बड़ा ये दिस है, हम देहेन छत्तीसगढ़ ला, हम गा के पीरो के बासिल खा के चटनी रोटी खा के हमार छत्तीसगढ़ ला जगा है। आज के लड़का मन हमार जैसे हम तपस्या करें अपन छत्तीसगढ़ ला जगाए, और छत्तीसगढ़ में हम फोड़ता नहीं गायन गायन ते मन

0: हाँ, रामायण गीता भागवत
1: हाँ,
0: का मैयाला
1: हाँ,
0: भगवान तक ला घलो कलाकार मन अपन बस में करथन
1: हाँ,
0: गा के
1: हाँ,
0: जन जन जन जन के दुख पीर चिन्हैया।

0: झील तो क्या है?
1: हाँ।
0: वो में डूबो।
1: हाँ।
0: उसमें डूबो।
1: हाँ।
0: माता को कैसे गाया जाता है जस गाना
1: जी?
0: अभी अभी लड़का मन गाते
1: हाँ।
0: अभी के जो गाना मन है
1: हाय
0: हाय हाय
1: मैं
0: कहा ये मन
1: हाय
0: रे मन
1: हाय
0: रे मन तोर मन कैसे लागे प्रभु तोर मन। यहाँ तो संपस है तो भगवान मन तो यहाँ है कहाँ खोजत का मंदिर में जावे वो तो स्थापना दे है तेला घंटी बजाता ना तोर में तो सबे भरे है
1: हृदय में
0: भगवान मन है तो तोर मन कैसे लागे राजा महल के भीतरी में तोर मन कैसे लागे लड़का मन ला खोजे हो। अरे मैं तो चले जाऊ मगर तू मन हो तो बढ़िया से तो गाओ।
1: हाँ।
0: ऐसे ऐसे धुलंदर धुलंदर कलाकार मन चलेगे बेटा।
1: हाँ।
0: हाँ। छोड़ छोड़ के गाना मन ला।
1: हाँ।
0: मगर वो गाना काबर बिगाड़ थो।
1: हाँ।
0: खुनुर खुनुर सुर में बोले चुटकी चटक बोले रे बैरी परिला। खुनुर खुनुर सुर में बोले चुटकी चटक बोले रे बैरी परिला। बैरी परिला चिटकु शरम न लागे परिला चिटकु शरम न लागे
1: जी। हाँ हाँ
0: ये दे जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले ले तीन जुड़ी लहर गंगा ले ले तीन ना पुण्य के मेला में जाते दुख लाय करिया तीन गंगा स्नान ले ले तीन केला चढ़ा दे तीन भेला मना ले तीन भोला भगवान काया माया के नहीं है ठिकाना काया माया के नहीं ठिकाना मिला ठेला देखा तीन।

0: एतिन
1: दीदी, बड़ सुघर आपसन गोड बात हुआ थे, बड़ सुघर जानकारी मिला थे। और हमर जो नवा पीढ़ी है, नवा कलाकार है, आपसन होए बातचीत ल सुन के जरूर प्रेरणा लीही। और आप
0: भगवान मोर,
1: हाँ
0: मोर आशीर्वाद है।
1: हाँ
0: ये अभी गात है लड़का मन,
1: हाँ
0: जैसे भी गाए,
1: हाँ
0: वो जनती आदत नहीं बन जाए।
1: हाँ

0: वो का कहते लता मंगेशकर के गाना जे गाते थे, लता मंगेशकर तो नहीं बन जाए,
1: हाँ
0: मोहम्मद रफी के गाना गाते तर मोहम्मद रफी तो नहीं बन जाए।
1: हाँ
0: मगर नहीं, जैसे भी गाते उस बच्चे लोग,
1: हाँ
0: भगवान,
1: हाँ
0: उसको सरस्वती मैया ने,
1: हाँ
0: छत्तीसगढ़ माता ने,
1: हाँ
0: कर्मादाई,
1: हाँ
0: ओला रक्षा करे
1: जी जी,
0: उस आगे बच्चा मल्ला बढ़ाए
1: जी,
0: का है
1: हाँ,
0: मोर नो है
1: हाँ,
0: वो गाना है बेटा,
1: हाँ
0: किसी कवि की कलम है,
1: हाँ
0: उसकी आत्मा
1: हाँ
0: मरना नहीं चाहिए,
1: हाँ
0: उसकी आत्मा ला मैं नहीं गात हूँ
1: हाँ
0: तो दूसरा गात है, म कोई और दूसरा गात है, कोई और दूसरा गात है,
1: हाँ
0: तो वो गाना हम मरे नहीं है,
1: हाँ
0: वो नहीं मरे है
1: हाँ
0: जे लिखे है कलम से,
1: हाँ
0: वो मरे नहीं है,
1: हाँ
0: उसकी आत्मा जी रहे,
1: हाँ
0: उसकी आत्मा
1: अक्षर अमर है,
0: अमर
1: गीत
0: है,
1: अमर है,
0: गीत अमर है।
1: हाँ
0: हाँ गाना अमर करत है लइका मन भगवान।

जयंती यादव जी, आप मन हमर श्रोता मन ला अपन जीवन के अनुभव ला गीत के माध्यम ले कैसे आप मन समाज ला नवा रद्दा दिखाए हो और नवा पीढ़ी ला गीत संगीत लोक गायकी के शिक्षा दे के वो मन ला घलो ये लोक गायन की परंपरा ला आगे बढ़ाए के प्रेरणा दे हो, हमन ला समय दे हो, स्टूडियो में आए हो, एक हर बराप ला बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां में अभी आप सुन रहे थे लोक गायिका श्रीमती जयंती यादव ले भेंट वार्ता, भेंट करता थे नेमीचंद साहू। आप सुन रहे थे इस भेंट वार्ता का तीसरा भाग। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9 बजे हैं। प्रस्तुत है पारिवारिक धारावाहिक अजी सुनिए। लेखिका हैं श्रीमती प्रमदा ठाकुर। प्रस्तुतकर्ता हैं समीर शुक्ला।

0: जरूरत है जरूरत है जरूरत है।
1: बंद कीजिए बंद कीजिए अपना ये आलाप। सुबह से एक ही जगह आपकी सुई आकर अटकी हुई है, बंद कीजिए। ओफो श्रीमती की कलावती की, मैं पूछती हूँ सुबह सुबह और कोई गाना नहीं मिला जो ऐसे बेहुदा गाना गा रहे हो?
2: अरे रंजना डार्लिंग, आप इसे बेहुदा गीत कह रही हो?
1: और नहीं तो क्या?
3: अरे अपने जमाने का ये गीतमाला का सरताज गीत रह चुका है, और मेरी जान इसे तो मैं तुम्हारी शान में गा रहा था।
1: अच्छा हा? मेरे शान में गाने को कोई और गाना नहीं मिला आपको? जनाब ऐसे गाने में नारी जाति के प्रति भावनात्मक शोषण की बू आती है, बू।
2: अरे अच्छा
1: हाँ,
2: क्या तुम फिल्मी गानों पर रिसर्च कर रही हो?
1: नहीं।
2: अरे भाई अभी तक तो लोगों को गीतों के माध्यम से प्यार मोहब्बत मिलन जुदाई वफाई बेवफाई देशभक्ति भाईचारे
1: अच्छा?
2: और भक्ति भावनाओं की अनुभूति होती थी।
1: ओ।
2: अब तुम्हारी डिस्कवरी से लोगों को सुगंध दुर्गंध भी आने लगी। वाह वाह वाह क्या बात है।
1: हर बात को मजाक में मत डालिए। मैं पूछती हूँ जो श्रीमती कलावती होगी गुणवती होगी उसकी तो पूजा होनी

0: कि उससे सेवा लेनी चाहिए। और हमारे धर्म शास्त्रों ने भी कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है।
1: हाँ हाँ हाँ भगवान, तुम्हारा तर्क सही है, लेकिन अब वो जमाना तो रहा नहीं जहाँ पर औरतों को घर पर बिठा कर पूजा करें। अरे भाई, ये सब तो माता दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवियों के लिए लागू होता था।
0: क्या? अच्छा, मैं तुमको चुड़ैल दिखती हूँ? चुड़ैल दिखती हूँ?
1: अरे भला, मैं ऐसा क्यों समझूं? तुम तो मेरी हीर हो, शीरी हो।
0: हाँ हाँ, तभी तो आप अपनी हीर से, शीरी से इतनी बेरुखी अपना रहे हैं।
1: बेरुखी? तौबा, मैं तुमसे बेरुखी अपना रहा हूँ? भला बताओ तो, मेरे जैसा रहम दिल पति तुम्हें चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा।
0: हाँ हाँ हाँ, तभी तो आज 4-5 दिनों से मैं बर्तन साफ कर रही हूँ, झाड़ू पोछा लगा रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, लेकिन कभी आपने मेरी इतनी सी भी हेल्प करी है। ऊपर से हर आधे घंटे में चाय की रट लगाते हैं।
1: रंजना डार्लिंग, भाई तुमने बसंती को काम से क्यों निकाल दिया? अरे थोड़ी पगार ही तो बढ़ाने को कहा था।
0: ओ,
1: उसे बढ़ा दिया होता अच्छा। तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों होती है?
0: पगार बढ़ा देती, पैसे क्या पेड़ में लगे होते हैं जो उसे तोड़कर दे देती।
1: अरे तुम तो पेड़ पर फले मुनगा तोड़कर नहीं देती, पैसे क्या खाक देती।
0: हाँ हाँ, खूब पैसे देते हैं आप, जो लुटा देती। कैसे घर चलाती हो इसे मैं ही जानती हूँ। आपको क्या पगार बढ़ा दो, हर साल यही रोना है।
1: भाई अब हर साल महंगाई बढ़ती है तो उसकी पगार भी बढ़नी चाहिए ना।
0: क्यों
1: भाई? देखो, जब हमें जरूरत होती है हम भी अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए धरना, हड़ताल, प्रदर्शन सभी तो करते हैं। भाई हम लोग भी अपनी सुविधाओं और अपने हक की मांग पर जोर देते हैं। भाई वही काम बसंती ने किया। अब तुमने उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई तो उसने भी काम बंद कर दिया।
0: हाँ हाँ, अब आप तो मुझे ही दोषी समझेंगे।
1: नहीं रंजना, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, पर देखो कॉलोनी की सभी महिलाओं ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी
0: तो,
1: और वो सबके घर काम पर आती है। अब तुम्हें भी इस पर गौर तो करना चाहिए ना।
0: अच्छा, अब मुझे बसंती के आगे झुकना पड़ेगा? बसंती के आगे?
1: अब बिल्कुल, अगर उसकी मांग जायज हो तो।
0: मुझे आपसे बहस नहीं करनी है, ना ही मेरे पास समय है, ऊपर से खाना भी नहीं बना है।
1: ओ भाई डार्लिंग, छोड़ो भी, खाना तो बाद में बन जाएगा। प्लीज तुम मेरा ये दो जीन्स और टी शर्ट धो देना।
0: क्या कहा आपके? ये 2-2 किलो के जीन्स धोना मेरे पास की बात नहीं है? दिन भर कोलो की बैल की तरह पिस रही हूँ और आपका कपड़ा भी धोऊं?
1: रंजना डार्लिंग, किसी विद्वान ने कहा है कि हर भारी चीज हल्की हो जाती है यदि प्रेम उसे उठाने वाला हो, तो फिर ये जीन्स क्या है?
0: फिर तो जाइए उसी विद्वान से अपना ये भारी भरकम जींस शर्ट तुलवाइए, जाइए।
1: अरे अरे भाई, तुम तो डार्लिंग बुरा मान गई। तुमने देखा नहीं डिटर्जेंट सोप के मॉडल कितने मुस्कुराते हुए कपड़े धोती है, कितनी खिली खिली सी रहती है। और आहा, क्या बात होती है उनमें, हर काम को एंजॉय करके करती हैं।
0: अच्छा, तो ऐसा एंजॉय आप भी कर लीजिए ना। और हाँ, खिली खिली सी इसलिए रहती है क्योंकि उनके बाजू में सलमान खान होता है।
1: अजी, हम भी तो तुम्हारे सलमान खान हैं क्यों?
0: आप सलमान खान नहीं, अमजाद खान लगते हैं। मैं पूछती हूँ, आप कपड़े खुद नहीं धो सकते?
1: रंजना डार्लिंग, वे कहते हैं ना, हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है, ये तो तुम मानती हो ना?
0: हाँ मानती हूँ।
1: बस तुम भी ये समझ लो कि मेरी सफलता के पीछे भी तुम्हारा हाथ है।
0: कैसे?
1: जरा अपने कर कमलों से इसे धोकर आयरन कर देना। कल अपने प्रोजेक्ट को लेकर मेरे बॉस के सामने मेरा प्रेजेंटेशन है, और फिर देखना बेगम साहिबा, मेरा प्रमोशन निश्चित है।
0: ओहो, आप समझी, सुबह से जो आप श्रीमती जी का राग आलाप रहे थे, है ना? कान खोलकर सुन लीजिए, मैं उन औरतों में से नहीं जो अपनी थोड़ी सी तारीफ सुनकर

0: बोली नहीं समाती और खुद के शोषण पर उतारू हो जाती है।
1: अच्छा, क्या बात है। पति की सेवा करना तुम्हें शोषण लगता है? और मर्द जो दिन रात मेहनत करके कमाता है, उसकी कमाई से गुलछर्रे उड़ाना मर्द का शोषण नहीं है?
0: अब आप बात को रबड़ की तरह खींच रहे हैं।
1: और तुम उसे गेंद की तरह पटक पटक कर उछाल रही हो, उसका क्या? रंजना, देखो तो कौन आया है।
0: और कौन होगा, रमेश भाई होंगे। यहाँ धुआं उठा नहीं कि चले आए फायर ब्रिगेड लेकर। भगवान जाने कौन सी टेलीपैथी है। हमारी बहस हुई नहीं कि लोग अदालत की तरह चले आते हैं। मुझे नहीं खोलना दरवाजा।
1: हाँ हाँ, तुम क्यों खोलोगी दरवाजा, तुम्हारा शोषण जो होगा।
0: हाँ।
1: अरे यार रमेश, अरे आओ भाई, आओ यार।
2: अरे क्या बात है मियाँ, तौलिया में नजर आ रहे हो, नहाने जा रहे थे क्या?
1: नहीं यार, कपड़े धो रहा था।
2: क्यों, काम वाली छुट्टी पर है? पर मैंने तो उसे अभी शर्मा जी के घर जाते देखा है।
1: दरअसल उसने हमारे यहाँ काम करना बंद कर दिया है, या समझो तुम्हारी भाभी ने ही उसे छुड़ा दिया है।
2: अच्छा, भाभी जी ने उसकी छुट्टी कर दी, भला क्यों? क्यों उसने चोरी ओरी की है क्या?
1: नहीं यार, वो तो बड़ी ही ईमानदार काम करने वाली बाई है। उसने पगार बढ़ाने की बात की और हमारी मैडम जी ने उसकी छुट्टी ही कर दी।
2: भाभी जी नमस्ते।
0: नमस्ते रमेश भाई।
2: ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आपने बसंती को काम से निकाल दिया?
0: नहीं रमेश भाई, मैंने निकाला नहीं है, उसकी पगार नहीं बढ़ाई, बस इसलिए।
1: पगार नहीं बढ़ाई मगर हम दोनों के बीच लड़ाई अवश्य बढ़ गई।
2: तुमने फिर भाभी से झगड़ा किया?
1: इस बार झगड़ा नहीं, आर पार की लड़ाई है। मैडम कहती हैं उनका भावनात्मक शोषण होता है।
0: हाँ हाँ होता है, घर का काम इतना बढ़ गया है, ऊपर से जनाब कहते हैं कि उनके कपड़े भी मैं ही धो। अब बतलाइए रमेश भाई, घर का बर्तन, झाड़ू पोछा, रसोई सब करने के बाद भी ये कहते हैं इनके कपड़े भी धो। अब ये तो सरासर शोषण है ना। ऊपर से घड़ी घड़ी मैं इन्हें चाय भी पिलाऊ। मैंने कहा अपने कपड़े आप खुद धोइए, तो इसमें बुरा क्या है? आप मुझे हेल्प नहीं कर सकते, पर खुद का काम तो कर सकते हैं ना।
2: हाँ यार रंजन, अपना काम तुम्हें खुद करना चाहिए। वैसे तो यार तुम्हें भाभी जी के काम में भी हाथ बटाना चाहिए।
1: अब तुम भी यार उसी का पक्ष लेने लगे।
2: रंजन मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन घर गृहस्थी के काम में यदि थोड़ा सहयोग पति का भी मिल जाए तो काम का बोझ हल्का तो होगा, शिकवा शिकायत भी दूर हो जाती है।
0: यही तो मैं भी कहती हूँ, मगर इन्हें तो अपने मर्द होने का गुमान होता है।
1: अरे यार रमेश भाई, तुम्हारी भाभी का भी जवाब नहीं। मैं जब भी इनके लिए कोई गीत गुनगुनाता हूँ, इन्हें लगता है कि मैं अपना मतलब साध रहा हूँ।
2: अच्छा, कौन सा गीत गा रहे थे मियाँ? कहीं मेरे सामने वाली खिड़की में।
1: अरे तौबा करो, अरे ऐसे गाने में तुम्हारी भाभी मुझे छक्का मारकर आउट कर देती। मैं तो गा रहा था, जरूरत है जरूरत है जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की।
2: अरे यार, बड़े दिनों के बाद तुम्हारे मुंह से यह गाना सुना। वैसे गीत माला का सरताज गीत था ना यह, अपने दौर का
0: रहा होगा, लेकिन अब इसे मेरे सिर का सरताज मत बनाओ।
2: अच्छा अब बस भी करो भाई रंजन, यार तुम बसंती को काम पर बुला लो।
1: भाई मैं तो तैयार हूँ, जरा अपनी भाभी से पूछो।
0: लेकिन मैं उसके पैर पड़ने नहीं जाऊंगी। हाँ
2: भाभी जी, आप क्यों पैर पड़ेंगी? मैं जाऊंगा उसके पास, देखिए मैं कैसे चुटकी में पटाता हूँ उसको।
1: तुम जाओगे बसंती के पास?
2: हाँ हाँ, मेरा कहा नहीं टालेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम भाभी के काम में हाथ नहीं बटाओगे।
0: सच भाई साहब, आप जाओगे बसंती को बुलाने?
2: हाँ भाभी, लेकिन एक शर्त है।
0: क्या?
2: आप उसकी पगार बढ़ा दीजिए, महंगाई के साथ साथ उसकी भी जरूरतें बढ़ गई हैं, और आप भी इसे अनदेखा नहीं करेंगे।
0: ठीक है भाई साहब, चलिए मैं आप सब के लिए चाय बनाती हूँ।
2: भाभी जी आज चाय आप नहीं बनाएंगी।
0: क्यों?
2: मैं बनाऊंगा।
0: ओ,
2: अदरक इलायची डालकर कड़क पहाड़ी चाय।
1: वाह वाह, और मैं भी बनाऊंगा पकौड़े कुरकुरे लज्जतदार।
0: अच्छा,
2: तो फिर हो जाए साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना।

अभी आप सुन रहे थे पारिवारिक धारावाहिक अजी सुनिए। लेखिका थी श्रीमती प्रमदा ठाकुर, प्रस्तुतकर्ता थे समीर शुक्ल, प्रतिभागी कलाकार थे संजय पांडे, सुमिता रॉय बर्मन और श्याम वर्मा। यह आकाशवाणी का रायपुर और सराईपाली केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, ऐसे कई हिंदी फिल्मी गीत हैं जिसके गीतकार और संगीतकार दोनों एक ही व्यक्ति रहे हैं। तो चलिए आज कुछ ऐसे ही गीत सुनते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत फिल्म शहीद के इस गीत से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, गीत और संगीत प्रेम धवन का है।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: लीजिए सुनिए फिल्म नदिया के पार का गीत, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन, आवाजें हेमलता और जसपाल सिंह के।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: लीजिए अब सुनिए फिल्म बरेली की बर्फी का गीत। इस गीत में स्वर, गीत, संगीत तीनों ही और को का है।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अरिजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म आशिकी 2 का गीत। गीतकार और संगीतकार थे मिथुन।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: लीजिए अब सुनिए जुबिन नौटियाल और असिस कौर की आवाजों में फिल्म शेरशाह का गीत। गीतकार और संगीतकार हैं तनिष्क बागची।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:40 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज कलाकार हैं शैलजी साहू और साथी। पहले सुनिए शैलजी साहू और सावित्री कहार के स्वर में ये गीत।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: लीजिए अब सुनिए नकुल जायसवाल, शैलजी साहू और सावित्री कहार के स्वर में ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थे शैलजी साहू और साथी। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। एक सूचना सुनिए। गुरुवार 14 मई 2026 को कार्यक्रम बिंदिया में प्रसारित होने वाले फोन इन फरमाइश कार्यक्रम हेलो बिंदिया के लिए श्रोताओं के फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग मंगलवार 12 मई 2026 यानी आज सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक की जाएगी। इसके लिए हमारा फ़ोन नंबर इस प्रकार है

4000384 और 4003484। रायपुर के बाहर के श्रोता एसटीडी कोड 0771 लगाना ना भूलें। हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

0: यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। प्रदेश में राशन कार्डधारी परिवारों को अप्रैल से जून महीने तक आवंटित खाद्यान्न के एकमुश्त वितरण की समय सीमा बढ़ाकर 15 मई कर दी गई है। और जांजगीर चांपा जिले के धुरकोट गांव में तरबूज खाने के बाद एक बच्चे की मौत और 3 अन्य बच्चों के बीमार होने का मामला सामने आया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। कल वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। यह जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। प्रधानमंत्री ने स्कूलों से भी आग्रह किया कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था पर काम करें। साथ ही उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि जब तक हालात सामान्य न हो सोने की खरीदी न करें। केंद्र सरकार ने कहा है कि किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद की कोई कमी नहीं है और देश के पास 60 दिन के कच्चे तेल, 60 दिन के प्राकृतिक गैस और 45 दिन के एलपीजी का भंडार है। यह जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में पश्चिम एशिया पर मंत्रियों के अनौपचारिक समूह की 5वीं बैठक के दौरान दी गई। बैठक में संघर्ष में नवीनतम घटनाक्रमों का जायजा लिया गया और जनता पर इसके न्यूनतम प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए देश की तैयारियों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के उत्कृष्ट रखरखाव में देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया है। मध्यप्रदेश के सीहोर में आयोजित योजना के रजत जयंती समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य को सम्मानित किया। राज्य की ओर से पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह और प्रमुख अभियंता के कटारे ने पुरस्कार ग्रहण किया। प्रदेश में अब तक 32,000 किलोमीटर लंबी 8,000 से अधिक सड़कों का नवीनीकरण किया जा चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दूसरे चरण और तीसरे चरण के सभी कार्य पूरे हो चुके हैं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा राशन कार्डधारी परिवारों को अप्रैल से जून महीने तक आवंटित खाद्यान्न के एकमुश्त वितरण की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब हितग्राही को 15 मई तक एकमुश्त राशन का वितरण किया जाएगा। खाद्य विभाग

0: विभाग ने सभी उचित मूल्य के दुकानदारों और संबंधित अधिकारियों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। खाद्य विभाग ने राशन कार्डधारी परिवारों से अपील की है कि वे समय रहते अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर लें। नगर पालिका और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन कार्यक्रम जारी होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं वहां रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। चुनाव प्रचार में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। लंबे चोंगे वाले लाउडस्पीकरों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। चुनावी सभाओं और प्रचार वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। जांजगीर चांपा जिले के धुरकोट गांव में तरबूज खाने के बाद एक बच्चे की मौत और तीन अन्य बच्चों के बीमार होने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर जन्मेजय मोहबे ने तत्काल स्वास्थ्य विभाग की टीम और एसडीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए। बीमार बच्चों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है और उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। प्रशासन ने तरबूज के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर में 10वीं और 12वीं की प्रवीण सूची में स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उनकी सफलता के अनुभव और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। प्रदेश में राशन कार्डधारी परिवारों को अप्रैल से जून महीने तक आवंटित खाद्यान्न के एकमुश्त वितरण की समय सीमा बढ़ाकर 15 मई कर दी गई है। और जांजगीर चांपा जिले के धुरकोट गांव में तरबूज खाने के बाद एक बच्चे की मौत और तीन अन्य बच्चों के बीमार होने का मामला सामने आया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर।
2: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

शिक्षा ज्ञान के लिए होनी चाहिए। इस उक्ति के प्रकाश में लोक कल्याणकारी सरकारें नित नई योजनाओं को लागू करती हैं। इसी के तहत नई शिक्षा नीति पूरे देश में लागू की गई है। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है कि एक

0: पुराने ढर्रे पर चलने वाली शिक्षा नीति केवल कुछ क्षेत्रों में ही रोजगार के अवसर प्रदान कर पाती है, जबकि परिवर्तित नीति बहुत सारे शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को विकसित करती है। भारत एक प्रगतिशील देश है, यहाँ की एक बड़ी आबादी आज भी रोजी रोटी के संघर्ष से जूझ रही है। ऐसे में जमीनी स्तर पर शिक्षा के प्रचार प्रसार की अत्यंत आवश्यकता है। बात यदि हम अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति एक समान नहीं है और न ही समान संसाधन है। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला किया है कि हर वो विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा पाना चाहता है उसे मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना का लाभ दिया जाएगा। आज ये योजना प्रदेश भर में लागू है। इस संबंध में और अधिक जानकारी दे रहे हैं छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के सहायक महाप्रबंधक व्यवसाय एवं सांख्य श्री अमरजीत सिंह खनुजा।
1: मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना छत्तीसगढ़ शासन की उच्च शिक्षा हेतु ब्याज का अनुदान देने की योजना है। यह योजना तकनीकी एवं व्यावसायिक उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम हेतु लागू होती है। योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना है। इस योजना में अधिकतम 4 लाख तक के ही शिक्षा ऋण पात्र होते हैं। हितग्राही की पात्रता के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं हो सकती है। योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान मॉरेटोरियम अवधि के पश्चात जो ब्याज लगता है उस पर देय होता है। ब्याज अनुदान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 100% अर्थात 100% छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा वहन किया जाता है। अन्य जिलों में 1% जो है वो विद्यार्थियों को देना पड़ता है और 99% राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ऋण किस्तों का नियमित भुगतान करना अत्यंत आवश्यक है। यह योजना ड्रॉप आउट निष्कासित विद्यार्थियों को योजना का के लिए नहीं है, उनको इसका लाभ नहीं मिलता है। जितने भी उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम है उसके लिए लागू है और जितने भी संस्थान है लाइक IITs, IIMs, NITs और एम्स, MCI, DCI, INC इत्यादि में ये स्कीम लागू होती है। अप्लाई तो एक्चुअली बैंक के थ्रू जाता है। जब बैंक में आप शिक्षा ऋण लेते हैं तो बैंक इसका क्लेम करता है गवर्नमेंट को पात्रता अनुसार जो खाते होते हैं। जब आदमी अप्लाई करता है लोन की तब बताना पड़ता है कि हाँ मेरी जो लाइफ मेरी जो परिवार की वार्षिक आय है वो 2 लाख से कम है और टोटल जो मुझे 4 लाख के लोन चाहिए, कौन सी जगह मैं पढ़ने जा रहा हूँ, क्या पढ़ने जा रहा हूँ, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि ये इस योजना का पात्र है कि नहीं। पात्र खातों का जो अनुदान क्लेम है वो बैंक के द्वारा इंटरेस्ट सब्सिडी क्लेम की जाती है। दस्तावेज में आप जहाँ पर हायर एजुकेशन लेने जा रहे हैं उसके सारे दस्तावेज जिसमें आपको फीस वगैरह सब रहेगा, एजुकेशन फीस, हॉस्टल फीस वगैरह सारा कुछ, और इसके अलावा आपका KYC लगेगा, जो भी एजुकेशन लोन के डॉक्यूमेंट है सब एजिटीज लगेंगे।
2: और इसको लौटाने की अवधि क्या होती है सर?
1: जो एजुकेशन लोन की नॉर्मल पॉलिसीज बैंक की होती है उसके अनुसार, मतलब जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन लोन में ही अपनी ओर से एड ऑन दे रहा है छत्तीसगढ़ शासन ताकि इसको प्रमोट कर सके एजुकेशन लोन को भी और उनके लिए एजुकेशन के साधन भी हो सके जिनके पास आर्थिक रूप से जो कमजोर विद्यार्थी हैं। देखिए शिक्षा ऋण तो एक्चुअली एक बार मिलता है क्योंकि आप पूरे कोर्स का पैसा ले लिए रहते हैं ना, तो दोबारा मतलब इसमें कोई डोज सिस्टम तो रहेगा नहीं, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए मेडिकल करना है तो मेडिकल आपका 5 साल का अगर कोर्स है तो 5 साल में जो फीस लगनी है जो भी लगना हो तो पहले प्रोजेक्ट होकर आपको लोन मिल जाता है, तो दोबारा लोन जैसा कोई इसमें होता नहीं है सिस्टम।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना है। इस योजना के पात्र वे सभी विद्यार्थी हैं जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं और जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम हो। इस योजना के तहत डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ एक लंबे समय से नक्सलवाद से पीड़ित रहा है। बस्तर और सरगुजा संभाग के वे सभी जिले जहां कभी हिंसा का आतंक था, वहां मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना ने शिक्षा का परचम फहरा दिया है। अब यहां उच्च शिक्षा से वंचित छात्रों को समुचित संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा के बंद द्वार सरकार ने सभी के लिए खोल दिए हैं।

0: छत्तीसगढ़ के मेधावी छात्र छात्राओं को अपने उच्च शिक्षा पाने के सपनों को पूरा करने का आधार प्रदेश सरकार ने दिया है। तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा महंगी होने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे अक्सर उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ये योजना ऐसे छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके करियर को सुदृढ़ सोपान प्रदान करने में भरपूर सहयोग देती है।
1: ब्याज नहीं लग रहा है लोन लेने में, तो अच्छी बात है। और पेरेंट्स भी ज्यादा प्रेशराइज्ड नहीं रहेंगे, बच्चे भी ज्यादा प्रेशराइज्ड नहीं रहेंगे और वो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उनके में कोई प्रेशर नहीं रहेगा कि हमको ब्याज देना है तो हमको उस चीज के लिए भी पैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे, सेव करने पड़ेंगे, तो ये चीज अच्छा है, वो बिना टेंशन के पढ़ सकते हैं।
2: मैं मोदी और विष्णुदेव साय को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा योजना कल निकाला। जो सभी छात्राएं हैं उनको बहुत तकलीफ होती थी ब्याज देने में, और वो सभी उन सभी के लिए माफ हो गए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

छत्तीसगढ़ में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए आज कई शाखाएं हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी शाखाएं भी हैं जिनमें पढ़ाई के लिए अन्यत्र जाने की जरूरत

0: पूरत होती है। AICTI, UGC, MCI, DCI और IENC जैसे मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भी मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना छात्र छात्राओं को अध्ययन के लिए ऋण की व्यवस्था करता है। ब्याज अनुदान के लिए शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा 4 लाख रुपए है। ब्याज अनुदान का लाभ लेने के लिए नियमित रूप से ऋण किश्तों का भुगतान अनिवार्य है। ये मोरिटोरियम अवधि के उपरांत नियमित भुगतान की स्थिति में ऋण राशि के ब्याज भार में छूट प्रदान करता है।
1: आप हैं भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक श्री राकेश सिन्हा।
2: यह जो राज्य सरकार की उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना है, यह तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेशित आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंधित छात्रों के लिए योजना सत्र 2012-13 से लागू है। इस योजना में ऋण किस्तों के नियमित भुगतान की स्थिति में ऋण पर ब्याज अनुदान राज्य के चरम वामपंथी प्रभावित जिलों पर जो वहां के जो विद्यार्थी हैं उनके ब्याज का संपूर्ण भार राज्य प्रशासन द्वारा वहन किया जाता है और राज्य के शेष जिलों में जो निवासी शिक्षार्थी हैं उन्हें केवल 1% की दर से ब्याज का भार वहन करना पड़ता है और शेष राशि की ब्याज जो है वह राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। यह योजना जो है केवल छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए लागू है। इसमें जो पेरेंट्स हैं उनकी इनकम जो है वो 2 लाख से कम होनी चाहिए। स्कीम जो है जो विद्यार्थी फेल हुए हैं या ड्रॉप आउट हुए हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है और जैसा कि मैंने पहले बताया जो नक्सलाइज बेल्ट है वहां पे मोरेटोरियम पीरियड का पूरा ब्याज राज्य सरकार वहन करती है और बाकी जो जिले हैं उसमें विद्यार्थियों को केवल 1% ब्याज दर से ब्याज देना पड़ता है। केनरा बैंक इसका नोडल बैंक है लेकिन राज्य के विद्यार्थी जो है वो किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक या 21 प्राइवेट बैंक से लोन ले सकते हैं और इस स्कीम में मैक्सिमम लोन जो है वह 4 लाख है। तो सरकार की ओर से यह एक पहल है जिसमें जो शिक्षार्थी हैं उनको एकदम कम किस्त में कम ऋण में ऋण की सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे उच्च शिक्षा का लाभ उठा सके और अपने को खुद को सक्षम बना सके। डॉक्यूमेंट्स जो स्कूल के उनके जो राज्य के निवासी हैं उसका प्रमाण और स्कूल और कॉलेज के जो सर्टिफिकेट्स हैं और जहां उनको एडमिशन मिला है उस एडमिशन का जो कॉपी है वो केवल चाहिए और कुछ नहीं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस योजना का लाभ उन्हीं विद्यार्थियों को मिल सकता है जिनकी पारिवारिक इनकम जो है 2 लाख से कम है तो वो एक इनकम प्रमाण पत्र जो होता है वो चाहिए होता है, आय प्रमाण पत्र। तो पंचायत से या राज्य सरकार के किसी ऑथोरिटी से जो आय प्रमाण पत्र होता है वो लगता है।

छत्तीसगढ़ राज्य विकास के पंख फैलाए, हर क्षेत्र में तरक्की की परवाज भर रहा है। सरकार ने न सिर्फ पूरे प्रदेश को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है, बल्कि उसकी मंशा ये भी है कि किसी भी मेधावी छात्र को उच्च शिक्षा के लिए इधर उधर भटकना न पड़े। वंचित वर्ग पर सरकार के लगातार ध्यान देने के कारण ही आज जनजातीय बाहुल्य इलाकों से उच्च शिक्षा प्राप्त युवक युवतियां बड़ी संख्या में दीक्षित होकर आ रहे हैं। ये तस्वीर बयां करती है छत्तीसगढ़ के चौमुखी विकास की बहती अविरल धारा को, जहां हर कोई कदम से कदम मिलाकर बढ़ रहा है उजाले की ओर।

ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम।

कभी हाँ कभी ना। इस फिल्म का गीत कुमार सानू की आवाज़ में अभी आपने सुना। बोल मजरू सुल्तानपुरी के थे, धुन बनाई थी जतिन ललित ने। लीजिए अब सुनिए फिल्म कयामत से कयामत तक का गीत, आवाज़ें उदित नारायण और अलका याग्निक की, गीत मजरू सुल्तानपुरी का, संगीत आनंद मिलिंद का।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर। कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फराए।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादे,
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

इसको कार्यक्रम बिंदिया में प्रसारित होने वाले फोन इन फरमाइश कार्यक्रम हेलो बिंदिया के लिए श्रोताओं के फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग मंगलवार 12 मई 2026 यानी आज सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक की जाएगी। इसके लिए हमारा फ़ोन नंबर है 400-3482 और 400-3484। रायपुर के बाहर के श्रोता एसटीडी कोड 0771 लगाना ना भूलें। हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

केके की आवाज़ में ये गीत था समीर का लिखा हुआ, संगीत हिमेश रेशमिया का था और फिल्म थी आशिक बनाया आपने। लीजिए अब सुनिए फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा का गीत। शब्द रचना समीर की, संगीत रचना अनु मलिक की, आवाज़ें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वरों में अभी आपने सुना फिल्म यारा दिलदारा का गीत। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार थे जतिन ललित। अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने वाले हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंता बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा है। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडापट्टी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगरपालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दोहरीघाट औडिहार यात्री पैसेंजर ट्रेन को रवाना किया। इससे मऊ और गाजीपुर जिलों के यात्रियों को किफायती और सुरक्षित रेल सेवा उपलब्ध होगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस रेल सेवा का विस्तार जल्द ही वाराणसी तक किया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कई प्रमुख रेल अवसंरचना परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि एक प्रमुख चार लेन का गलियारा गंगा के दक्षिण में प्रयागराज कानपुर आगरा दिल्ली मार्ग के साथ विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी

0: के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान के फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमेरिकी नाकाबंदी समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज लगभग 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 474 अंक लुढ़ककर 75,541 पर, जबकि निफ्टी 126 अंक की गिरावट के साथ 23,689 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए असमिया भाषा में समूह गान शिक्षा। रचनाकार हैं सतीश दास।

0: अच्छा बच्चों, आज हम तुम्हें असमिया भाषा का एक गीत सिखाएंगे। सीखना चाहते हो ना असमिया भाषा गीत?
1: जी हाँ।
0: अच्छा, ये जो गीत है इसमें अपने देश की मट्टी के प्रति देशवासियों के प्रेम का, प्यार का वर्णन है। तो मैं सिखाऊंगा ये गाना और मेरी मदद करेंगी नलिनी जी साथ। सबसे पहले तुम गीत के बोल लिख लो। ए माती रे,
1: माती रे।
0: ए माती रे मोरो मोते,
1: मोरो मोते।
0: माती के,
1: माती के।
0: सुमिलो,
1: सुमिलो।
0: माती के सुमिलो, माती के सुमिलो। हो गया ना यहाँ तक? आगे लिखो। ए माती ते, ए माती ते जीवन, ए माती ते ज नहीं बोलना, इसको ज बोलना। ये ए माती ते जीवन सोबी, जीवन
1: सोबी।
0: जी कैसे? ज के नीचे बिंदी लगा लेना है ना। तो जीवन सोबी आकी, आकी दोबारा आकी, आकी आकी मोसीलो। अब पहला अंतर आएगा इसके बाद। दूर आकाहार, ये जो ना आकाश श को बोलते हैं वहां ख की तरह से, तो आकाश ये ख और ह के बीच में आका खार भी नहीं, आका हार भी नहीं, आका हार, आका हार। लिखो। दूर आका हार,
1: दूर
0: आका हार। रोहन,
1: रोहन।
0: कियोनु,
1: कियोनु।
0: लागे लागे, खागोर तोलीर, खागोर खागोर। ख नहीं बोलना, ख, खागोर तोलीर, खागोर मतलब समुद्र के तल में, तो खागोर तोलीर। मानिक कियो, मानिक कियो नू, मानिक कियो नू लागे लागे,
1: लागे लागे।
0: इसके आ गया है आहा आहा, फिर मातिर बुकुत, मातिर बुकुत। मोनोर मालोती,
1: मालोती।
0: बूटोलो,
1: बूटोलो।
0: मोनोर मालोती बूटोलो। इसके बाद फिर वही आ जाएगा, एई माती रे मोरो मोते। फिर दूसरा अंतरा है मोनोर कोरोनी रे,
1: कोरोनी रे।
0: हुरोर, हुरोर पापोरी रे,
1: पापोरी रे।
0: पापोरी रे आजी,
1: आजी।
0: इतना हो गया ना?
1: जी हाँ।
0: आगे हुकुमार, थापो,
1: थापो
0: नाहुजुवा,

0: खुकुमार थापो नाहु जुवा। आगे लिखा है ना?
1: जी हाँ।
0: खुंदौर
1: खुंदौर
0: खुदीनौर
1: खुदीनौर
0: खुदीनौर नहीं ख नहीं ख खुदीनौर
1: खुदीनौर
0: नौतून दृष्टि
1: दृष्टि
0: ये ट को जरा त जैसा बोलना सॉफ्ट करके दृष्टि
1: दृष्टि
0: दृष्टि
1: दृष्टि
0: शनि सही बोलना दृष्टि
1: दृष्टि
0: कौनो
1: कौनो
0: ना हुआ
1: ना हुआ
0: आगे ना
1: जी
0: अच्छा ठीक है अब गाना सिखाना शुरू करते हैं स्वर दीजिए जरा

अभी आप सुन रहे थे असमिया भाषा में समूहगान शिक्षा, रचनाकार थे सतीश दास। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

0: कश्मीर की कली। इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने सुना। गीत SH बिहारी का था और संगीत था OP नैयर का।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
2: बिंदिया, शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए। प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया। मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया। डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।
0: लीजिए अब सुनिए फिल्म आर पार का गीत। आवाज गीता दत्त की, गीत मजरूह सुल्तानपुरी का, संगीत OP नैयर का।

अगले गीत से पहले एक सूचना सुनिए। शनिवार 16 मई 2026 को कार्यक्रम घर आंगन में प्रसारित होने वाले छत्तीसगढ़ी फोन इन फरमाइश कार्यक्रम जोहार बहिनी के लिए श्रोताओं के फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग बुधवार 13 मई 2026 को दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक की जाएगी। इसके लिए हमारा फ़ोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर के बाहर के श्रोता एसटीडी कोड 0771 लगाना न भूलें। हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

संगीतकार थे सलिल चौधरी। लीजिए अब सुनिए फिल्म गाइड का गीत, आवाज मोहम्मद रफी की, गीत शैलेंद्र का, संगीत सचिन देव परमन का।

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म चोरी चोरी का गीत। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सदाबहार नगमे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सराईपाली केंद्र है।

0: यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:55 होने को हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एक

0: का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सात सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पूलिंग को बढ़ावा दें। यह जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। प्रधानमंत्री ने स्कूलों से भी आग्रह किया कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था पर काम करें। साथ ही उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि जब तक हालात सामान्य न हो सोने की खरीद को टालें। छत्तीसगढ़ ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के उत्कृष्ट रखरखाव में देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया है। मध्य प्रदेश के सीहोर में आयोजित योजना के रजत जयंती समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य को सम्मानित किया। राज्य की ओर से पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह और प्रमुख अभियंता के कटारे ने पुरस्कार ग्रहण किया। रायपुर रेंज पुलिस ने ऑपरेशन निश्चय के तहत गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद जिलों में संयुक्त नाकेबंदी के दौरान कपड़ा फेरी वालों की आड़ में की जा रही अंतर्राज्यीय तस्करी का खुलासा हुआ। पुलिस ने 378 किलो से अधिक गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 1,98,00,000 रुपये बताई गई है। कार्रवाई में 11 वाहन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने 12 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो कपड़ों के ढेर के बीच छिपाकर गांजा ओडिशा से मध्य प्रदेश ले जा रहे थे। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। ये दिन विश्वभर में नर्सिंग पेशेवरों के लिए बेहतर सहायता, सुरक्षा और संसाधनों की आवश्यकता को बताता है। ये दिन रोगियों की देखभाल, सामुदायिक स्वास्थ्य और आर्थिक विकास में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान को दर्शाता है। जांजगीर चांपा जिले के धुरकोट गांव में तरबूज खाने के बाद एक बच्चे की मौत और तीन अन्य बच्चों के बीमार होने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने तत्काल स्वास्थ्य विभाग की टीम और एसडीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए। बीमार बच्चों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है और उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। प्रशासन ने तरबूज के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। इस बीच बच्चे का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बताया कि मृतक बच्चे के अंगों में बदलाव मिला है। उसका बिसरा प्रिजर्व किया गया है, जिसे जांच के लिए भेजा जाएगा। प्रदेश में बारिश में कमी आने के बाद लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। एक निम्न दाब का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से लेकर श्रीलंका के उत्तरी तट के ऊपर बना हुआ है, जिससे कल कुछ इलाकों में विशेषकर दक्षिण छत्तीसगढ़ के जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव और बीजापुर में गरज चमक के साथ हल्की बारिश, वज्रपात और तेज हवा चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। कपड़े बेचने की आड़ में गांजे की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। 12 तस्कर गिरफ्तार, करीब 2 करोड़ रुपए का गांजा बरामद। और आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर प्रदेश भर में हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकेगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12 बजे हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: शबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और

0: सुमांशु पांड्य जी ने बड़ा खूबसूरत लिखा है।
1: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार। मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
1: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
1: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
0: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा पुष्कर लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
1: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
0: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़, फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
1: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए, और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
0: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
1: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
0: जी
1: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा, कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
0: जी विमलेश जी, तो श्रोताओ सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
1: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
0: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता है
1: जी,
0: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
1: जी और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मति भ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
0: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है, या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
1: जी बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी, इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है।
0: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
1: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है।
0: जी
1: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है।
0: जी
1: लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
0: क्या कहते हैं?
1: थर्मल लैग।
0: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है।
1: जी
0: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भवका कह सकते हैं?
1: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
0: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
0: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
1: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें। और हाँ, प्यास लगे या न लगे, थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिएं। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं।
0: जी
1: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
0: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने।
1: जी
0: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो।
1: जी
0: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
1: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो, क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है। और धूप का चश्मा जरूर पहने, क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
0: जी, तो श्रोताओ ये थी हमारी आज की जानकारी, जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
1: अपना और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न।

0: है?
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है आग बरसाती धूप।
0: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
2: आग बरसाती धूप।
3: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
4: क्यों?
3: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
4: अच्छा, तुमने खुद देखे?
3: हाँ।
4: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
3: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
4: हाँ हाँ, धीरे से धीरे से चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ
0: आओ चलो खाते हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चले।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
1: मोहन और तेज दौड़ो, देखो मुझे छू सकते हो।
0: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन मोहन,
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा। भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलूं देखूं। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया। यहीं पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
1: अरे मोहन मोहन, क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
0: विद्या विद्या,
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन मोहन मोहन, कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका। हाँ
2: हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं। मैं उठाता हूँ। हाँ ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ चलिए चलिए।
2: आ गया डॉक्टर साहब का घर। इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं
1: जी।
2: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
3: कौन है भाई, अभी आया?
2: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए, डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
4: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
2: डॉक्टर साहब, लगता है इसे लू लग गई है।
4: ओहो, अच्छा इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई।

0: और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए।
1: ये लीजिए,
0: इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
2: अच्छा डॉक्टर साहब।
0: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
3: जी।
0: लाओ, अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से 1 फुट ऊपर उठाकर रखो।
2: हाँ जी।
0: ऐसे। लाओ, अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ, बुखार कम हो गया। भाई, अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
2: जी।
0: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है
2: जी।
0: भाई, अब घबराने की जरूरत नहीं है।
3: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
0: बेटा, बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
3: जी,
0: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
3: इससे क्या होता है?
0: भाई, तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
2: डॉक्टर साहब, कैसे बच सकते हैं इससे?
0: भाई, सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
2: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
0: हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए
2: जी।
3: और अगर लू लग जाए तो?
2: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
0: भाई, लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए
3: जी।
0: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
3: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
0: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
2: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
3: जी।
2: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
3: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
0: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
2: गर्म हवा से रहे हम दूर,
4: ठंडक में खेले भरपूर।
2: ठंडक में खेले भरपूर।
0: आग बरसाती धूप।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
6: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक्का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
5: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला इन्हें हमारा सलाम। तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परम वीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का। नमस्कार साथियों।
7: साथियों नमस्कार।
5: साथियों, भारत रणबांकुरों और

0: वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
1: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
0: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक एल्बर्ट एक्का।
1: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि एल्बर्ट एक्का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
0: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक एल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
1: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा
0: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: उनके शौर्य को देखकर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
0: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं एल्बर्ट एक्का की कहानी।
1: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहां के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था, और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, शिष्ट

0: कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
1: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
0: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
1: 3 दिसंबर 1971 का दिन, भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
0: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
1: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
0: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
1: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक एल्बर्ट एक्का के पास।
0: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
1: और तो और, वहां पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
0: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगीं।
1: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गनें बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
0: लांस नायक एल्बर्ट एक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
1: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
0: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक्का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
1: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
0: फिर क्या था, लांस नायक एल्बर्ट एक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
1: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। एल्बर्ट एक्का काल बनकर दुश्मनों पर कूद पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक एल्बर्ट एक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
0: लेकिन इस युद्ध में एल्बर्ट एक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
1: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
0: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम। परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
1: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
0: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी सुन रहे हैं।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आप मन के गीत।

आप मन के गीत सुनैया जम्मू संगवारी मनला सीमा शर्मा की जय जोहार। तो संगवारी हो, हमन आगे सुखर सुखर गीत लेकर आप मन के संगवा। तो आओ जानथन कि ए गीत बर कौन कौन संगवारी मन हमला पाती फटो हे। आप मन हरे हो, बिलाईगढ़ ले रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन, दतरेंगी ले विश्राम यदु, पार्वती प्रतिमा, रीना, लक्ष्मीना यदु, लालपुर ले लुकेश यदु और समीर यदु, संत कंवर वार्ड भाटापारा ले मिलाउदास कुलदीप, संतोष संदीप, लक्की कुलदीप, रिंगनी छत्तीसगढ़ ले दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, पावर हाउस भिलाई जामुल ले विकास वर्मा, खुशी ग्रंथ संजय प्रधान और पूजा प्रधान, रामनगर रायपुर ले अजय अंबादे, शशिकला और पूजा अंबादे, कोटा रायपुर ले योगिता वर्मा, रुचि खुशी और ओजल वर्मा, कन्नेवाड़ा ले देवेंद्र कुमार सोनवानी, लक्ष्मी लक्ष्मीना सोनवानी, पी एल सोनवानी, शारदा सोनवानी, गीतिका गिन्नी लल्ली, वार्ड नंबर 20 बेमेतरा ले राज और सारिका वैष्णव, बेमेतरा ले सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता सारथी, भाई कमलकांत सारथी और बीरेंद्र ब्रिजकांत सारथी, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई ले नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, महामाया पारा ग्राम दरचुरा ले फिरंता साहू, दुलौरीन साहू, कामेश्वरी कुमारी और प्रीतम कुमार साहू, देवरी भाटापारा ले गन्नू लाल रजा, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री, बुड़गहन ले राम दुलारी प्रजापति, रामचरण, चंद्रेश कुमार चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति, हथनीपारा भाटापारा ले चुवाराम वर्मा, मुकेश दुलारी, दुर्गा दुर्गेश्वरी वर्मा, खट्टी ले सुभाष शर्मा, छाया कुमुदनी, ओंकार भीष्मदास मानिकपुरी, डोंगरगांव राजनांदगांव ले राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, चूड़ी लाइन भाटापारा ले अब्दुल मजीद कुरैशी, रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद, नरेश साहू, दुर्गा साहू, रोमन साहू, गंगेश्वरी साहू, आप मनहर मुखेतरा आरंग ले। आप सभु जन के फरमाइश पर आओ सुनथन जनक यादव, पूनम सारथी और गोवर्धन सिन्हा के स्वर मा ए गीत।

एक गीत भर पाती पठोई हमारे संगवारी मन आप मन हरे हो बाजार पारा बेमेतरा ले भाई भरत लाल सिन्हा लव कुमार लकी सिन्हा सिमगा ले सविता जैन प्रदीप जैन और संगवारी मन कोरदा से कलीराम यादव छतराम और शेषराम यादव दतरंगी भाटापारे ले द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार दीपक कुमार और जावेंद्र कुमार वर्मा श्रृंगी ऋषि महानदी सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलरगांव ले मिथिलेश देवांगन मधु हिमांशु और अंकित देवांगन हठरीपारा हठरी बाजार भाटापारा ले मोहम्मद जावेद एकता यदु पूजा यदु और रेशमा निषाद चनागांव ले कोमल शोरी आशीष नेताम सोहन यादव नंदलाल मरकाम बीनू साहू और गजानंद नेताम जयमा कर्मा रेडियो श्रोता संघ सिर्री गातापार ले धनेश्वरी साहू ओम प्रभा साहू बिंदेश्वरी नागेश्वरी चमेली भूमिका मोनिका और पूनम साहू जयमा कर्मा रेडियो श्रोता संघ सिर्री गातापार ले लवन्या साहू उपासना देवराज ओम कुमार पुष्पराज और प्रभुराम साहू मोपका भाटापारा ले दयालु राम वर्मा तेज राम वर्मा सहदेव राम जी और चिरंजीवी वर्मा दतरंगी ले विश्राम यदु पार्वती प्रतिमा रीना और लक्ष्मीना यदु रोहासी से राम साहू नूतन साहू गौरव घनश्याम और अलका जानवी साहू शिक्षक नगर दुर्गले राकेश वर्मा सचिन वर्मा वाणी वर्मा और हरदेव लाल पारा वार्ड सिमगा ले रमेश कुमार यादव माया यादव रिंकू सन्नी और कोमल यादव आप सबूजन के फरमाइश पर आवा सुनथन तोरण लाल चंद्राकर और सविता साहू के सरमा एक ही।

एगीत बर पाती फटोहे हमार ए संगवारी मन आप मन हरे रावण भाटा भाटा पारेले बबला यादव रिखी औ कमलेश्वरी यादव हटरी बाजार भाटा पारेले मोतीलाल देवदास गौतम देवदास मुकेश औ पवन गोलू देवदास पुरानी भिलाई पदुमनगर ले डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी बेगम हमीदुन सिद्दीकी जीशान अहमद सिद्दीकी शाहनवाज अहमद औ सिद्दीकी परिवार नेहरू वार्ड भाटापारा ले प्रेमलाल साहू भूपेंद्र दुष्यंत और राघवेंद्र साहू पटपर डोंगरगढ़ ले राम गोपाल ध्रुव नरेंद्र कुमार औ कविता और जयंती ध्रुव धनंजय मिश्रा अर्चना मिश्रा चंद्रकांति मिश्रा और गेंदलाल मिश्रा आपन हरे धवलपुर गरियाबंद ले भाटापारा ले राम कुमार राउत अमरीका गणेश कार्तिक औ युवराज राउत हटरी बाजार भाटापारा ले मोतीलाल देवदास गौतम मुकेश बनौदा अकलतरा ले दिलहरन गौतम अंजलि गौतम आनंद पटेल और समृद्धि पटेल रमजान खान सिकंदर अशरफ खान अयाज अलफैज खान सादिया खान आप मन हरेव बिल्हा से आप सबो जन के फरमाइश पर आओ सुनथन कुलेश्वर ताम्रकार के गाए एक गीत।

एक गीत पर ईमेल भेजे हमारे संगवारी मन। पोटिया कला दुर्ग ले संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा साहू। भाटापारा ले दानसी रावत, दानू, पद्मिनी रावत, नीरज, शुभम और सौरभ रावत। भीमकुश तरपुंगी ले संतोष गुप्ता, हितेश, होमेश, लक्ष्मी और प्रतिभा गुप्ता। हटौत बाजार लाहौद ले कमलनाथ पटेल, राकेश, समीर, राजकुमारी पटेल। गिर्रा पलारी ले वीरेंद्र साहू, सोनू, आशीष, कपिल साहू। कर्मा चौक लोहारेडी कवर्धा ले अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी, खुशांत और निशांत साहू। हिंगोली महाराष्ट्र ले शाहजी बोटखे, नंदा और हनुमान बोटखे। पुतकी कला कवर्धा ले राधेश्याम पांडे, वीना, विनय, शंकर, नयन और सोमांशु पांडे। पहंदा पलारी ले नितेश कुमार देवांगन, तनुजा देवांगन, ईशांत, लखनलाल और सावित्रीबाई देवांगन। लोरमी ग्राम चचेड़ी ले कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा पुष्पराज, ऋषभ मरावी। कमल विहार रायपुर ले रतन जैन, कोकिला जैन, वैभव और चिराग जैन। झूरा नदी छुईकदान ले संजीव धुर्वे, तारिका, वीणा, मोक्ष धुर्वे। संत कंवर वार्ड भाटापारे ले लामगुराम सेन, केयांश नूतन सेन। आप सबुजन के फरमाइश पर अवसुंथन कांति यादव और फरीदा केसरमा ए गीत।

अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आप मन के गीत। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8

0: मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1 बजने को है हिंदी समाचार, अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे तथा पुनः परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ. शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लूँ जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण कर।
1: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। पुदुच्चेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी गई है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज सुबह विशेष अदालत में पेश किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव, सहायक नर्स मिडवाइव और महिला स्वास्थ्य आगंतुकों को प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, 1,00,000 रुपये नकद और पदक शामिल हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1041 अंक लुढ़क कर 74,975 पर, जबकि निफ्टी 297 अंक की गिरावट के साथ 23,500

0: 19 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत का पहला गीत आवाज है नरेंद्र चंचल की। इंद्रजीत सिंह तुलसी के लिखे इस गीत के लिए संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है बॉबी।

नरेंद्र चंचल की आवाज में लीजिए सुने मजरूह सुल्तानपुरी की रचना। संगीत राहुल देव बर्मन का है। फिल्म का नाम है बेनाम।

आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल सरों में आनंद बख्शी की लिखी यह रचना। संगीत राहुल देव बर्मन का है। फिल्म का नाम है भावार।

आइए अब हम आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और शशि कपूर की आवाज़ों में सुहाग फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

चित्रपट संगीत का अंतिम गीत आवाजें हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले की। गीत लिखा है आमिर खुसरो ने, संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। चित्रपट संगीत आप 2 बजे भी सुन सकते हैं। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और FM बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:25 हुए हैं, समय है कार्यक्रम विवरण का।

आज रात 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद यानी 1:30 पर आप सुनेंगे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। इसमें सुनिएगा आज के गोठ में, हमार घर हमार परिवार ही है जीवन मासार। पर्यावरण संरक्षण इस विषय पर वार्ता सुनिएगा। वार्ताकार होंगी डॉक्टर वीणा साहू। साथी होगा बहनी मन के चिट्ठी और गीत संगीत। प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार गोट आप सुन सकते हैं 5:00 और प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां आप सुनेंगे 6:30 पर।

युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युवाणी शाम 5:10 पर। इसमें अपन गोठ में चर्चा होगी कौशल विकास जरूरी है इस विषय पर। साथ ही क्रम होगा सवाल जवाब और माटी के गीत। किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल होगा शाम 7:21 पर। इसमें आज की बात में चर्चा होगी अभी लेकर आओ पानी बचाए के उदीम। 7:30 पर किसान वाणी में सुनेगा फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। विषय होगा गर्मी में पशुओं की देखभाल और आहार प्रबंधन। जानकारी देंगी डॉक्टर निधि बंजारी, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय भाटागांव रायपुर। संचालन करेंगे चंपेश्वर गोस्वामी। प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडे। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज रात 8:15 पर कलाकार होंगे शैलजीत साहू और साथी। आदिवासी जनजाति संगीत के कार्यक्रम लोक सुधा में सुनिएगा हल्बी गीत। कलाकार होंगे मेघनाथ पटनायक और साथी। और कमारगी सुनेगा, कलाकार होंगे भोड़भोड़ा सोरी और साथी। प्रसारण समय रात 9:30।

श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुनेंगे आज रात 10 बजे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनेगा बसंत तिमोथी का वायलिन वादन, राग होगा जन सम्मोहिनी। चित्रपट संगीत का आनंद ले सकते हैं आप 2 बजे, 2:30 पर, शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9:15 पर। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: घर आंगन कार्यक्रम सुनैया जम्मू संगवारी मन ला करुणा वर्मा के राम राम। बहनी हो सियान मन कथे ना, परिवार मनखे के जीवन के सबले बड़ा सहारा है और खुशी के आधार है। घर सिर्फ ईटा पत्थर के मकान नहीं हुए, बल्कि प्रेम और अपनापन, संस्कार और विश्वास के ठिकाना है। जम्मू भाई एक संग एक छत के नीचे रहा है, कतका सुघर लागे। फिर अभी के बेरा में ये सब देखे बर नहीं मिला थे, तभी तो अभी के लोग लेका मन परिवार के महत्व ला नहीं समझे। ये गलत बात है। परिवार मा हमन ला मया दुलार और अपना मत अपनापन मिलते। दुख सुख मा परिवार के लोगन मन हमेशा संग मा खड़े रहते। परिवार मनखे ला मानसिक शांति और हिम्मत देते। संस्कार घर ले बच्चा मन मा अच्छा व्यवहार, सम्मान, अनुशासन और संस्कृति ला सिखाते। बड़े मन के सम्मान, मिलजुल के रहना, एक दूसर के मदद करना। जीवन माँ कठिन बेरा आते, फिर परिवार साथ रहते ना, तब परेशानियाँ आसान लगे बर लागते। परिवार हिम्मत और आत्मविश्वास बढ़ाते। समाज के आधार अच्छा परिवार होते। संयुक्त परिवार में रिबो तक आकर घर मनमुटाव नहीं हुए बहनी। थोड़ी बेरा बाद फिर मिल जाओ। परिवार माँ सब मिल के रिबो तक काम हाँ मिलजुल के हो जाते। घर के सफाई, खाना बनाना, खेती किसानी, बच्चा मन के पढ़ाई लिखाई, ये एखर ले जिम्मेदारी के भावना हाँ बाँटते। घर के सियान मन अनुभव और ज्ञान के भंडार रहते। उखर बात परिवार ला सही दिशा ले जाते। अच्छा परिवार ला सजा के रखबो, एक दूसर के सम्मान करबो, मिलजुल के भोजन करबो, झगड़ा ले बाँचबो और बच्चा मन ला समय देबो, बुजुर्ग मन के सेवा करो, प्रेम और विश्वास ला बनाए रखबो। ये सबले परिवार एक संग और बने मिल के रहते। परिवार जीवन के सबले अनमोल धन आए। धन दौलत ले बढ़ के परिवार के मया और दुलार साथ होते। जहाँ प्रेम, सम्मान और एकता रहते ना, वहीं घर स्वर्ग जैसे लागते। हमर घर हमर पहचान, परिवार ले बाढ़ते सम्मान। जहाँ परिवार में प्रेम हवे, ओ घर में खुशहाली बसे। एकरे संग सुनथन ये गीत ला।

0: बहनियो अभी हमन हा सुनत रहेन परसराम यदु और साथी के गाए गीत ला।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: बहनी हो, बाढ़त गर्मी ला देखबो ना तो चिंता हा वाजिब आए, पर बहनी हो थोड़ी गहराई ले विचार करथन ता खुदे के गलती है समझ में आती। काबर बहनी हो, हम मनुष्य अपन

0: स्वार्थ के खातिर हमन प्रकृति के अतेक नुकसान पहुँचाए हन जेकर भुगतान पर्यावरण असंतुलन के रूप में भुगतेला पड़त हे। यही सब बात ला ध्यान में रखत आज आप मन ला सुनाथन एक वार्ता, और वार्ता के विषय है पर्यावरण संरक्षण, और वार्ताकार बहिनी है डॉक्टर वीना शाहू। ता आवो सुनथन वार्ता ला।
1: जम्मू संगवारी और आदरणीय मनला सादर प्रणाम करत हूँ, और घर आंगन सुनैया जम्मो झनला डॉक्टर वीना साहू के जय जोहार है। संगवारी हो, आज हमन गोट बात के विषय है पर्यावरण संरक्षण। ता आवा हमन सबो झन जानत हन कि हमार चारों मुड़ा ईश्वर के बनाए सुघर प्रकृति है, यही ला पर्यावरण कहते। पर्यावरण के अर्थ है परिआवरण, यानी हमार चारों डहर के वातावरण जेमा हवा पानी और माटी मुख्य है। पर्यावरण के कोरा मा सुघर फूल हरियर हरियर पेड़ पौधा बड़े बड़े पेड़ चहचहावत चिरई चिरगुन निर्मल नदिया और झरना हवा जेन हा हमला अपन तरफ खींचत है मन ला लुभाते और यही हमार जिंदगी के आधार है। वायु और जल में औषधि गुण होते, ये रोग के नाश करते। एकर महत्ता ला बखाने है ऋग्वेद के 10वें मंडल के 137वें सूक्त में श्लोक कहे गए है और पैलगी करे गए है। वायु संरक्षण हवा के जतन ऋग्वेद में बताए है श्लोक के रूप में, आ वात वाही भेषजम विवात वाही यद्रपह त्वम ही विश्व भेषजो देवानाम दूत ईयसे। ऐसने भूइया के महत्ता के बखान अथर्ववेद के 12वें अध्याय में है, ओकर भी पैलगी करे गए है। आज के मानव अपन इच्छा पूर्ति और आगू बढ़े के खातिर प्रकृति के काम में बाधा डारेला शुरू कर दे है, जेकर कारण पूरा वातावरण प्रदूषित होवत जावत है। प्रकृति हमन ला धरती के मनखे मन ला बहुत ही अनमोल चीज दे हावय, लेकिन हमन ओला का देवत हन, केवल प्रदूषण। अब धरती माता और पर्यावरण प्रदूषण के बारे में चिंता करबोन सोचबोन और संरक्षा के काम करबोन तभी प्रदूषण ले बचे जा सकत है। पर्यावरण संरक्षण के मतलब है हमन अपन चारों तरफ के वातावरण ला संरक्षित करन रक्षा करन और ओला अपन अनुकूल अपन लायक बनाए रखन। पर्यावरण और प्राणी एक दूसर ले आश्रित है, बल्कि जम्मो जीव जंतु और वन्य प्राणी पर भी अति जरूरी है। पर्यावरण के सुरक्षा करना जरूरी है, हमार कर्तव्य है, काबर की सबो जीव के जीवन पूरा के पूरा प्रकृति माने पानी हवा और माटी मा आश्रित है। एकर अलावा हमार भोजन कपड़ा खातिर शुद्ध पर्यावरण मा निर्भर हवन। पर्यावरण संरक्षण ले जम्मो जीवित प्राणी मन के और ये धरती के जम्मो प्राकृतिक परिवेश संघनिष्ठ संबंध है, गहरा नाता है। सबो जीव जंतु मन पेड़ पौधा मन के छोड़े गए ऑक्सीजन के कारण ही जीवित है। आजकल वन जंगल मन के कटाई और बड़े बड़े पेड़ के कटाई के कारण पृथ्वी में प्रदूषण बढ़त है। एकर खातिर मोर विनती है पर्यावरण ला सुरक्षित रखाओ, जेकर से हमरो जिंदगी बने रहा। अपन अंतस के संदेश आप मन तक पहुँचावत हूँ। जन काट तुमन रुख राईला बचाओ, सुन के मुरगोठ गाँव गाँव में बगराओ। स्वस्थ जीवन जिए बर मस्त जीवन जिए बर, जुर मिल के करो सब तैयारी। पेड़ ला बचाओ संगवारी, पेड़ बिना नहीं है हमर जिंदगी के ठिकाना। यही म अटके है हमर सांस के ताना बाना। त सांस ला बढ़ाए बर जिंदगी ला बचाए बर, जुर मिल के करो सब तैयारी। पेड़ सब लगावा संगवारी।
2: सन 1992 में ब्राजील में विश्व के 174 देश मन के पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुई। एकर बाद 2002 में जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित करके विश्व के जम्मो देश मन ला पर्यावरण संरक्षण खातिर ध्यान देबर कई उदिम समझाए रहिन। काबर की पर्यावरण संरक्षण ले ही धरती में जीवन के संरक्षण हो सकते, और सम्मेलन में कहेगी कि प्रत्येक राष्ट्र अपन अपन देश के खातिर ऐसी व्यवस्था करे जेकर से देश के जम्मो प्राणी जीव जंतु पशु पक्षी और नदी झील झरना सुरक्षित और संरक्षित रहे। दिसंबर 1984 के भोपाल गैस त्रास

भी ला देख के निर्णय लिएगी इसकी धारा 21 में ऐसा कानून बनाया जाए जेकर ले ऐसनहा दुर्घटना ला रोके जा सके। बड़े बड़े खतरनाक फैक्ट्री उद्योग मल्ला आबादी ले बहुत दूरिया माँ बनाया जाए ताकि इस प्रकार के भारी पैमाना माँ जनहानि वायु प्रदूषण झन होवे। जीवन हर व्यक्ति के मौलिक अधिकार है। संविधान के भाग 4 माँ कहे गए है कि स्वच्छ जलवायु स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए। नीति निर्देशक तत्व 48A पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास करेगी। भारतीय संविधान के भाग 4(51) में कहे गए है कि प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि वह नदी झील तालाब झरनों वन्य प्राणियों के प्रति दया का भाव रखे, इसका संरक्षण का संवर्धन करे, पेड़ पौधा ला बचावा, धरती ला स्वर्ग बनावा, नदी तालाब झरना यही मजी ना मरना, पर्यावरण बचा के जिंदगी ला धन्य बनावा। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के निर्माण हुई और 19 नवंबर 1986 से संपूर्ण भारत देश में लागू हुई। ये कानून में कुल 4 अध्याय और 26 धारा हवा। मनुष्य कभू पर्यावरण के हिस्सा हुआ लेकिन आज कस नहीं। पहले के मन के मन नदी झील वन्य प्राणी जैसे नैसर्गिक वातावरण में निर्भर रहा है, लेकिन आज वो प्राकृतिक जगह में शॉपिंग मॉल दुकान बाजार और सड़क बना के नुकसान पहुँचावा थे। यदि धरती माँ कोई हानिकारक हवा है तो वो आज के मानव है जिन्हा पहली के मानव तो प्राकृतिक प्रेमी रहा है। और पर्यावरण संरक्षण में जल संरक्षण के भी बहुत महत्व है और जल ही जीवन है। पर्यावरण संरक्षण में जल संरक्षण अति जरूरी है। धरती के भीतर आज जल स्तर ला देखबोन त अंदाजा लगाबोन 10 बछर माँ पानी के स्रोत है स्तर है 500 फीट नीचे चले जाते। हमार राजधानी रायपुर के ही जल स्तर ला अंदाजा लगाए हवन, एक बछर माँ 50 फुट नीचे जावा थे, एक हफ्ता माँ 4 फुट और एक दिन माँ 4 इंच चले जाते। तो ये जल समस्या आगे चल के विकराल रूप धर ले है, तो हमन ला गंभीरता ले विचार करके जल बचाओ काम बुतला करना है। पानी के हर बूंद ला हमला बचाना है, धरती ला हमला ऐसने स्वर्ग बनाना है। जल बचाओ पानी बचाओ के मतलब है फोकट बिना काम के पानी ला नहीं बहाना है। जिम्मेदारी से बौर के उपयोग करके पानी ला बचाए जा सका थे। वास्तविक माँ पृथ्वी माँ केवल 1% ही पानी हावय जो हमर बर उपयोगी हावय। पानी के अवस्रोत हावय जो जन जीवन के उपयोग लायक नहीं है। समुन्दर के पानी हावय 97%, जेन हा अति खारा है नुनछुर है। 2% पानी है जेन ग्लेशियर और ध्रुवी आइस कैंप के रूप में हवाए। मात्र 1% पानी ही हमार प्राणी मन पर हवाए जेमा पूरा संसार के भारी जनसंख्या जिंदगी जिए बर आश्रित है। दिनों दिन पानी के कमी जल स्तर के नीचे चले जाना ला गंभीर समस्या बनावा थे। अतका तो सबो जानते हैं कि पानी के बिना जीवन जिंदगी की कल्पना गला मुश्किल है। जल है तो कल है। आज के समय में पानी के संकट अति विकट रूप धारण करत जात है। कहूँ अभी ले एकर बर चेत नहीं करबून त आगू समस्या है भयंकर विकराल रूप में आही और धरती माँ जीवन के विनाश के कारण बनी। मैं डॉक्टर वीना साहू जम्मो सुनैया दीदी भैया मन ले हाथ जोड़ के विनती करत हूँ कि जल ला गंदा हो ले बचाना है, फोकट के बर्बाद नहीं होवन देना है, अपन घर माँ समझदारी से पानी ला बउरना है, सबो तरीका ले पानी बचाओ के उदिम ला करके हमला पानी ला बचाना है संरक्षित करना है, तभी अमृत रूपी जल ला बचा सकबोन। पृथ्वी माँ जल पेड़ प्राणी और मानव के आधार है। जल के बिना पल भर में मिट जाही ये संसार है। संगवारी हो त आवा पर्यावरण संरक्षण के काय काय उदिम ला कर सकथन उहो गोठला करना जरूरी है। तो पहला नंबर है पर्यावरण ला नुकसान पहुंचाने वाले जम्मो चीज मन के उपयोग नहीं करना है, जैसे कि पतला प्लास्टिक के उपयोग, पॉलीथीन, पानी पाउच, सिंगल यूज प्लास्टिक जमा खाना पैकिंग गर्म चाय आदि के बहिष्कार करना है। प्लास्टिक के निचट नान नान बारीक कणहा खाना माँ चाय माँ गर्म पानी माँ घुर जाते और ओकरे ले कई बीमारी जैसे पेट माँ कैंसर जैसे बीमारी घलो होते। और ये कुदी मऊ हवा जेन जिनिस ला हम दोबारा काम माँ ला सकत हन उसने सामान ला लेना चाहिए, जैसे कांच के बर्तन है, चीनी मिट्टी, मोटा प्लास्टिक और धातु के सामान ला दोबारा उपयोग कर सकत हन। संगे संग

0: हवा ला प्रदूषण से बचाए बर हमार भुइयां धरती माता ला घलो सुरक्षित प्रदूषण मुक्त बनाए बर पेड़ लगाना, वृक्षारोपण करके संरक्षण करना, पौधा के लिए सुरक्षा, पानी, खाद आदि के व्यवस्था करके जतन करके बढ़ाना भी हमार मन के महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हावय। आखिरी माँ जम्मू मानव जाति से एक ठन विनती करत हों, पर्यावरण है त मानव है। पर्यावरण के ध्यान जतन करना हमन जम्मू देश के नागरिक मन के परम जिम्मेदारी है। यदि हर व्यक्ति अपन अपन के जिम्मेदारी समझे, धरती माता के प्रति प्रेम, अपन परिवार के सुरक्षा, अपन जिंदगी के सुखला समझे, त जम्मू प्रकार के गंदगी, कचरा और बढ़ती आबादी, प्रदूषण के खतरा से बचे जा सकत है और खुद से कई ठन उदिमला करके पर्यावरण संरक्षण में अपन भागीदारी ला निभा सकत। पर्यावरण बचाना हमर है जिम्मेदारी, स्वच्छता ला अपनाना हमर है जिम्मेदारी। स्वच्छता ला अपनावाओ, देश ला स्वस्थ बनावाओ, व्यर्थ मत जल बहावाओ, अपन कर्तव्य निभावाओ। जय धरती माता, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।
1: बहनी हो, अभी हमन हा सुनत रहे वार्ता पर्यावरण संरक्षण और वार्ताकार बहनी रही से डॉक्टर वीना साहू। तबहनी हो हमन ला भी अपन पर्यावरण ला बचाना है, नहीं तो अवैया बेरा में हमन ला बहुते नुकसान होही। बहनी हो, आज क्रम है बहनी मन के चिट्ठी के और अभी मोर हाथ में बड़ा कन चिट्ठी और ईमेल घलो का हवे। ता देखथन बहनी हो सबले पहली कौन से तारीख के ईमेल आए और ईमेल आहे 14 अप्रैल के कार्यक्रम पर और ये दिन के कार्यक्रम ला सजा के लाए रही से हमर मयारू संध्या दीदी है। ये दिन के कार्यक्रम में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जयंती के अवसर में गोड बात करत वार्ता घलुक सुनवाइस और वार्ता के विषय रही से शिक्षा के कोनो विकल्प नहीं है। वार्ताकार बहनी रही से श्रीमती चंचला नायक। वार्ता तो हमन ला ज्ञानवर्धक लागबिच करी से संग में गीत संगीत हमर मन ला मोहडरिस। ये दिन के सफल प्रस्तुति बर संध्या दीदी संग वार्ताकार बहनी चंचला नायक ला गाड़ा गाड़ा बधाई और ये संदेशा भेजैया हमर संगवारी मन है गांव तेंदुभाठा मगरलोड जिला धमतरी ले श्रीमती मोहेश्वरी निषाद देवी का नूतन लक्ष्मी निषाद और ये दिन के कार्यक्रम पर औपातिया है गाँव परसा टोला जिला अंबागढ़ चौकी ले सिलोचनी मशिया तुसारणी शीला पायल गरिमा दीपिका रोहिणी काजल मेघा वर्षा और झुनिया झुनिया बाई मशिया। बहनियों और ईमेल आहे 18 अप्रैल के कार्यक्रम पर और ये दिन के कार्यक्रम ला लेके आ रही से हमर आशा दीदी है जिन हाँ छत्तीसगढ़ी संस्कृति मा बिहाव विषय मा गोट बात करत और संग मा जोहार बहनी मा श्रोता बहनी मन संग गोट बात करिस और उखर मनपसंद गीत ला घलोक सुनवाइस जेन हाँ हमन ला बहुते नीक लागिस। ये दिन के कार्यक्रम पर ये दिन के कार्यक्रम के सफल प्रस्तुति पर आशा दीदी संग बीरभान साहू सुमिता राय बर्मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई। ये दिन के ईमेल भेजैया बहनी है लोरमी ग्राम चचेड़ी ले प्रमीला मरावी नेहा रीझा तनु और राही मरावी। 21 तारीख के कार्यक्रम पर ईमेल आहे और ईमेल भेजैया हमर बहनी मन ही गंडई टिकरी पारा ले कचरी बाई देवांगन जयश्री औ हिमांशी देवांगन हमर श्रोता बहनी मन लिखे है 21 अप्रैल के घर आंगन कार्यक्रम ला लेके आ रही से आशा शर्मा दीदी हा सुघर सुघर गोड बात के बाद रूपक सुनेन दाई रोवन झन देबे आले खुआ छन आशा शर्मा गीत बीरभान साहू। ये कार्यक्रम के जतेक भी बखान करबो कम है बहुत अच्छा लागिस गीत के चयन बहुत पसंद है सुघर प्रस्तुति पर आशा शर्मा के साथ आकाशवाणी रायपुर ला बहुत बहुत बधाई और यही दिन भर औपातिया है ग्राम नेवई उतैले श्रीमती उर्वशी देवांगन कुनिया दीपशिखा देवांगन एकरे संग सुनथन आओ गीतला।

बहनी हो 25 अप्रैल के कार्यक्रम ला सजा के लाए रही से रोशनी दीदी ह जिन ह बरसात पूर्व अनाज के भंडारण के गोड़ बात करत वार्ता ला घलुक सुनाइस और वार्ता के विषय रही से आर्थिक विकास बर शिक्षा और स्वरोजगार वार्ताकार बहनी रही से श्रीमती उत्तरा विधानी और संगमा कामकाज के बाद के संगीत ला घलुक सुनवाइस ये दिन के सफल प्रस्तुति बर रोशनी दीदी के संग वार्ताकार उत्तरा विधानी दीदी ला गाड़ा गाड़ा बधाई और ईमेल भेजैया संगवारी हवे सिंगार बाड़ी घोटुकले धनेश्वरी पटेल सोनम और मानवी पटेल 28 अप्रैल के कार्यक्रम ला सजा के लाए रही से हमर संगीता दीदी है ये दिन बाढ़त गर्मी और जल संरक्षण के गोड़ बात करत डॉक्टर की सलाह मा डॉक्टर आकांक्षा साहू ले महिला मन मा बाढ़त कैंसर के समस्या कारण और निवारण के विषय मा गोड़ बात करिस जेन ला हमला ज्ञानवर्धक लागिस और संगमा बहिनी मन के चिट्ठी घलुक सुने बर मिलिस पता भेजैया हवे रानी गांव नगरी ले चित्रेखा साहू उर्वशी राधा भाई राधा वीणा और कुमारी सेजल साहू बहनी हो आप जम्मो झनहा चिट्ठी और ईमेल के जवाब मा यही कहिबो कि हमर कार्यक्रम ला बड़े ध्यान लगा के सुनते हो और बेरा निकाल के अपन संदेशा ला हमर करा भेजते हो ता हम अल्लाह बहुते खुशी होते और कार्यक्रम बने लागते और बने बनाए बर संबल मिलते और कार्यक्रम आप मल्ला ज्ञानवर्धक लागते तो हमन यहीच कहबो कि कार्यक्रम के पाछू जो मेहनत करा था ना वो सफल होगे ऐसने दया मया बना के रखू और आगू घलोक ईमेल और पातीला भेजत रहूँ अभी आप मन हा ईमेल भेजे हो ओकर बर आप मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद और घड़ी हा घलोक इशारा ला करत हवे तमोला देवा विदा उ झोंको करुणा वर्मा के राम राम।

अभी ग्रामीण महिलाएं अपना कार्यक्रम सुन रही थी, घर आंगन। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। 2 बजे हैं, समय है चित्रपट संगीत का।

0: अभी आपने सुना फिल्म बनफूल का ये गीत। आवाज़ थी किशोर कुमार की, बोल आनंद बख्शी के थे और धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
0: आशा भोसले की आवाज में आइए अब हम आपको सुनवाते हैं बसेरा फिल्म का गीत। गुलजार ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है राहुल ते परमन ने।
2: अच्छा।

0: किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे अजनबी फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। चित्रपट संगीत आप 2:30 पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 होने के हैं। दोपहर समाचार अब हम दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी

0: और असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व सरमा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर सरमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉक्टर हिमंता बिस्व सरमा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्य टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने

0: के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमबी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के.ए. सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के

0: बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मित्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबूधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़क कर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, CBI जांच के आदेश। हिमंता बिश्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। CBI ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कार प्रदान किए। और IPL क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।
3: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
4: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर। बड़ी

0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
1: सुनिए।

चित्रपट संगीत का पहला गीत, आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है, संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है आहुति।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़ते हों, फिर पढ़ के भुला जाते हों।
0: अरे तो सुने करना।
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुरकरा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तैं बैठबे ना, तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 बजे तक चलते, जेमा तैं मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।
3: महेंद्र कपूर की आवाज में लीजिए सुनिए हसन कमाल का लिखा गीत, संगीत रवि का है, फिल्म का नाम है आज की आवाज़।

0: की।
1: वाह वाह प्रभात वाह।
2: श्रोताओं एक सूचना सुनिए। शनिवार 16 मई 2026 को कार्यक्रम घर आंगन में प्रसारित होने वाले छत्तीसगढ़ी फोन इन फरमाइश कार्यक्रम जोहार बहने के लिए श्रोताओं के फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग बुधवार 13 मई 2026 को दोपहर 12 बजे से 12:30 के बीच की जाएगी। इसके लिए हमारे फोन नंबर हैं 4003-482, 4003-483 और 4003-484। रायपुर के बाहर के श्रोता एसटीडी कोड 0771 लगाना न भूलें। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से जारी है चित्रपट संगीत। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल सरों में आनंद बख्शी की लिखी है रचना। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। फिल्म का नाम है आसपास।

अभी तो जी लें। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत। आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की है। गीत लिखा है इंदिवर ने, संगीत है सपन जगमोहन का।

अभी तो जिले इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाजें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की। इंदिवर के लिखे इस गीत के लिए संगीत तैयार किया था सपन जगमोहन ने। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में आविष्कार फिल्म का गीत। गीत लिखा है कपिल कुमार ने, संगीत है कनु राय का।

आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने सुना आविष्कार फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा था कपिल कुमार ने और संगीत तैयार किया था कनु रॉय ने। और इसी के साथ चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। मीडिया वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

0: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी सभा अब यहीं समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ 5 बजे हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।
1: आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
2: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण

0: कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ. शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लाओ जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करी।
1: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू की। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि ये अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मित्रोला से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी आने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The National Testing Agency NTA has decided to cancel the NEET UG 2026 examination conducted on the 3rd of this month for admission to undergraduate medical education. In a social media post, NTA informed that this decision has been taken in the interest of students and in recognition of the trust on which the national examination system rests. The agency also stated that the government has decided to refer the matter to the Central Bureau of Investigation for a comprehensive inquiry into the allegations of paper leak. The agency said it will extend full cooperation to the Bureau and provide all materials, records and assistance required for the investigation. It said the decision was taken following inputs examined by the NTA in coordination with central agencies and investigative findings shared by law enforcement agencies. The NTA said the examination will be reconducted on dates to be notified separately. Registration details, candidature information and examination centre selected for the May 2026 cycle will remain unchanged and be carried forward to the reconducted examination. The agency informed that no fresh registration will be required and no additional examination fee will be levied. Senior BJP leader Hemanta Biswa Sarma has taken oath as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term. Governor Lakshman Prasad Acharya administered him the oath of office and secrecy at a ceremony held at the Veterinary College ground in Kanapara, Guwahati. Along with Dr. Sarma, four MLAs were also sworn in as cabinet ministers. They include Rameshwar Teli and Ajanta Niyog from the BJP, Atul Bora from Aham Gana Parishad, and Charan Boro from Borderland People's Front. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several Union Ministers and Chief Ministers from NDA-ruled states attended the ceremony. With this, Dr. Sarma has become the first non-Congress leader in Assam to serve consecutive terms as Chief Minister. Prime Minister Narendra Modi has congratulated Dr. Hemanta Biswa Sarma on taking oath as the Chief Minister of Assam. The Central Bureau of Investigation has taken over the investigation into the murder of Chandranath Roth, personal aide to West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari. Acting on a recommendation from the state police, the agency officially took over the probe into the case today. Prime Minister Narendra Modi has hailed the decisions of the first cabinet meeting under West Bengal's newly elected Chief Minister Shubhendu Adhikari. In a social media post, the Prime Minister said the welfare of people of West Bengal is the top priority. Mr. Modi expressed happiness that the people of the state will have access to Ayushman Bharat, the world's largest healthcare scheme that ensures top quality and affordable healthcare. The Prime Minister added that the double-engine government will ensure seamless delivery of key central schemes. The state government announced several important decisions after the first cabinet meeting yesterday. Transfer of land to the Border Security Force within 45 days for fencing the borders with Bangladesh was among the decisions. International Nurses Day is being celebrated today, marking birth anniversary of Florence Nightingale, the founder of modern nursing. The day recognizes the essential role of nurses in patient care, community health and economic development. The theme for International Nurses Day this year is Our Nurses, Our Future. Empowered nurses save lives. It highlights the need for better support, safety and resources for nursing professionals globally. On the occasion, President Draupadi Murmu conferred the National Florence Nightingale Awards 2026 on 15 nursing professionals at a function held at Rashtrapati Bhavan. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heat wave conditions at isolated places over Gujarat, Madhya Maharashtra, Marathwada, Rajasthan and West Madhya Pradesh till tomorrow. The Met Department has issued an orange-coloured warning for heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya and also predicted heavy rainfall conditions over Arunachal Pradesh, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim tomorrow. Bihar and Uttarakhand are also likely to witness thundersquall with wind speed reaching up to 60 kilometres per hour tomorrow. Meanwhile, warm night conditions are expected to prevail at isolated places over Rajasthan throughout this week. In IPL cricket, Gujarat Titans will take on Sunrisers Hyderabad in Ahmedabad today. The match will begin at 7:30 p.m. Indian time. And with that, we end this news bulletin.

0: 104.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपके साथ अपराजिता और आज मंगलवार के दिन ये समय है बहुत खास क्योंकि ये है समय हमारे एक स्पेशल प्रोग्राम आकाशवाणी के संग यादों के रंग का। और आज के हमारे इस प्रोग्राम में ये प्रोग्राम हम आपको बता दें कि इसकी शुरुआत क्यों की गई। आकाशवाणी 90 वर्ष इस साल मना रहा है और इसी श्रृंखला को सेलिब्रेट करते हुए हम इस प्रोग्राम को आपके बीच लेकर आए हैं और इसी श्रृंखला में आज हमारे समक्ष एक विशेष अतिथि भी हैं। स्टूडियो में मेरे साथ हैं श्री अरुण कुमार पासवान। आप पूर्व सहायक निदेशक हैं और जाने माने लेखक और कवि भी हैं। आपने नाटक, रूपक, कविता, कहानी, लघु कथा, संस्मरण और अनेकों लेख लिखे हैं, अपनी कलम से इन्हें सजाया है। आपको अनेकों पुरस्कारों से नवाजा गया है। सर, मैं आपका FM गोल्ड के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ।
1: धन्यवाद अपराजिता जी, आपने मेरा परिचय जो दिया उस सबसे बड़ा मेरा परिचय ये है जो मैं मानता हूँ कि मैं प्रसारक था और आज भी प्रसारक हूँ
0: जी। और सर, हमें बेहद खुशी है आपको यहाँ अपने इस ख़ास प्रोग्राम में यहाँ शामिल करते हुए और ये उम्मीद हम करते हैं कि अब से लेकर 4 बजे तक का जो समय है वो बहुत ही जानकारीपूर्ण होने वाला है और मनोरंजन का तो साथ रहेगा ही क्योंकि यही जो है वो आकाशवाणी की जो है हम कह सकते हैं कि एक मूल मंत्र है कि वो आपको इन्फॉर्मेशन भी देगा और एंटरटेनमेंट भी देगा साथ में। और इसी वादे के साथ हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और ये भी अपने मैं लिसनर्स को बताना चाहूँगी कि अब से लेकर 4 बजे तक हम सर के साथ यहाँ बातें करेंगे। श्री अरुण कुमार पासवान हमारे साथ हैं जो पूर्व सहायक निदेशक हैं, अगर आपने अभी ट्यून इन किया है। और आज आकाशवाणी के संग यादों के रंग में सर हमारे साथ रहेंगे और साथ रहेगा इन्हीं के पसंद के गानों का। तो इन्होंने मुझे अपने कुछ पसंदीदा गाने बताए हैं। तो पहला गाना सर आपकी पसंद का, ये कैसा सुर मंदिर है, मैं अपने श्रोताओं को सुनवा रही हूँ और बातचीत का सिलसिला आपके साथ हम यहां जारी रखेंगे। लता जी की आवाज में हमारे साथ जो आज एक विशेष अतिथि हैं उनकी पसंद का पहला गीत।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और ये समय है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आकाशवाणी के संग यादों के रंग का। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक विशेष अतिथि हैं श्री अरुण कुमार पासवान। आप पूर्व सहायक निदेशक हैं और जैसा आपने इस गाने से पूर्व हमें बताया कि आप एक प्रसारक थे, प्रसारक हैं और हमेशा एक प्रसारक रहेंगे, तो सर मुझे उसी से जुड़ा एक सवाल ऐसा जहन में आ रहा है कि अपने पहले प्रसारण से जुड़ी आपकी कुछ यादें होंगी, कुछ ऐसी बात होगी जो आप हमारे लिसनर्स को बताना चाहते होंगे, तो मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी।
1: अपराजिता जी, बताऊँ, मैं सबसे पहले तो ये बताऊँ कि आज जो मेरी अनुभूति है
0: जी
1: यहाँ इस जगह पर आकर, चूँकि एक लंबे अंतराल के बाद श्रोताओं से सीधा ये जो हम बात कर रहे हैं बैठ के, तो मुझे लगता है कि आज शायद मैं पहली बार प्रसारण कर रहा हूँ। एक नयापन है आज भी। और जब पहले प्रसारण की आपने बात की तो मैं आपको बताऊं कि ये मेरा सौभाग्य है कि आकाशवाणी के कार्यक्रम अनुभाग में मैंने लगभग हर जगह पर काम किया है
0: जी।
1: शुरू में जब मैं आया आकाशवाणी में तो कैजुअल कंपियर होके आया, और वो भी ग्राम जगत के कार्यक्रम में आया।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया।
1: जी जी, ग्रामीण श्रोताओं से जुड़े हुए कार्यक्रम में मैं आया
0: जी।
1: किसानों से संबद्ध कार्यक्रम में आया
0: जी।
1: और उस दिन जब मैं रेडियो पर आया तो मैं आपको बताऊं कि मुझे लगा कि क्या सचमुच जिंदगी में सपने साकार होते हैं। और सपना वो भी मतलब के वो रात में नींद में देखा हुआ सपना नहीं
0: जी, जी।
1: जागे में देखा हुआ सपना।
0: बिल्कुल।
1: दरअसल बचपन में मुझे ध्यान आता है कि बचपन में जब हम लोग खेलते थे तो हमारे कई साथी बच्चे अपनी अपनी तरफ से कि मैं ये खेलूंगा अपनी अपनी पसंद का खेल बताते थे, और मेरी पसंद का खेल होता था रेडियो खेलना।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: वो माचिस की जो डिब्बी होती है
0: जी,
1: उसमें
0: जी।
1: धागा बना के और उससे एक तरफ से हम बोला करते थे और दूसरी तरफ से कहते थे अपने साथी बच्चों को कि सुनो तुम मैं क्या बोलता हूँ। तो मुझे लगा कि जब मैं आकाशवाणी में आया और दूसरी तरफ से लोग मुझे सुन रहे हैं तो क्या इस तरह से सपना भी साकार होता है।
0: क्या बात।
1: और अगर सपना साकार होता है तो आप सोच सकते हैं कि वो आनंद की तो चरम सीमा है वो।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरे प्रसारण का जो पहला अनुभव है वो मेरे लिए आनंद की चरम सीमा है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे लग रहा है कि मैं बस आपको सुनती रहूं। आप लेखक हैं, कवि हैं, और मैं अपने आप को इस स्टूडियो में ऐसा लिसनर्स के सामने

0: क्योंकि वो देख नहीं सकते, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि वो यहाँ का आंखों देखा हाल मैं बता रही हूँ कि मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ, और
1: नहीं
0: मुझे लग रहा है कि बस आप
1: अपराजिता
0: कहते रहें और हम
1: जी,
0: सुनते रहें।
1: अपराजिता जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप तो इस बात को एकदम अपने ध्यान से ही निकाल दें कि आप अपने को छोटी समझ रही हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पूर्व सहायक निदेशक रहा हूं तो इसलिए, ऐसा कुछ नहीं है। प्रसारक, इसीलिए मैंने शुरू में कहा
0: जी जी
1: प्रसारक। प्रसारक का मतलब है पूरा, ये जो पूरा संस्थान है ये
0: बिल्कुल
1: प्रसारकों का संस्थान है, तो यहाँ हम सभी मिलके एक साथ होते हैं, और
0: जी
1: इसीलिए हमारे यहाँ जो आकाशवाणी की परंपरा रही है,
0: बिल्कुल
1: या ऑल इंडिया रेडियो से पहले उसकी परंपरा रही है, वहाँ मैं शब्द का व्यवहार नहीं हूँ कि हम शब्द का व्यवहार
0: बिल्कुल
1: होता है
0: बहुत
1: कि
0: खूब
1: हम आकाशवाणी से बोल रहे
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: हमें
0: जी
1: तो वो हम है, एक सामूहिक
0: बिल्कुल
1: हमारी प्रस्तुति होती है, और उसी मेहनत से हम लोग सब मिलकर प्रसारण करते हैं, तो हम लोग बराबर के हिस्सेदार होते हैं
0: बिल्कुल।
1: प्रसारण में जाने के लिए।
0: देखिए
1: और
0: सर, आपने अपनी बातों में कैसे इतनी बड़ी बात को कितनी सहजता से कह दिया, और बहुत मतलब एक आनंदमय अनुभव इस समय हो रहा है। सर, आप अपने कुछ खास और ऐसे यादगार पल हमारे साथ बांटिए।
1: जी, आकाशवाणी में जैसा कि मैंने बताया कि मैंने शुरुआत तो की अपने आकाशवाणी के काल का कैजुअल कंपेयर के रूप में, लेकिन उसके बाद संयोग ये रहा कि कुछ समय बाद वहीं एक रिक्ति निकली,
0: जी
1: आकाशवाणी भागलपुर में मैं था, वहीं एक रिक्ति निकली उद्घोषक की,
0: जी
1: और
0: जी
1: उद्घोषक पद पर मेरा चयन हुआ, और उसके बाद मैं नियमित उद्घोषक के रूप में वहाँ आया
0: वाह
1: 1987 में। वो 85 में मैं कैजुअल के रूप में आया था,
0: जी
1: 1987 में रेगुलर यानी नियमित के
0: जी
1: रूप में आया, और जब आया तो ये हुआ कि अब क्योंकि ऑपरेट करना पड़ेगा
0: बिल्कुल
1: मैं कंसोल,
0: जी जी जी
1: तो उसके लिए ट्रेनिंग होगी, फिर
0: जी
1: किस तरह से प्रसारण में उद्घोषक को किस तरह से जाना होगा, क्या तैयारियां करनी होगी, तो इसके लिए एक सप्ताह की मेरी ट्रेनिंग लग
0: बिल्कुल
1: गई, और वो ट्रेनिंग पेक्सको के साथ, पेक्स कोऑर्डिनेशन के साथ, जो समन्वय देखती थी
0: जी
1: मेरी मैडम थी एक विनोद बाला सिंह जी उस समय, तो उनके साथ मेरी ड्यूटी लगी एक सप्ताह के लिए कि वो मुझे बताएंगे,
0: जी
1: तो आज से मैंने शुरू किया वो प्रशिक्षण लेना, और कल दोपहर 12 बजे अचानक से सूचना आई कि जो दूसरी सभा के उद्घोषक आने वाले थे वो किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाएंगे।
0: जी जी
1: अब इतनी जल्दी में, 12:30 बजे से दूसरी सभा शुरू होनी थी,
0: जी
1: तो इतनी जल्दी में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो सकती, और जो पहली सभा के थे वो जा चुके थे क्योंकि सूचना उनकी बड़ी विलंब से आई थी दूसरी
0: जी
1: सभा वाले के, तो ऐसी स्थिति में ये हुआ कि ऐसा किया जाए कि आप चले जाएं।
0: अच्छा
1: अब मेरे
0: जी
1: लिए तो बड़ी स्थिति आप समझ सकती हैं
0: इमरजेंसी ड्यूटी लग गई
1: जी, कि मुझे तो एक
0: आपकी
1: सप्ताह का प्रशिक्षण लेना था
0: बिल्कुल,
1: और
0: और
1: अभी एक
0: आधे
1: ही
0: दिन
1: दिन का
0: में
1: लिया
0: बिल्कुल
1: था,
0: जी।
1: दूसरा दिन अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन फिर भी प्रसारण तो रुक नहीं सकता है, जैसे
0: बिल्कुल
1: कहते हैं कि कोई शो रुकता नहीं है, वैसे हमारा प्रसारण रुक नहीं सकता है, और उसमें गए, और चूंकि मैं कैजुअल रहा था वहाँ तो देख तो रहा ही था लोगों को कि मेरे
0: जी
1: सामने किस तरह से कंसोल ऑपरेट किया जाता है और कैसे बोलते हैं किस तरह से, तो मैं
0: बिल्कुल
1: गया और मैंने उस दिन वो कर लिया, कार्यक्रम कर लिया, उस दिन उद्घोषणा मैंने शुरू कर दी,
0: जी
1: और ईश्वर की कृपा ये है कि उद्घोषणा पूरे सभा में कर ली, अच्छी तरह से कर ली,
0: बहुत बढ़िया
1: और शायद मतलब कि अगर एक सप्ताह की तैयारी के बाद जाता तो मेरे अंदर हो सकता है कोई झिझक होती, लेकिन ये अनायास जो स्थिति आ गई थी
0: जी जी
1: तो उस स्थिति का चूंकि मुकाबला करना था इसलिए अंदर में एक साहस था और किसी
0: बिल्कुल
1: तरह की झिझक नहीं हुई, बड़े ही अच्छे से वो प्रसारण हो गया। ये
0: वाह
1: मेरा एक अनुभव मैंने आपके साथ
0: क्या
1: बांटा।
0: बात है सर, ऐसी ही बहुत सारी बातें आपकी सुनने की लालसा हो रही है, पर क्योंकि

0: वादा किया है श्रोताओं को कि आप ही के पसंद के गीत भी उनको सुनवाती रहूंगी अपने इस विशेष प्रोग्राम में। जिसने अभी ट्यून इन किया है उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के संग
1: यहां अपराजिता जी। एक बात मैं और कह देना चाहूंगा कि चूंकि आपने शुरू में ही वो जो गीत बजाया है ये कैसा सुर मंदिर है जिसमें संगीत नहीं, तो आकाशवाणी तो सुर मंदिर ही है, तो इसमें तो संगीत तो होना ही होना होगा, नहीं तो श्रोता तो फिर हमारे पीछे पड़ेंगे कि आपने शुरू में ही अपनी बात जो कही उससे आप अलग हट रहे हैं।
0: बिल्कुल, तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सर की ही पसंद का एक और बहुत ही खूबसूरत गाना हम आपको सुनवा रहे हैं शोर फिल्म से। वैसे आपको जाना कहीं नहीं है, आप सुनते रहिए आकाशवाणी, क्योंकि इस गाने के बाद बहुत सारी दिलचस्प बातें हम यहाँ करेंगे श्री अरुण कुमार पासवान के साथ। और सर लेखक भी हैं, जाने माने कवि भी हैं, बहुत सारे पुरस्कार इन्हें मिले हैं, उसकी भी बातें होंगी।

0: आप सब तो जानते ही हैं कि आकाशवाणी इस साल 90 वर्ष अपने पूरे कर रहा है और इसी उपलक्ष में आज आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर आकाशवाणी के संग यादों के रंग में हमारे साथ एक विशेष अतिथि हैं श्री अरुण कुमार पासवान और इनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं। सर यहाँ पूर्व सहायक निदेशक रहे हैं आकाशवाणी में और बहुत सारे अपने अनुभव संस्मरण हमारे साथ साझा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए सर मुझे ये ख्याल आ रहा है कि क्या कभी ऐसी कोई ऐसा पल आया कि आपको चुनौती का सामना करना पड़ा हो अपने कार्यक्षेत्र में और आपने उसे कैसे पार किया और आजकल के युवा प्रसारण कर्मियों को आप उससे क्या सीख देना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे कि वो कुछ सीख सकते हैं?
1: जी अपराजिता जी, मुझे याद आता है कि मैं जब उद्घोषक होकर नियमित उद्घोषक होकर जब आया आकाशवाणी में तो जो एक शपथ लेने की जो हमारे यहाँ परंपरा है जब किसी पद पर आप आते हैं तो शपथ लेने की परंपरा है तो उस समय हमारी केंद्र निदेशक थीं वहाँ श्रीमती विजय लक्ष्मी सिन्हा जी जो बाद में आकाशवाणी की उप महानिदेशक भी हुई थीं और वो हमारे थे केंद्र निदेशक उस समय तो उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि आप आकाशवाणी में आए हैं दूसरे संस्थानों में और आकाशवाणी में एक जो मौलिक अंतर है उसे आप आज से जान लीजिए कि दूसरी जगहों में घड़ी देखकर काम करते हैं और आकाशवाणी में काम करके घड़ी देखते हैं।
0: क्या बात है।
1: मैंने सचमुच में उसे मंत्र के रूप में स्वीकार किया।
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद जीवन में कभी भी काम पूरा होने से पहले मैंने घड़ी नहीं देखी।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
1: और उन्होंने ही हम बिल्कुल नए नए आए थे तो उन्होंने अपने हमारे यहाँ जो परंपरा थी कि हम लोग जो उसको नियत बिंदु तालिका कहते हैं, फिक्स पॉइंट चार्ट कहते हैं।

0: जी
1: हैं
0: सर, जी।
1: वो हम बदलते रहते हैं
0: जी।
1: तो उन्होंने जब एक नया फिक्स पॉइंट चार्ट दिया तो उसमें एक कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया, गानों की ही प्रस्तुति थी, गानों का कार्यक्रम था, लेकिन उन्होंने कहा कि सिर्फ उद्घोषणा करके गाने नहीं बजाए जाए बल्कि गानों को प्रेजेंट किया जाओ, कुछ बोला जाए, ऐसा लगे लोगों को कि आप उस उन गानों से जुड़ रहे हैं और श्रोताओं को उन गानों से जोड़ रहे हैं। तो इसमें थोड़ी सी तैयारी आप लोगों को करनी पड़ेगी। तो शुरू हुआ, लोगों ने किया, और भी उद्घोषक थे, लेकिन जो वरिष्ठ लोग थे सप्ताह 10 दिन के बाद वो लोग कहने लगे कि ये बहुत मेहनत का काम है, तो इतना समय हमारे पास तो अलग से होता नहीं है, दूसरे और भी काम होते हैं, सारी तैयारी करनी पड़ती है, तो धीरे धीरे धीरे उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन मुझे लगा कि मेरे लिए एक अवसर है
0: जी,
1: मेरे लिए वो जो चुनौती है
0: बिल्कुल
1: कि इस तरह से आने की, वो एक अवसर है कि इसी बहाने मैं कार्यक्रम प्रस्तुत करना सीख रहा हूँ, कार्यक्रमों के बारे में, गानों के बारे में, या गानों को प्रस्तुत करते हुए श्रोताओं से किसी अन्य विषय के बारे में कुछ लिखने की क्षमता मैं यहाँ से तैयार कर सकता हूँ। तो वो मैंने शुरू किया और उसने मुझे पूरे जीवन में काम दिया। और आज जो आप 2-3 बार अभी कह चुकी हैं कि लेखक भी हैं, कवि भी हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है।
0: क्या बात है,
1: वो जो मेरे सामने अवसर आया उसका बहुत बड़ा योगदान है। और एक और बड़ी चुनौती मुझे ध्यान में इस समय आ रही है अपराजिता जी, कि हमारे एक ये दूसरे समय की बात है, तब की बात नहीं है
0: जी।
1: हमारे निदेशक उस समय हुए थे, होते थे श्री वीरेंद्र शुक्ल, तो उन्होंने एक दिन मुझे एक आलेख लाकर दिया और उन्होंने ये कहा कि ये आलेख जो है इसे आज शाम 7 बजे बजना है।
0: अच्छा,
1: इसको डायलॉग फॉर्म में बजाना है।
0: अच्छा,
1: और मतलब कि डायलॉग भी जो होगा वो मतलब नाटकीय अंदाज में होगा, उसी तरह का आलेख है ये। और मतलब कि दूसरा कौन आदमी होगा, एक तो आप कर लीजिएगा, एक और कौन आदमी होगा उसे आपको चुनना है, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं, मैं कहीं जा रहा हूँ, इसे आप संभाल लीजिएगा। 7 बजे का समय दिया था उन्होंने कि 7 बजे आपको करना है, और आलेख उन्होंने मुझे दिया था 4 बजे। दिक्कत ये थी कि दूसरा कोई मुझे आदमी मिल नहीं रहा था।
0: अच्छा,
1: तो मेरे पास चुनौती थी कि अब जब डायलॉग करने हैं तो 2 लोगों में ही करने हैं
0: जी।
1: अपने से तो मैं मोनोलॉग कर सकता हूँ, डायलॉग तो नहीं कर सकता हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: लेकिन अब उनका आदेश है तो चलिए इसे मैंने चुनौती के रूप में लिया।
0: बिल्कुल,
1: और चूंकि नाटकों से मेरा संबंध पहले से था, मंचों पर भी काम किया था और आकाशवाणी में भी काम किया था आने के बाद, तो मैंने वो दोनों जगह अपने को ही रखा और इस तरह से उसे प्रस्तुत किया कि, लेकिन उसमें ये हुआ कि नाम मुझे नहीं बताना पड़ा, मैं कैसे बताता कि कौन कौन इसमें भाग ले रहे हैं, उसमें उद्घोषणा नहीं की
0: जी,
1: मैं दोनों ही था, मैंने उसमें नाम नहीं लिखा। अगले दिन जब कार्यक्रम की बैठक हुई तो उसमें ऐसा हुआ कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था
0: जी,
1: दोनों ही लोगों ने अच्छा काम किया था। तो मैंने कहा कि तो दोनों लोगों में से दोनों लोगों को तो आप लोग पहचानते ही होंगे, तो एक नाम तो मेरा ले रहे थे सभी, लेकिन दूसरे नाम में कोई किसी का नाम ले रहे थे, कोई किसी का नाम ले रहे थे,
0: पहचान नहीं पाए, क्या बात है।
1: और आखिर में जब मैंने ये बताया कि मेरे पास कोई उपलब्ध नहीं थे और मुझे भी उस जगह पर लगना पड़ा, तो सारे लोग खुश हुए। हालांकि मतलब तकनीकी वो गलती हुई कि वहां मैं उद्घोषणा नहीं कर पाया कार्यक्रम में कि कौन इसमें और भी प्रतिभागी हैं, लेकिन अब जिम्मेदारी थी, वो उस चंक को खाली नहीं जाना था, उससे बजना था, तो वो ऐसी कई चुनौतियां प्रसारण में आती रहती हैं।
0: बिल्कुल,
1: और मतलब उनका मुकाबला आपको करना होता है, करना चाहिए, इसीलिए आप जो हैं आकाशवाणी में, आप कर्मचारी सिर्फ नहीं होते हैं, आप यहाँ कलाकार होते हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है।

0: एक एक शब्द में ऐसा लग रहा है आज एफएम गोल्ड के स्टूडियो में जैसे मोती बरस रहे हूँ, और मैं तो यहाँ इन मोतियों को बटोर ही रही हूँ और झोलियाँ भर रही हूँ। एक खुशी का एहसास है बहुत ज़्यादा, और ये भी खुशी है कि आकाशवाणी 90 साल पूरे कर रहा है, और इसी के साथ आप तक ऐसे अनमोल रत्न हम ढूंढ के लाए हैं जिनसे बातचीत हो रही है, और आप तक ये इतने अपने जीवन के जो सभी इनकी कह सकते हैं कि जीवनी का जो हिस्सा रही हैं बातें, उनको हमारे साथ साझा कर रहे हैं, और सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। देखिए कितनी अच्छी बात सर ने बोली कि चुनौती को अवसर की तरह लिया, और क्या चाहते हैं हम, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें आज हम सीख रहे हैं, और कुछ ही आसान से पलों में सर ने अपने यहाँ हमें बताया। सर एक गाना आप बताइए आपकी पसंद का हम यहाँ बजाना चाहेंगे।
1: हाँ, मुझे लगता है कि एक गाना है मौसम फिल्म में,
0: जी जी,
1: वो लता मंगेशकर और भूपेंद्र जी का गाया हुआ है, दिल ढूंढता है।
0: वाह वाह क्या बात है, और ये खूबसूरत गाना सर की पसंद का आप सबके लिए भी और हमारे लिए भी।

एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और जल्द वापस आएंगे आकाशवाणी के संग यादों के रंग में। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: जी एक बार फिर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ आज विशेष अतिथि हैं आकाशवाणी के संग यादों के रंग में, जो आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर हमारे साथ इस उपलक्ष में, इस श्रृंखला में शामिल हुए हैं और अपने बहुत सारे अनुभव, संस्मरण, यादें जो हैं हमारे साथ बांट रहे हैं और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर आपने शुरू से मेरे साथ इस प्रोग्राम को सुना है तो आप समझ पा रहे होंगे कि किन मोतियों की मैंने बात की थी इस ब्रेक पर जाने से पहले, गाना सुनने से पहले। तो कुछ और मोती बटोर लेते हैं, अभी हमारे पास लगभग 9 मिनट और हैं इस प्रोग्राम में। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसा आपने भी कहा कि मैं कई बार बता चुकी हूँ, आप एक बहुत अच्छे कवि हैं, आपके बहुत सारे काव्य संग्रह आए हैं और लेखक भी हैं, तो आकाशवाणी ने आपकी रचनात्मकता को प्रभावित किया ये हमने अभी जाना,

0: तो कोई एक आपकी कृति जो आप हमारे साथ यहां साझा करना चाहते हो?
1: वैसे तो कविताएं और भी हो सकती थीं, लेकिन चूंकि 90 साल हम मना रहे हैं आकाशवाणी के, 90 साल इस संस्थान के ऑल इंडिया रेडियो से लेकर आकाशवाणी के इस पूरे जीवन काल का जो है ये 90 वर्ष हम पूरा कर रहे हैं, और इसमें एक बड़ी चीज होती है किसी भी, चूंकि यहाँ प्रसारण सभा हमारी होती है तो इसका आरंभ जो होता है तो अब तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टेशन, ज्यादातर स्टेशन अब लगातार प्रसारण करते हैं 24 घंटे, तो उसमें तो आरंभ और अंत की बात होती नहीं है, लेकिन जब सभा शुरू करने की बात होती थी, अलग अलग सभाएं शुरू होती थी, तो तब उस समय संकेत धुन का बड़ा महत्व होता था।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और संयोग से आकाशवाणी संकेत धुन जो है ये इतनी अच्छी धुन है कि मुझे तो इससे अच्छी धुन आज तक कहीं मिली नहीं।
0: बिल्कुल।
1: तो उसी पर मैं एक कविता, चूंकि जब आकाशवाणी को इतने दिनों तक पहले श्रोता के रूप में और बाद में उसमें उसके सेवक के रूप में, तो वो जो उससे आनंद लिया है, जो उससे महसूसा है हमने, तो उससे जुड़ी हुई एक ये कविता है आकाशवाणी संकेत धुन के लिए।
0: बिल्कुल सर।
1: इसे इस तरह आप अनुभव कर सकते हैं अगर आपने सुना हो तो, कि प्रथम उषा किरण जैसी, प्रथम उषा किरण जैसी, आनंद आवाहन जैसी, बारिश की फुहार जैसी, बसंत के बयार जैसी, नबोढ़ा के श्रृंगार जैसी, प्रथम प्रेमोपहार जैसी, शिशु को मां की छुवन जैसी, मलयागिरी के पवन जैसी, बेला की खुशबू जैसी, जीने की आरजू जैसी, वादियों की सदा जैसी, पहाड़ियों की अदा जैसी, यमन जैसी, मल्हार जैसी, शिवरंजनी में दुलार जैसी, संतूर जैसी, सितार जैसी, वायलिन के उद्गार जैसी, किसानों की आस जैसी, बागानों की सांस जैसी, नील गगन की शांति जैसी, और मन की विश्रांति जैसी, देवदूत के पदचाप जैसी, देवदूत के पदचाप जैसी, भूमि भूमा मिलाप जैसी, ये धुन नहीं संगीत सुधा है, तृप्त करती मन की क्षुधा है, तृप्त करती मन की क्षुधा है।
0: वाह क्या बात है। और सुनते ही ऐसा लग रहा है जैसे आपके कानों में कोई आकाशवाणी का रस मानो घोल रहा है। बहुत खूब सर, बहुत ही खूबसूरत ये कविता। मुझे लगता है कि सिर्फ मैं नहीं, जितनों ने ये अब तक कविता सुनी होगी और जो आकाशवाणी को जी रहा है जैसे आपने जिया है, हम कोशिश कर रहे हैं, और जो जानता है आकाशवाणी को या नहीं भी जानता, यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी, वो जरूर जान जाएगा इसे सुनने के बाद।
1: अपराजिता जी, यहाँ मैं अपनी यात्रा में से एक छोटी सी बात सुनाना चाहूंगा।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन महत्वपूर्ण है
0: कि
1: पहले जब कि इतने सारे FM चैनल नहीं हुआ करते थे, सिर्फ आकाशवाणी आकाशवाणी हुआ करती थी, और टीवी पर भी सिर्फ दूरदर्शन ही हुआ करता था।
0: बिल्कुल।
1: तो वैसी स्थिति में, जैसे मैंने बताया विजयलक्ष्मी सिन्हा जी के बारे में, वैसे ही मेरी एक और स्टेशन डायरेक्टर थी श्रीमती ग्रेस कुजूर, वो भी बाद में महानिदेशालय में आई थी। तो उन्होंने एक बार एक कार्यक्रम हमें आवंटित कर दिया, उस समय मैं उद्घोषक ही था, तो कार्यक्रम आवंटित कर दिया, 5 मिनट का चंक दिया और कहा कि 5 मिनट में आप कुछ ऐसा कुछ प्रोडक्शन करें जो कि श्रोताओं को रुच जाए। तो वैसी स्थिति में हमने एक, मतलब दो पात्रों को लेकर एक छोटी स्किट बनाई और मतलब कि उसका नाम रखा मामा भांजा। एक मैं था, एक श्री प्रकाश जी नाम के हमारे सहयोगी

0: थे, वो ड्यूटी ऑफिसर थे, मैं अनाउंसर था। और वो जब हमने शुरू किया तो ये था लोगों में कि श्रोताओं की तरफ से आता था कि उस समय आकाशवाणी में, दूरदर्शन में एक कार्यक्रम गानों का होता था उसी समय जिस समय हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे होते थे। तो वो कहते थे, श्रोता अक्सर कहते थे हमें कि वो 5 मिनट जो होता है उस 5 मिनट में हम आकाशवाणी को सुनते हैं और दूरदर्शन को देखते हैं।
1: क्या बात है
0: उसकी आवाज नहीं सुनते।
1: जी जी जी।
0: तो ये है कि मतलब कि हम लोग जब हमें कोई दायित्व दिया जाए और उसे हम मनोयोग से करें तो कई बार हम कहते हैं कि वहाँ इस कार्यक्रम से इसका मुकाबला कैसे हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मनोयोग अगर है तो हर जगह हम मुकाबला करेंगे और विजयी होकर आएंगे।
1: बिल्कुल, बहुत खूब। और इसी के साथ सर, आपकी ही पसंद के गाने के साथ काजल फिल्म का ये गाना है
0: जी,
1: हमें आज के इस जो प्रोग्राम है आकाशवाणी के संग यादों के रंग को यहीं समाप्त करना होगा, लेकिन इच्छा मेरी दिली यही है कि ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहे, मैं आपके साथ यहाँ माइक्रोफोन के सामने खूब बातें करती रहूं और खूब जो खजाना है वो बटोरती रहूं।
0: गाना से पहले मैं FM गोल्ड को और आकाशवाणी दिल्ली को
1: जी
0: और यहाँ के प्रबंधन को आपके सहित धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये अवसर अपने विचार साझा करने का मुझे मिला आज।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ यहाँ समय बिताने के लिए, अपना बहुमूल्य समय आपने हमारे लिए निकाला और इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ यहाँ साझा की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं।

0: श्री प्रधान ने ये बात भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR के 58वें स्थापना दिवस के अवसर पर की। उन्होंने कहा कि ये संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: मैं श्री हेमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और अनुगत्य पोषण कर।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस समारोह में उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में पहचान बनाई है। संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने इंडिया पोस्ट की अगली पीढ़ी के डिजिटल प्लेटफॉर्म एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी APT के दूसरे चरण की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी किस प्रकार शाखा कार्यालयों को वास्तविक समय की जानकारी प्रदान कर रही है। इससे ये कार्यालय स्थानीय मांग का विश्लेषण करने, प्रदर्शन की निगरानी करने और जमीनी स्तर पर त्वरित डेटा आधारित निर्णय लेने में सक्षम हो रहे हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि सरकार का डिजिटल प्रयास एक मजबूत सुरक्षित संरचना सुनिश्चित कर रहा है, साइबर सुरक्षा को मजबूत कर रहा है और विश्वसनीय, लचीली तथा भविष्य के लिए तैयार डिजिटल सार्वजनिक सेवा वितरण को सक्षम बना रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री मोदी का स्वीडन और चौथे चरण में नॉर्वे जाने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The National Testing Agency, NTA, has decided to cancel the NEET UG 2026 examination conducted on the 3rd of this month for admission to undergraduate medical education. In a social media post, NTA informed that this decision has been taken in the interest of students and in recognition of the trust on which the national examination system rests. The agency also stated that the government has decided to refer the matter to the Central Bureau of Investigation for a comprehensive inquiry into the allegations of paper leak. The agency said it will extend full cooperation to the Bureau and provide all materials, records and assistance required for the investigation. It said the decision was taken following the inputs examined by the NTA in coordination with central agencies and investigative findings shared by law enforcement agencies. The NTA said the examination will be reconducted on dates to be notified separately. Registration details, candidature information and examination centres selected for the May 2026 cycle will remain unchanged and be carried forward to the reconducted examination. The agency informed that no fresh registration will be required and no additional examination fee will be levied. Senior BJP leader Hemanta Biswa Sarma

सभी को प्रणाम। मेरा नाम है विभा रानी। मैं एक फिल्म और थिएटर एक्टर हूँ और मैथिली और हिंदी के लेखक। आकाशवाणी अपने 90 साल पूरे कर रहा है और यह हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी हाँ, रेडियो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और मुझे इस बात की खुशी है कि इस अभिन्न हिस्सा का मैं भी एक छोटा सा हिस्सा रही हूँ। मैं जब स्टूडेंट थी, पढ़ती थी, तो आकाशवाणी दरभंगा में मैंने कैजुअल अनाउंसर और ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में काम किया। मैथिली ड्रामे किए, हिंदी ड्रामे किए और कैजुअल अनाउंसर के रूप में मैं वहाँ अनाउंसमेंट करती थी। लेकिन थोड़े ही समय में आकाशवाणी और रेडियो ने मुझे जो दिया वो आज तक मेरे लिए एक नेमत की तरह है। परफॉर्मेंस, वॉइस मॉड्यूलेशन, डिक्शन, रवानगी, कैसे किस बात को कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, इन सब की जानकारी मुझे धीरे धीरे धीरे धीरे रेडियो से मिली। और आज जो कुछ भी आप मुझ में पा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इस रेडियो का हिस्सा है, उसका योगदान है, उसका सहयोग है। और रेडियो सुनना कभी मत भूलिएगा। एक बार फिर से आप सभी को आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर

मैं हूं आपके साथ अपराजिता, आपके अपने आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं प्यार का मौसम फिल्म से ये प्यारा सा गाना मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर अगला जो गाना है वो है फिल्म नाखुदा से लता जी और नितिन मुकेश की आवाज में।

0: अहमदाबाद और छतरपुर स्थित सीआरसी में जिन पदों के लिए रिक्तियां उपलब्ध हैं वे हैं निदेशक सलाहकार एक पद, सहायक प्रोफेसर दो पद, विशेष शिक्षा में व्याख्याता दो पद। इन पदों के लिए पात्रता संबंधी विवरण जैसे आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और अन्य आवश्यकताएं इस वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं। वेबसाइट का पता है www.ayjinishd.nic.in। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उपनिदेशक कृषि एक पद, उपनिदेशक सिविल मैकेनिकल एक पद, प्रधान निजी सचिव दो पद, लेखाधिकारी एक पद, उच्च श्रेणी लिपिक एक पद तथा अवर श्रेणी लिपिक एक पद। पात्रता शर्तों आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए जल शक्ति मंत्रालय की वेबसाइट jalshakti.gowr.gov.in तथा केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर भी ये तमाम जानकारी विस्तार से उपलब्ध है जिसका पता है www.cwc.gov.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर में इन पदों की कुल 83 उपलब्धियां मौजूद हैं और इनके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। रिक्तियां विभाग के अनुसार तय की जाएंगी। विभागों के नाम हैं एनेस्थीसिया, बायोकेमिस्ट्री, कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, डर्मेटोलॉजी, ENT, फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूरोनेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, फिजियोलॉजी, साइकेट्री, पल्मोनरी मेडिसिन, रेडियोलॉजी, रेडियोथेरेपी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन और ब्लड बैंक, ट्रॉमा एवं सर्जरी मेडिसिन तथा यूरोलॉजी। आवेदन पत्र, विभागवार सीटों की संख्या, आरक्षण नियमों और शर्तों आदि के विस्तृत विवरण के लिए देखिए वेबसाइट www.aimsgorakhpur.edu.in। इन भर्तियों के बारे में कोई भी नई सूचना इसी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। आप एक बार फिर वेबसाइट का पता नोट कर सकते हैं www.aimsgorakhpur.edu.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।

नमस्कार। कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में देंगे आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार और चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। खेल के मैदान की हलचल की देंगे आपको जानकारी और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर। इसके अलावा बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। और आज डेटलाइन सेगमेंट में बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण पेशे की जो मानवीय संवेदना के बहुत ही क्रूसियल जिसे कहें पहलू से जुड़ा हुआ है। आज इंटरनेशनल नर्सेस डे है, इस पर हम बात करेंगे। और आज हम जिन्हें याद कर रहे हैं उन्हें कहा जाता है कवियों के कवि, कवि शमशेर सिंह बहादुर को। तो शुरुआत में उनकी जो कविता है, जो सत्य को अभिव्यक्त होने के लिए किसी बाहरी सहारे या गवाह की आवश्यकता नहीं होती है ऐसा कहती है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो सत्य है वो स्वयं प्रकट होता है। वो बोलते हैं अपनी कविता बात बोलेगी में, हम नहीं भेद खोलेगी बात ही, सत्य का मुख झूठ ही आंखें क्या देखें, सत्य का रुख समय का रुख है, अभय जनता को सत्य

0: gold purchases and foreign travel. The appeal highlights that a significant portion of India's foreign exchange is spent on imports like crude oil, gold, edible oil and fertilizers. And these restraints will foster a culture of collective responsibility rather than panic. So we shouldn't be panicking on these appeals. And of course, it's he has been urging all the individuals to contribute to national resilience, similar to the efforts seen during the pandemic. Well, we must all take it seriously and try to follow it as economic patriotism rather than anything else. And shall we begin with our headlines now, Jagriti?
1: Bilkul, shuruaat karte hain. परीक्षा पत्र लीक के आरोपों के कारण मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच के आदेश.
0: हेमंत बिस्वा सरमा टेक्स ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ असम फॉर सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म.
1: सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की.
0: President Draupadi Murmu confers National Florence Nightingale Awards on 15th Nursing Professionals.
1: IPL cricket mein aaj sham Gujarat Titans ka muqabla Sunrisers Hyderabad se.
0: And as always, Jagriti, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about, as you mentioned in the beginning, International Nurses Day.
1: Ji.
0: Today we are celebrating one of the most compassionate and dedicated professions in the world, that is nursing. Today, the 12th of May, world observes International Nurses Day, commemorating the birth anniversary of Florence Nightingale, the pioneer of modern nursing, whose service and vision changed healthcare forever. And this year's theme is Our Nurses, Our Future. Empowered Nurses Save Lives. The theme highlights the urgent need to support nurses with better safety, respect, training, and resources, because empowered nurses create healthier societies.
1: दोस्तों, हर अस्पताल में आधुनिक मशीनें होती हैं, हर डॉक्टर के पास मेडिकल का ज्ञान होता है, लेकिन अस्पतालों में जो चीज़ सचमुच मरीजों को ठीक करती है वो होती है मानवीय देखभाल, और ये देखभाल अक्सर करती हैं नर्सेज. मुश्किल पलों में मरीज का हाथ थामने से लेकर लंबी रातों तक बिना थके काम करने तक नर्सें दुनिया भर की स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों की धड़कन हैं. वो कमजोरों को दिलासा देती हैं, परिवारों का सहारा बनती हैं, डॉक्टर्स की मदद करती हैं और इमरजेंसी में तुरंत कार्रवाई करती हैं और संकट के समय मजबूती से खड़ी रहती हैं. आज के कार्यक्रम का ये हिस्सा उन खामोश नायकों को समर्पित है जिन्होंने दूसरों की देखभाल के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है.
0: International Nurses Day is celebrated on the birth anniversary of Florence Nightingale, lovingly remembered as the lady with the lamp. Born in 1820, Florence Nightingale transformed nursing into a respected profession. During the Crimean War, she cared for wounded soldiers under extremely difficult conditions. At night, she would walk through hospital corridors carrying a lamp, checking on injured soldiers and comforting them.
1: फ्लोरेंस नाइटिंगेल के समर्पण ने दुनिया भर में आधुनिक नर्सिंग आंदोलन को प्रेरित किया. उनका मानना था कि करुणा, स्वच्छता, अनुशासन और मरीजों की देखभाल से उनकी जानें बचाई जा सकती हैं. उनके विचार आज भी स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को दिशा दिखाते हैं. उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि केवल एक व्यक्ति की दयालुता और दृढ़ संकल्प भी दुनिया को बदल सकता है.
0: Yes, Jagriti, just imagine a hospital without nurses. Who would monitor patients day and night? Who would provide emotional support to frightened families? Who would administer medicines, assist in surgeries, and respond instantly during emergencies? These are the nurses who ensure that healthcare functions smoothly every single minute, isn't it?
1: बिल्कुल. और ये अनुभव हम सब ने, आपने, मैंने या जो भी श्रोता सुन रहे हैं, उन्होंने ज़रूर किया होगा कि जब हम अस्पताल में होते हैं, इंसान वैसे ही टूटा हुआ होता है, तो तमाम जो मेडिकल प्रोसेस होती हैं उनमें जो समय जाता है, जो तकलीफ़ होती है, उनमें वाकई दिलासा देती हैं. जो नर्सेज होती हैं आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको तो देखती हैं, उसके अलावा कंसोल भी करती हैं, और ये बड़ी चीज़ हो जाती है. अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नर्सों की सराहना करते हुए उन्हें देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की रीढ़ और आशा का स्तंभ बताया और सचमुच उनका

0: योगदान अस्पतालों की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है.
1: And President Draupadi Murmu also today conferred the National Florence Nightingale Awards 2026 to 15 nursing professionals at a function which was held in Rashtrapati Bhavan. The award has been given for their outstanding contribution in the field of nursing. And these prestigious awards are presented to registered nurses, midwives, auxiliary nurse midwives and lady health visitors serving across central and state governments, union territories and voluntary organizations. Each award includes a certificate of merit, a cash prize of 1 lakh rupees and a medal symbolizing the nation's gratitude for the invaluable service rendered by these health warriors.
0: जी, और अपने संदेश में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ये अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के अमूल्य योगदान के प्रति एक उचित श्रद्धांजलि है जो करुणा और अटूट समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा में लगी हुई हैं. उन्होंने कहा कि नर्सिंग कर्मी सेवा के उच्चतम मानकों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए और अक्सर सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. राष्ट्रपति ने सभी पुरस्कार विजेताओं की कर्तव्य के प्रति उनकी प्रेरणादायक निष्ठा और रोगियों की देखभाल के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए उनके अथक प्रयासों की सराहना भी की.
1: Rightly so, Jagriti. In regard to their profession, now let us take a moment to see what all services nurses extend. These are rural health centers. They also serve us in urban hospitals, in schools and colleges, ambulance services, military healthcare units, in community outreach programs, in old age homes, and also in disaster relief camps. They work in every corner of society where care is needed.
0: बिल्कुल. और कभी कभी जो ज़रूरत होती है एक इंसान को वो दवाओं से पूरी नहीं होती है, दवाओं से वो उतनी जल्दी ठीक नहीं होता है जितना कि किसी का जो व्यवहार उसके प्रति है उससे वो ठीक हो जाता है. और जो नर्सेज हैं वो अक्सर यही करती हैं. वो परेशान मरीजों के लिए हिम्मत का सहारा बनती हैं, चिंतित परिवारों की बात सुनने वाली बनती हैं और ठीक होने के सफ़र में एक मार्गदर्शक बनती हैं और कभी कभी अकेले जो पल हैं उनमें एक दोस्त भी बन जाती हैं.
1: And many patients remember the smile of a nurse long after they recover. A reassuring voice saying, "You'll be all right," can give strength to someone battling illness. Nursing is not only a profession, it is a commitment to humanity. Friends, the COVID-19 pandemic showed the world the extraordinary courage of healthcare workers. While cities fell silent and people stayed indoors, nurses stepped forward fearlessly. They worked long hours in protective equipment, stayed away from families, and risked their own health to save others. It's not an easy job.
0: बिल्कुल. और कई नर्सों ने उन मरीजों को सांत्वना दी है जो अपने प्रियजनों से मिल नहीं पा रहे थे. वो हजारों लोगों के लिए देखभाल करने वाले भावनात्मक संबल और जीवन रेखा बन गईं. उनके समर्पण ने दुनिया को ये याद दिलाया कि नायक हमेशा कैप नहीं पहनते, कभी कभी वो मास्क, दस्ताने और यूनिफॉर्म भी पहनते हैं.
1: एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस ईयर्स थीम, इट फोकसेस ऑन एम्पावरमेंट. बट व्हाट डज एम्पावरिंग नर्सेस रियली मीन? It means providing safe working conditions, ensuring fair salaries to them, offering mental health support, providing advanced medical training, respecting their expertise, and of course, reducing workplace stress and burnout as well.
0: बिल्कुल. और जब नर्सों को सहयोग मिलता है तो मरीजों को बेहतर देखभाल मिलती है, समुदाय और भी स्वस्थ बनते हैं, स्वास्थ्य सेवा प्रणालियां और कहीं मजबूत होती हैं. कई देशों में नर्सें इन विषयों पर जागरूकता अभियान का नेतृत्व भी करती हैं जिनमें शामिल हैं टीकाकरण, पोषण, मातृ देखभाल, बाल स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, रोगों की रोकथाम. और उनकी भूमिका न केवल उपचार में बल्कि स्वस्थ समाज के निर्माण में भी बेहद महत्वपूर्ण है.
1: एंड वी कैन से एवरी नर्स कैरीज countless stories in their hearts, stories of newborn babies taking their first breath, stories of patients recovering after difficult surgeries, stories of elderly people receiving comfort and dignity, stories of hope returning where fear once existed. Many nurses work night shifts while their own families wait at home. Many skip meals during emergencies. Many continue smiling despite exhaustion because they know someone depends on them. Their service often goes unnoticed, but its impact is immeasurable.
0: बिल्कुल. और आज हमारे साथ जुड़ने वाले युवा श्रोताओं के लिए खासकर ये बताएं कि नर्सिंग दुनिया के

0: इसे फेंक देते हैं वे भी जमीन के प्रदूषण का बड़ा कारण बनते हैं और अगर ये कपड़े जलाए जाएं तो वायु प्रदूषण में भी बढ़ोतरी होती है। इसी समस्या का छोटा सा समाधान ढूंढा है नवी मुंबई के वस्त्र पुनर्प्रक्रिया सुविधा केंद्र यानी TRF ने। आइए जानते हैं कि किस तरह से ये सेंटर काम कर रहा है हमारी संवाददाता की इस रिपोर्ट में।
1: नवी मुंबई नगर निकाय के माध्यम से नवी मुंबई के बेलापुर में चल रहा वस्त्र पुनर्प्रक्रिया सुविधा केंद्र देश में इस तरह की पहली पहल है। पुराने कपड़ों की पुनर्प्रक्रिया से स्थानीय लोगों को रोजगार देने की इस पूरी चक्राकार अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण इस केंद्र ने प्रस्तुत किया है। कपड़ों के एकत्रीकरण से लेकर उनसे अपसाइकल्ड वस्तुएं बनाने की पूरी प्रक्रिया हमें बता रही है नवी मुंबई नगर निकाय के उद्यान विभाग की उपायुक्त स्मिता काळे।
2: इसके लिए दो सिस्टम्स अवेलेबल है। स्टेज में 250 गृह निर्माण संस्थाओं का चयन किया गया जहां पे एक बिन रखा गया जो सिर्फ पोस्ट कंज्यूमर टेक्सटाइल वेस्ट को कलेक्ट करता है और दूसरा है RRR सेंटर्स। यहां पे जिसको भी जो कपड़ा नहीं चाहिए वो वहां पे रख सकते हैं। तो ये दोनों सोर्स से महापालिका का जो विशेष कलेक्शन व्हीकल ये सब पोस्ट कंज्यूमर टेक्सटाइल वेस्ट को उठाता है और फिर TRF सेंटर में जमा कर देता है। वहां पे उसको तोला जाता है और उस कपड़े को हम 5 श्रेणी में विभाजित करते हैं। पुनर्वापर योग्य, अपसाइकलिंग, डाउनसाइकलिंग, रीसाइकलिंग या फिर अनुपयोगी योग्य। इस वर्गीकरण के उपरांत उसका सैनिटाइजेशन किया जाता है। वो जो कपड़ा है उस कपड़े के धागे अलग किए जाते हैं, उसको यान भी बोलते हैं। तो ये जो यान निकलते हैं इस यान से जो भी वस्तुएं हम यूज में ला सकते हैं ऐसी वस्तुएं बनाते हैं, जैसे बैग्स है, मैट्स है, कुछ एसेसरीज है, होम डेकोर आइटम्स है। इस TRF सेंटर में लास्ट ईयर 41.5 मेट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर टेक्सटाइल वेस्ट का संकलन किया गया है और उससे 41,000 से अधिक वस्तुओं का निर्माण किया गया है।
1: ये केंद्र पर्यावरण में जाने वाले वस्त्र कचरे को कम करने के साथ ही स्थानीय महिलाओं की आमदनी बढ़ाने का काम भी कर रहा है। एक केंद्र से शुरू हुई इस पहल के लिए भविष्य की संभावनाएं अगणित है और इस पर काम भी चल रहा है। पहले के जमाने में पुराने कपड़ों का पुनर्वापर घर पर ही होता था, लेकिन आज के बदलते तौर की जीवन शैली को देखते हुए नवी मुंबई का वस्त्र पुनर्प्रक्रिया सुविधा केंद्र एक ऐसी पहल है जो नवनिर्मिति और शाश्वत जीवन शैली का महत्व हमें बताती है। परिक्रमा के लिए नवी मुंबई से स्वप्ना हरड़कर के साथ मुंबई से मैं अंकिता आपटे।
3: And let's take you all to Itanagar, where the Center for Earth Sciences and Himalayan Studies and in collaboration with the National Center for Polar and Ocean Research and Northeastern Regional Institute of Science and Technology has successfully completed the 5th Khangri Glacier Expedition in the transboundary Margo Chu Basin of Tawang District in Arunachal Pradesh, a critical headwater region of the larger Brahmaputra Basin system. We have a report on this.
4: The scientific expedition commenced on 4th May 2026 with the objective of undertaking detailed glacier health assessments, cryospheric monitoring and climate-linked hazard investigations in the eastern Himalayan region. One of the major observations during expedition was the development of a significant glacier sinking zone within the study area, where the glacier snout is rapidly collapsing and creating unstable terrain conditions. The team noted that such geomorphological instability could substantially increase downstream vulnerability and landscape hazards in the Margo Chu Basin. Another major concern identified was the emergence of a potentially dangerous pro-glacial lake at an elevation of nearly 16,500 feet. The newly formed lake possessed a potential glacial lake outburst flood glove threat to the downstream regions of the Margo Chu Basin, with possible transboundary cascading impacts on vulnerable communities, ecosystems and river systems. Although the region experienced comparatively healthy winter snow accumulation this year, the expedition findings indicate that glacier melting continues at a critically high rate due to persistent climate variability and rising atmospheric temperatures across the eastern Himalayas. To strengthen long-term glacier monitoring and cryosphere research, the expedition team successfully installed 5 new scientific monitoring stakes at elevations reaching nearly 17,000 feet using a steam ice core drilling system integrated with precise differential global positioning system DGPS technology. These installations will support continued glacier mass balance assessments and surface velocity monitoring in the coming years. The team also retrieved valuable data sets from the existing automatic weather station and automatic water level recorder, including calibration and maintenance of both monitoring systems to ensure

आज जयंती है हिंदी सिनेमा के एक महान फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक विजय भट्ट की। उन्होंने प्रकाश पिक्चर्स की स्थापना की और बैजू बावरा, रामराज्य और गूंज उठी शहनाई जैसी क्लासिक हिट फिल्में दी जिन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग की नींव रखने में मदद की। तो आइए सुनते हैं बैजू बावरा से एक गीत।

0: उन्होंने 64 से अधिक फीचर फिल्मों का निर्माण किया। मुंबई के अंधेरी में प्रकाश स्टूडियो की उन्होंने स्थापना की। विजय भट्ट ने हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं की फिल्मों में अपना योगदान दिया है।
1: We also pay tribute to Anant Vitthal Kher, known as Dhananjay Kher, who was an Indian biographer who profiled certain politicians and political activists. Considering his prolific write-ups on freedom fighters that showcased he was bestowed with Padma Bhushan by the Indian government, he was also rewarded with the Vidyarthi Award by Nav Nalanda Mahavir Foundation in 1977 for his acclaimed contribution to the field.
0: कथक नृत्यांगना अलकनंदा देवी ने आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा। वे प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सितारा देवी की बड़ी बहन थीं। अलकनंदा देवी का ताल्लुक वाराणसी से था, हालांकि उनके बारे में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। अलकनंदा जी ने फिल्मों में भी काम किया। सोहराब मोदी की फिल्म हुमायूं में उन्होंने नृत्य किया।
1: And today we also pay tribute to Ghanshyam Nayak, who was an Indian drama, film and television actor. He first achieved fame as a child artist in the 1960 movie Masoom and the song Nani Teri Morni Ko Mor Le Gaye. Who doesn't know this song? His last memorable role was of Natwarlal Prabhashankar Udhaiwala or Nattu Kaka in Tarak Mehta Ka Ulta Chashma.
0: जी, और अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर की आज जयंती है। उन्होंने ये उपलब्धि 1956 में हासिल की। भारत के प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। नंदू नाटेकर ये पुरस्कार हासिल करने वाले भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी रहे। उन्होंने अपने करियर में 100 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते हैं। और चलते चलते आपको बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेटर और वायुसेना की पूर्व अधिकारी शिखा पांडे आज अपना जन्मदिन मना रही हैं, और इसके साथ ही इजाजत दीजिए जागृति और अनुजा को।
1: नमस्कार।
2: मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्स और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 5 बजे हैं, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: साथी बने गजराज
1: नमस्कार स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया अर्चोका भेलकक्ष पेंडारी बोदरई शाही डांड के वन क्षेत्रों में

0: विचरण कर रहे हैं।
1: सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 5 है। ये गणेशपुर, दलदली, मदन नगर, धर्मपुर, गौरा, भरदा, सिंघरा, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 23 है। ये चिनिया, महावीरगंज, शिवपुर, कनकपुर, लुर्गी, टकिया, मेंढारी, प्रेमनगर, कोटराही, भगवानपुर, नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 16 है। ये लक्ष्मणगढ़, जगन्नाथपुर, सायर, ससकालो, मुड़ापारा, सुखरी भंडार, कंडराजा, बैरडांड, दातीढाब, घटगांव, उरंगा, बरिमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव और कांसाबेल में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ा माचा, राजा आमा, महेशपुर, कुकुरगांव, कुदराझरिया, साजा पानी, तीता पाकेर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बाकारुमा, कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 136 है। ये गिरसा, पोटिया, आमगांव, रुपुंगा, तेजपुर, बेहरामार, बनहर, अवरानारा, कूड़ेकेला, पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, मुकुआ, जुनवानी, कुकरी कादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 5 है। ये बंगूरसिया, नवागांव, चक्रधरपुर, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वनमंडल के गोमरडा अभयारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये खम्हारपाली, पथरीपाली, दबगांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी, पकरीत, ताल दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट और तौरेंगा में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराझड़, डडईपानी, नगरार, खोलापारा, जिडार, छिंदौला, तौरेंगा, कावारामा, डूमरघाट, कोदोमाली, कोनारी, लूठा पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गाँव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
3: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 5:05 हुए हैं। अब समय है कार्यक्रम विवरण का। आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में आपको बताने का। तो सबसे पहले आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें। आज रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में बसंत तिमोथी का वायलिन पर बजाया राग जन सम्मोहिनी आप सुनेंगे। श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद का आनंद आप ले सकते हैं आज रात 10:00। रात 9:30 पर आदिवासी जनजाति संगीत के कार्यक्रम लोक सुधा में हल्बी गीत के कलाकार होंगे मेघनाथ पटनायक और साथी, और कमार गीत के कलाकार

चमत्कार होंगे। भोड़ भोड़ा सूरी और साथी। रात 8:15 पर लोक संगीत में कलाकार होंगे शैलजीत साहू और साथी। किसान भाइयों के कार्यक्रम चौपाल में आज शाम 7:21 पर आज की बात का विषय होगा अभी लेकर आओ पानी बचाए के उदीम। 7:30 पर किसान वाणी में फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में विषय होगा गर्मी में पशुओं की देखभाल और आहार प्रबंधन, और इस विषय पर जानकारी देंगी पशु चिकित्सालय भाटागांव रायपुर की वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर निधि बंजारी। संचालन करेंगे चंपेश्वर गोस्वामी। प्रस्तुत करता है शशि प्रकाश पांडे। प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया आज शाम 6:30 पर, और अब से थोड़ी ही देर में शाम 5:10 पर युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी में अपन गोट का विषय होगा कौशल विकास जरूरी है। क्रम सवाल जवाब और क्रम माटी के गीत आप सुनेंगे। चित्रपट संगीत का आनंद आप लेंगे शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर। ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम, और अब सुनिए कल के कार्यक्रमों के बारे में। कल रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन और रात 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है। दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:05 पर होगा हमारा दैनिक प्रसारण सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। प्रातः ही 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके पत्र। सुबह 9:00 गांधी चर्चा कार्यक्रम में महात्मा गांधी के संस्मरण मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ होगा। सुबह 9:40 पर और रात 9:15 पर सुगम संगीत में कलाकार होंगी मीनू पुरुषोत्तम। दोपहर में 12:30 पर सुगम संगीत में फनकार होंगे मेहदी हसन। शाम 6:30 पर सुगम संगीत में

राशि का महत्व और होगा क्रम पत्र मिला और युगल की ईद। कल शाम 7:21 पर किसान भाइयों के कार्यक्रम चौपाल में आज की बात का विषय होगा चिट्ठी मिलिस पत्रोत्तर कार्यक्रम और फल के प्रसंस्करण ला अपनावन अधिक लाभ कमावाओ। आज की सलाह में गर्मी माँ स्वास्थ्यवर्धक पेय एवं खाद्य पदार्थ, इस विषय पर जानकारी देंगी डॉक्टर रेखा सिंह और साथ ही होगा गीत संगीत और आज का प्रश्न। ये थे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5:10 हुए हैं। अब सुनिए युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दसवीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य, भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
4: पढ़ा लिखा संगी, ज्ञान के जो जलावाओ, अंधियारा ज्ञान ताला मिर्जुल के भगावाओ,
5: किताब संग दोस्ती करके नवा रद्दा अपनावाओ, मेहनत और विद्या के बल मा जीवन सफल बनावाओ।
4: पंडित मुकुटधर पांडेय के इस सुघर कविता के संग हमारे युवा संगी मन के सुघर कार्यक्रम युववाणी मा मैं तृप्ति भारती
5: और मैं ललिता साहू के राम राम जय जोहार।
4: और कैसे है संगी?
5: मैं तो बने हो संगी।
4: फिर आज तोरा आवाज निचट दबे हुए लगा थे।
5: हाँ संगी, देखना दो दिन बने झरझर ले पानी गिरीस, फिर जेठ है जेठ जैसे लगा थे।
4: हाँ ललिता, जेठ है तो ऐसे लगते जानो मानो एक के दिन में भूंजा जाबो।
5: हाँ तृप्ति, गाड़ी के सीट में चोर पिसान ला घोर के डारबे ना तो चीला घलाव चूर जाही। ए दिन तो पंखा कूलर घलाव आगे फेंका थे।
4: हाँ संगी, लइकापन ही बने रही।
5: वो कैसे तृप्ति?
4: लइकापन माँ जेठ रहे चाहे असाड़, दिन भर खेले कूदे माँ ऐसे मताए रहन कि घाम लू और पानी बादर कुछ के पता नहीं चले।
5: ठीक कहता संगी। वैसे तृप्ति, ते हाँ लइकापन माँ गर्मी छुट्टी में का करस?
4: मैं तो नानी घर चल दे।
5: वाह, तोरेच मजा है संगी।
4: कैसे और ते का करस?
5: हमन ल तो दाई ददमन कुछ कहीं सीखे बार भेज देवे।
4: माने?
5: माने हमन ताइक्वांडो सीखे बर जान, कबड्डी सीखे बर जान, नहीं ता इंग्लिश बोले ला सीखे बर जान।
4: अच्छा, ये तो बढ़िया है। वैसने तो महू जावा संगी।
5: ऐसे का? ते का सीखे जावस?
4: मैं ता सिलाई कढ़ाई बुनाई सीखे हूँ।
5: फिर तो एकल ले तोर कौशल विकास घलो होगे।
4: कौशल विकास एका होते?
5: कौशल विकास माने ऐसे कुछ सीखना जेकर ले पैसा कमाया जा सके।
4: ऐसे माने कौशल विकास मनखेला आत्मनिर्भर बनाथे।
5: हाँ तृप्ति, ए हर रोजगार के नवा रद्दा निकालते।
4: तब तो पढ़ाई लिखाई के संगे संग कौशल विकास करना अब बड़ जरूरी हवे।

0: हाँ तृप्ति, आज के युग में जिहाँ परिस्थिति कभू भी बदल जाते, कभू भी राजा ल रंक बना देते, ऐसे में इंसान ह अवसर खोज सकत है अगर ओकर कौशल विकास होए होही त।
1: हाँ संगी, आजकल तो नोनी मन टिफिन सर्विस में ही अपन पाक कला के जलवा बगरावत है।
0: हाँ तृप्ति, फिर कौशल विकास सिर्फ आर्थिक रूप में नहीं, सामाजिक और निजी रूप में घलो मजबूत बनाते।
1: हाँ ललिता, मनखे जब घर ले निकलते कई ठन जिनिस ल देखते, समझते, गुठियाए ल सीखते, त दिमाग घलो बाढ़ते। फिर आज AI के युग में कैसे कौशल विकास कर सकत हन ललिता?
0: बहुत आसान है तृप्ति, AI टूल्स के माध्यम ले बहुत कुछ सीखे जा सकत है।
1: अच्छा,
0: और एकर अलावा ना छत्तीसगढ़ सरकार ह कई ठन योजना चलावत है।
1: कौन कौन से?
0: छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना, ऐसने अब्बड़ अकन योजना भारत सरकार घलो चलावत है।
1: तोर बात ले तो लगत है कुशल बनना मनखे बर अब्बड़ जरूरी हवे।
0: हाँ संगी।
1: ललिता, तभी तो कहे जाते कौशल ही सफलता के
0: कुंजी आए।

0: इन सुघर गीत लापन शर्म सजाए रहीन उर्मिला विश्वकर्मा विजय लक्ष्मी वर्मा जी
1: सुने पर चाहिन हमारे संगवारी मन जुनवानी दुर्गले सुरित रमेश साहू तारा विद्या जितेंद्र किशन सुनीता ऋषिवन हिरेंद्र नीलकंठ चंद्रहास संजीव त्रिलोक रंजित साहू ग्राम भिलौरी बावन लाखले देवव्रत राघवेंद्र साहू बेबी विधि दीपिका कविता सृष्टि सिद्धि हेमंत कुमार साहू गुढ़ाराज कवर्धाले मनोज साहू चित्रेखा देवेंद्र लवीना चंचल वासनी गरिमा साहू नवगढ़ कटैले नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत जीत पुष्पांजलि वर्मा बम्बूडी बावन केरले डिगेस महिलांग रमाकांत चंद्रकांत महिलांग मनहा
2: के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ शत प्रतिशत प्लेसमेंट सहायता छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026 विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in
3: हेलो
4: राजेश जी मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूं
3: किसे?
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो दूसरे कमरे में जाइए अकेले आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं लंबे जाएंगे
5: 10 लाख दीजिए बच जाएंगे
3: सर इतने कहाँ से
5: एक लिंक भेजा है अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए बाकी बाद में
3: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं
4: अरे
3: काट दिया
6: पैनिक मत कीजिए पापा डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है ये सब फ्रॉड है
3: फ्रॉड
6: पुलिस बैंक आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे
7: आरबीआई कहता है
8: जानकार बनिए सतर्क रहिए
1: ललिता आज कौन दिन आए
0: आज मंगलवार है
1: माने आज क्रम सवाल जवाब के दिन आए
0: अच्छा
1: हाँ तो संगी देरी नहीं करन और झटकुन शुरू करथन हमार आज के क्रम सवाल जवाब ता ललिता ऐसे करथन मैं हाँ पाछू अंक खातिर पूछे गे रही से सवाल मतलब पढ़ देता हूँ और तैहा जवाब ला बता देबे तो संगवारी हो क्रम सवाल जवाब अंक 229 खातिर पूछे गे रही हमार पहलिया सवाल है ओलंपिक खेल के आयोजन कतका बछर में एक बार होते
0: संगी हो इस सवाल के जवाब है 4 बछर
1: ए अंक खातिर हमर द्वारा पूछे गेरी से दूसरा सवाल आए विश्व डाक दिवस कब मनाया जाते
0: दूसरा सवाल के जवाब आए 9 अक्टूबर
1: संगवारी हो ए अंक खातिर पूछे गेरी हमर तीसरा सवाल आए नाट्य शास्त्र के लेखक कौन आए
0: तीसरा सवाल के जवाब आए भरत मुनि
1: ए अंक खातिर पूछे गेरी चौथा सवाल आए विद्युत धारा के SI मात्रा के नाव बतावो
0: सवाल चौथा के उत्तर हवा

0: एम्पियर।
1: संगवारी हो, यंग खातिर पूछे गे रही से पांचवा सवाल, धनवंतरी पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दे जाते?
0: संगवारी हो, ये पांचवा सवाल के जवाब है चिकित्सा के क्षेत्र में।
1: अव्यंग खातिर पूछे गे रही समर छठवा आखिरी सवाल रही छत्तीसगढ़ ही जनौला, और ना मौर बिन फोकला के चौर।
0: संगवारी हो, ये जनौला के जवाब हावे महुआ।
1: ललिता, ये तो रही से पाछू अंक खातिर पूछे गे रही सवाल अब ओखर सही जवाब। अब हमन हा संगवारी मन ला बता देथन कि कौन संगवारी मन हा कतका कतका सही जवाब पठो है। वैसे संगी हो, आज मोर कर पाती आ है तेमे सबो संगवारी मन हा छह सही जवाब यानी कि सबो सही जवाब ला पठो है।
0: अच्छा,
1: और हमर संगवारी मन है लुकावपाली छतवन ले जया रिया राहुल युवराज सिंह, डोंगरगांव ले राष्ट्रपाल गजभिये राधिका गजभिये बेबी अनिस्का तन्मय गजभिये, सोंगा मगरलोड ले फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी मोहित कुमार देविका रानी गजेंद्र कुमार हेयांश कुमार चंदन, साकरा सोमनी ले नारायण लाल साहू कुलवंती देवी देवेंद्र प्रताप नेहा देवी बिलिंद कुमार प्रणय कुमार रुद्रांश प्रताप साहू, खपरी कुटेला भाठा ले दुर्गा प्रसाद साहू गंगा देवी चेतन लाल टिकेश्वरी देवी राहुल मोहित कुमार प्रतीक रेवाराम कौशल्या देवी साहू, लोरमी चचेड़ी ले शंकर कोलाम संतोषी संजय कोलाम संध्या शिवम कोलाम मन।
0: बुटसरा नैला ले प्रमोद कुमार साहू बीमा वैभवी और विभूति साहू, दतरंगी भाटापारा ले हीरामणि वर्मा पारस मणि पुष्पेंद्र मणि नोखेल लाल वर्मा, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ ले महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी जोगेशपुरी ट्विंकल स्वामी, कोयलारी कवर्धा ले कैलाश चंद्राकर मुकुंद पूर्णेंद्र साहिल चंद्राकर, रानीगांव नगरी ले खिलेश कुमार साहू चित्ररेखा शुभम सेजल साहू, कुर्मा जांजगीर चापा दिलदार मीरी ज्योति जानवी दीक्षांत मीरी कनिया दमो ध्रुवा राम साहू परस राम देवांगन श्वेता योगिता केजल साहू, बंगला मटिया बालोद ले शिव कुमार अंगारे अंजनी त्रयंबिका लीना अंशुमाला आशुतोष अंगारे, सिंगारबाड़ी घुटकू ले भगत राम पटेल किशन सोनम मानवी पटेल, पथरिया भरवा ले चंदूलाल सिंगरौली नारायणी नोमेश नेहा और वान्या सिंगरौली, जवाहर नगर दुर्ग ले आरसी कामड़े करुणा मीना अश्वनी और विपुल कामड़े, बिलाईगढ़ ले रोशनलाल देवांगन कौशल्या हेमलता डिंपल देवांगन, बन बघेरा योगेश सारवा आशा नीरज नीलेश अंजनी रोशनी सारवा, पीपरपारा पालचुआ मुंगेली ले उत्तरा दिवाकर परमेश्वरी भानुप्रिया योगिता नितिन वंशिका दिवाकर, लोरमी ग्राम चचेड़ी ले कमलकांत मरावी प्रमीला नेहा पुष्पराज ऋषभ मरावी, कांकेर समलपुर ले फागुराम यादव ज्योति ओजस्वी यादव, टिकरापारा रायपुर ले लता देवी चौहान।
1: ईर किमले हमर यह संगवारी मन छह सही जवाब पठो है। पटेल नगर मलौत ले रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी गंगदीप आरजू जाजोरिया मन हा, मेघापारा लोरमी ले मोहर राम पटेल मानुराम शोभा पूनाराम बिसाहू राधे श्याम भरत राम कुशल पटेल मन, मेघापारा चिल्फी ले संगी है राम कुशल पटेल संतोषी दीपांशु दिव्या दीपांजलि दीपक टेकलाल पटेल मन, धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ ले संगी है चंदूलाल पटवा सुनीता हर्ष विनीत कुमारी कृष्टि पटवा, नवागढ़ कटैली नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत शारदा मयंक वर्मा, भाटापारा ले बचकामल मोतीलाल यादव बसंत भृगु विनय ठाकुर चोवाराम वर्मा अब्दुल मजीद कुरैसी रेहाना बेगमन, पलारी छत्तीसगढ़ ले नितेश कुमार देवांगन दुर्गा प्रसाद परागमन हा,
0: पहंदा पलारी ले नीतीश कुमार ईशान सावित्री बाई तनुजा बाई देवांगन, बागबहरा भदरसी ले पन्नालाल सेन खुशबू तारा कौशल सेन, देवरी भाटापारा ले मुकेश कुमार युवान रजक हाव्या तन्नू तानिया नित्या रजक, चांदनी चौक गंडई पंडरिया ले पवन कुमार सेन प्रभा देवी लक्की विक्की नानू रविंद्र रौनक सेन, खम्भरिया बिलासपुर ले साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति सावित्री देवी प्रतीक कुमार, भड़गा कोदवा गोड़ान ले श्याम सिंह मरावी राजकुमारी रानी रजनी राहुल पूजा मरावी, कुई ग्राम भंगी टोला ले ननका राम धुर्वे जामुनबाई फिरत राम मालती धुर्वे, ग्राम गुड़ाराज ले पेंटर मनोज साहू चित्ररेखा देवेंद्र लवीना चंचल वासनी और गरिमा साहू, गंडई टिकरी पारा ले जागेश्वर देवांगन कचरीबाई दीपक कुमार जय श्री देवांगन ऋषभ ऋचा देवांगन, भीमखोज तरपुंगी ले संतोष गुप्ता हितेश होमेश लक्ष्मी प्रतिभा गुप्ता परसा

0: अंबागढ़ चौकी, ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी तुसारणी खुमेंद्र मसिया, पटिया कला दुर्गले संजय साहू, सुजाता शशांक, सीमा साहू, चरडोगरी पपरियाले जिला कबीर धामले दुर्गा राम साहू, अजय कुमार, जय किशन कुमारी, इंद्राणी माया साहू, अड़ार नांदघाटले माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी भूपेश, दीपेश वर्मा, बाग बहरा भदरसी ले पन्ना लाल सेन, खुशबू तारा कौशल सेन, हिच्छा महासमुंद ले अदालत दास वैष्णव, मानस शांति वैष्णव, रीचा गायत्री वैष्णव।
1: इहि रिकिम ले हमर यहू संगवारी मन छह सही जवाब पठो है। लोहारी डीहिले अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी लालिमा साहू, खुशांत निशांत साहू, साले भाठा महासमुंद ले जीतू ध्रुव, केवल किरण देवांशी खेमू ध्रुव, खम्हार मुड़ाले सतीश गिरी गोस्वामी, श्रेयांश गिरी, शिवाय गिरी, एकांशी गोस्वामी मन, तेंदु भाठा मगरलोड जिला धमतरी ले उमेंद कुमार निषाद, मोहेश्वरी देविका पोषण, नूतन सुरेंद्र, यशस्वी भास्कर, किशन दिव्यांश, भूपेश, शिवा निषाद मन। हमर संगवारी है देवरी भाटा पारा ले गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री, पहाड़ा वारा ले पोषण बंछोर, चंद्र किरण प्रीति, छाया बंछोर, गेंदा टोला ले बाजार चौकले हमर संगी है वीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि योगिता, गजेंद्र गुप्ता मन। हमर संगी है सहसपुर लोहारा दनिया खुर्दले गुनी राम राजपूत, संतोषी हेमप्रभा, पुष्पराज, सूरज राजपूत, अमलीडीह कवर्धा छत्तीसगढ़ ले संतोष राजपूत, हेमप्रभा पूर्वी, गौरव राजपूत मन।
0: बठेना पाटन ले बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति प्रहलाद, राजेंद्र मुरली, खूबचंद उमेश, धनेश्वरी वर्मा, मही दही साजा ले हिमा देव, विशु विभू साहू, देवर बीजा बेरला ले दिनेश देवांगन, श्रीजन रुपेश राजपूत, सलोनी राजनांदगांव ले देवचरण साहू, हेमा वेदांत, वैभव साहू, कोलिहापुरी दुर्ग ले सूरजभान साहू, कमलाबाई साहू, सलोनी राजनांदगांव ले प्रियांशु, गौरव साहू, मड़ौदा जलाबांधा ले पारक दास साहू, किरण, रेशमा, सोनू, गुनीता साहू, आवरा डबरी ले श्यामलाल साहू, मोंगरा संगीता, केशरी, चिंकी साहू, खैरागढ़ राज लालपुर ले मोतीलाल भीमटे, सुशीला मेघा, नेहा येशु भीमटे, आर्यनगर कोहका भिलाई ले उत्तम सिंह जंघेल, मोरस अनिल, अजीत आयुष, नंदनी जंघेल, कुरासी छत्तीसगढ़ से ले पवन कुमार, क्रांति देवी, पंकज, सुस्मिता, दीपिका साहू, सुंदरपारा रोहानसी, डगेसर राम साहू, नूतन गौरव, घनश्याम साहू, चिरमिरी कुरसिया कालरी ले इंद्रभान साहू, अनुभव ऋषभ राम, सहोदर नारायण प्रसाद, दिनेश प्रसाद, कालिंद्री लहरे, गुड़ा सोनीपुरी ले दीपक पाठक, रेखा पाठक, दीप्ति और दादू पाठक।
1: इहि रिकिम ले हमर यहू संगवारी मन छह सही जवाब पठो है। कुमरदा ले ताराचंद साहू, ओम माही धर्म।

0: नलाल सेन, खुशबू तारा कौशल सेन, लच्छन पुरले राम रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश मुकेश कुमार साहू, धरसीवा बस स्टैंडले छेदू लाल यादव, सीता अर्चना अरुणा अनुराधा अल्पना यादव, रानू खुशी, प्रवीण कुमार साहू, इकबाल कुरेशी, दुर्गा पारा संतोषी नगर रायपुर ले, छन्नू लाल यादव, पुष्पलता अर्पिता, अभिनव बलदाओ, राजेश्वरी आस्था यादव, अनुराग अभिषेक डुग्गू, कान्हा यादव, छत्तीसगढ़ पलारी ले प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल, यशस्वी वर्मा, रिंगनी छत्तीसगढ़ ले दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा।
1: ता ललिता, ए तो रही से पाछू अंक खातिर पूछे गए रही सवाल और ओखर सही जवाब और सही जवाब पठोइया संगवारी मन के नाम। अब संगवारी हो, अब हमन हा आप मन ल पूछे बर जाबो आघू अंक के सवाल ल। फिर एकर ले पहली एक ठन मनोरंजन खातिर ये सुन लेथन और आप मन हा कापी और पेन ल धर के तैयार रहा।

0: संगवारी हो, अभी आप मन सुनत रहे हो माटी के सुघर गीत ला, जउन ला अपन सुघर सुर म सजाए रही नथु तोड़े और साथी मन।
1: और सुने बर चाहे रहीस ए संगवारी मन, कुन्नेवाड़ा ले देवेंद्र कुमार सोनवानी, लक्ष्मण सोनवानी, रिसाली भिलाई ले दुखू राम साहू, हेमा, उत्तम, उर्वशी, अलका, सेजल साहू, नागर डबरी बालोद ले बलीराम साहू, तोरन बाई डिगेंद्र, प्रीति, तोपेश, अमन, छवि, मेहान साहू, महादेव घाट अमलेश्वर ले मिथिलेश ठाकुर, तारनी, सूरज, सुजला ठाकुर, कांकेर संबलपुर ले फागुराम यादव, ज्योति, ओजस्वी यादव, रिंगनी छत्तीसगढ़ ले दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, कोटना पानी डोंगरगढ़ ले कैलाश कुमार मंडावी, लीलेश्वरी रूपेश, गरिमा, नोनी और दादू, नागर कोहरा ले झग्गर राम साहू, जामुन देवी, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू, कोयलारी कवर्धा ले कैलाश चंद्राकर, विकास, मुकुंद और साहिल चंद्राकर, इंदिरा चौक तखतपुर ले मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, विजय तिला जला बांधा ले ओम प्रकाश देवांगन, नोहर लाल कुमारी बाई डोगेंद्र, बिनेश्वरी सुनीति देवांगन, फुलझर ले योगेश्वर साहू, डुमेश्वरी यामिनी, मुस्कान कोकिला साहू, ढोडरी घोटिया ले महेश कुमार निषाद, रंभा रानी, निखिल नैतिक, पुष्पांजलि, स्वप्निल कुमार निषाद, खल्लारी भीम खोजले जी एल साहू, डी आर यदु, ललित चंद्राकर, छोटू राम निषाद, सह मालगी ले सुखनंदन, चंद्रवंशी, शिवरानी, आकाश, प्रतिभा, पूर्वी और पूनम चंद्रवंशी मनहा, बाग बहरा बदरसी ले पन्ना लाल सेन।
0: ललिता, संगवारी मन हा कापी और पेन लधर के तैयार हो ही तो चल संगवारी मन ला पूछ लेथन ओकर अगोरा ला दूरियाथन भाई।
1: हाँ।
0: और शुरू करथन हमार आज के क्रम सवाल जवाब अंक 230 के पहली प्रश्न ला। तो संगवारी हो, क्रम सवाल जवाब अंक 230 के हमार पहली प्रश्न आए, ए बछर बस्तर दशहरा कब ले मनाए जही।
1: तो संगवारी हो, एक क्रम के पहला प्रश्न आए, ए बछर बस्तर दशहरा कब ले मनाए जाही।
0: संगवारी हो, यहाँ खातिर हमारा दूसरा सवाल आए, इंसुलिन के प्रयोग कौन से बीमारी के उपचार में किए जाते।
1: संगवारी हो, दूसरा सवाल आए, इंसुलिन के प्रयोग कौन से बीमारी के उपचार में किए जाते।
0: यहाँ खातिर हमारा तीसरा सवाल आए संगी हो, भारत में होवैया जनगणना हा कौन से क्रम के जनगणना हरी।
1: क्रम 230 के तीसरा सवाल है संगवारी मन, भारत में होवैया जनगणना हा कौन से क्रम के जनगणना हरे।
0: ए अंक खातिर हमार चौथा सवाल है संगी हो, पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर हा कौन से कला क्षेत्र ले संबंधित थे।
1: ए अंक के चौथा सवाल आवे संगवारी हो, पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर हा कौन से कला के क्षेत्र ले संबंधित हवे।
0: ए अंक खातिर हमार पांचवा सवाल है, सुशासन तिहार कब तक मनाए जावत है।
1: ए अंक खातिर पांचवा सवाल आवे संगवारी हो, सुशासन तिहार कब ले कब तक मनाए जावत है।
0: संगी हो, अंक खातिर हमार छठवा और आखिरी सवाल है, जौनाए छत्तीसगढ़ ही जनऊला, उचकुल गुचकुल कुआं खदान 32 पेड़ मा एक पान।
1: संगवारी हो, ए अंक के आखिरी सवाल यानी छठवा सवाल हावे, छत्तीसगढ़ी जनौला, उचकुल गुचकुल कुआ खदान 32 पेड़ मा एक पान।
0: संगवारी हो, तो रीस क्रम सवाल जवाब अंक 230 के सवाल मन हा, और आप मन हा जवाब पत्र हो ओकर बर आप मन ला चाहिए हमार पता। संगवारी हो, पता लिख लेवा, आप मन पाती के माध्यम ले अपन विचार पठाना चाहू तो ओकर बर हमार पता हावे, क्रम सवाल जवाब अंक 230 द्वारा केंद्र निर्देशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 97, युववाणी अनुभाग, आकाशवाणी रायपुर, और पिन कोड आए 492001। और आप मन ईमेल के माध्यम ले अपन जवाब पठाना चाहू तो ओकर बर हमार पता हावे, airyouth9@gmail.com। तो संगवारी हो, जवाब जरूर पठो हूँ। और हमार आज के क्रम सवाल जवाब रही
1: इहें तक। संगी हो संगी ते गांव जाता बतात रहे ना।
0: हाँ संगी।
1: उहां अतका गर्मी में कैसे रह जावस?
0: कहां की गर्मी ललिता, उहां तो बर पीपर के छैहा मा मस्त धुका चलत रही थे।
1: अच्छा।
0: हाओ तरिया पार मा मंझनिया संगी मनसन बैठ के कसाड़ी और गोटा खेलत मस्त दिन पहा थे। बर के छैहा और तरिया के पार है तो मोर पसंदीदा जगह है।
1: त संगवारी हो, इही बर के छैहा के धुका ला महसूस करत सुनो ए सुघर गीत ला।

0: संगवारी हो अभी आप मन सुनत रहे माटी के सुघर गीत ला जिन ला अपन सुघर सुर में पिरो रहीन तीरेन्द्र यादू और साथी मन
1: और सुने बर चाहे रहीन धरदेई सरगाव ले चंदूलाल पटवा सुनीता हर्ष विनीत क्रिस्टी पटवा बिलईगढ़ ले रोशन देवांगन कौशल्या हेमलता डिम्पल देवांगन
0: ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए औरन को शीतल करे आप हु शीतल होए। ललिता ये सुघर दोहा के अर्थ पता है तुला?
1: हाँ तृप्ति पता है ना, एमा कबीरदास जी हा कही थे कि हमर वाणी मा हमर बोली मा अतका मिठास होना चाहिए कि हमर मन के अहंकार दूर हो जाए और सुनैया के मन घलो
0: सुनैया के मन ला घलो सुख मिले। ऐसे कहा था सब संगे संग हमरो मन ला आनंद के प्राप्ति हो है ना।
1: हाँ।
0: भाई का बात है ललिता, बहुत सुघर और सिरतोनताय संगवारी हो। मनखे हो चाहे कोई भी परानी, कोनो हा छप्पन भोग के भूखा नहीं होए, भूखा होते तब मया के और मुठा भर जुबान के। देखरे सती तो कही था संगी, घर आए पहुना ला मानबे तय भगवान, और कुछ नहीं दे सकस त कम से कम मीठा दे जुबान।

0: हास ले गुठिया ले संगवारी अभी आप मन सुनत रहे माटी के सुघर गीत ला जौन अपन सुघर सुर में पिरोरीन नकुल जायसवाल और सावित्री कहार मन
1: औ एला सुने बर चाहे रहिन अमलेश्वर ले डोमान ठाकुर सुमन ज्योति रेयांश ठाकुर डबरा पारा सोंगा मगर लोड ले कोमल सेन तोषण विनायक सेन उदान दनिया गंडई ले राम बिलास जंघेल शांति बाई तुषार साहिल कुमार जंघेल मन
0: संगी हो जेन सीख थे उही आघू बार थे सीखना एक यात्रा हरी त सीखे की प्यास लेना कभू बुझा नहीं देना चाहिए
1: हो संगी औ आज जब बहुआयामी संकट देश में आए हावे त हमन ल एकर प्रभाव अपन घर में घलो देखे बर मिली जेकर ले बचे बर हमन ल आर्थिक अनुशासन म जिए बर सीखना होही
0: हाँ ललिता त आज के यही सीख के संग आवा सुनथन ए सुघर गीत ला

0: संगवारी हो ए सुघर गीत ल अपन स्वर में सजाए रहीन विदुषी ममता चंद्राकर और साथी मन हा।
1: और सुने पर चाहरीन हमारे संगवारी मन स्कूल पारा कोड़ा पार अभनपुर ले नारायण सेन पंकज कुमार सेन मन पीपर पारा पालचुआ मुंगेली ले उत्तरा दिवाकर परमेश्वरी योगिता नितिन वंशिका दिवाकर मन ललिता बेरा हई सारा करत है ललिता और तृप्ति के जाए के बेरा होगी कही के
0: हौ संगी तो जाए के पहले हमारे संगवारी मन ला काली के कार्यक्रम ला बता देथन तसंगी हो काली के कार्यक्रम हो ही हिंदी मा पत्र मिला और युगल गीत
1: तसंगवारी हो आज के कार्यक्रम आप मन लग कैसे लागिस पाती जरूर पठो हु और खुश रहो स्वस्थ रहो मस्त रहो और सुनत रहो युवानी और अभी अपन संगवारी तृप्ति भारती
0: और मैं ललिता साहू
1: दोनों संगीला दाओ विदा नमस्कार।

0: अभी आप युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में शामिल होंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि ये भारत और नेपाल की अटूट मित्रता तथा पारंपरिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में शामिल लोगों

0: को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा ताकि विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नीट परीक्षा रद्द करने के संबंध में एक सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी जो निष्पक्ष तरीके से होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस बीच सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रोड की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जाँच दल का गठन किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं।
2: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर सुना।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो।
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे
1: हो? हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम Hello? गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी

0: एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं?
1: अरे, जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
2: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

मीडियम वेव 305.8 एक मीटर अर्थात 981 किलो हर्ट्स और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला प्रसारण कुछ ही पलों में।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार छत्तीसगढ़ी में।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग धर्मेंद्र दुबे के जय जोहार। आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री है पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा के बचत भर लोगन मल्ले ईंधन बचाए और विदेशी उत्पाद के प्रयोग कम करे के करीन विनती। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA है चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिला भर 3 मई के होए NEET UG परीक्षा ला रद्द करे के फैसला ले है। और दुर्ग जिला के कुम्हारी थाना क्षेत्र में आज संझा सिलेंडर में विस्फोट होए ले एके परिवार के 4 लोगन की मौत। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा के बचत भर लोगन मन ले ईंधन बचाए और विदेशी उत्पाद के प्रयोग कम करे के विनती करे है। गुजरात के बड़ोदरा में काली एक ठिन जनसभा में प्रधानमंत्री है पेट्रोल और डीजल के उपभोग कम करे और वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन कक्षा और वर्चुअल बैठका जैसन कोविड दौर के उपाय अपनाए के अपील कर दोहराई। यदि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव घलो पश्चिम एशिया संकट ले उपजे हालात के बीच लोगन मल्ले मदद की अपील करे है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA है चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिला बर 3 मई के होए NEET UG परीक्षा ला रद्द करे के फैसला ले है। NTA है बताइन कि सरकार है पेपर लीक के आरोप मन के पूरा जांच भर मामला ला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ला सौंपे के फैसला ले है। NTA हकीन कि परीक्षा भर नवा तारीख अलग ले अधिसूचित करे जाही। पंजीकरण विवरण उम्मीदवार के जानकारी और 3 मई के परीक्षा भर चुने गए परीक्षा केंद्र वैसने रही। एजेंसी हकीन है कि दोबारा परीक्षा भर और पंजीकरण कराए के जरूरत नहीं पड़े और परीक्षा शुल्क घलो नहीं लगाए। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाए जाते मौका में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति भवन में राखे गए कार्यक्रम में 15 नर्सिंग पेशेवर ले जुड़े नर्सिंग के क्षेत्र में बढ़िया कामकाज पर राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिन। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्स मिडवाइफ्स सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक मल्ला देगीस। उन्हें आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के मौका में छत्तीसगढ़ में घलो कतकोन कार्यक्रम हुआ थे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल है रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में रखे गए कार्यक्रम में नर्सिंग संवर्ग के पदनाम में परिवर्तन करे के घोषणा करीन। नर्सिंग सिस्टर मल्ला अब सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जाने जाही और स्टाफ नर्स के नाव नर्सिंग ऑफिसर हो ही। राज्य शासन

0: प्रदेश में चरचरावत गर्मी ल देखत स्कूल मन बर गर्मी के छुट्टी घोषित करे जाए के बावजूद कुछ एक प्राइवेट स्कूल मन डहर ले ए बेरा कक्षा लगाए जाते। एला शासन ह गंभीरता ले लेवत अपन आदेश के उल्लंघन माने हे। लोक शिक्षण संचालनालय ह शिक्षा विभाग के जम्मो संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी मन ल चिट्ठी जारी करके ऐसन प्राइवेट स्कूल मन के खिलाफ कार्रवाई करे बर कहे हे। ए बारे में बिलासपुर उच्च न्यायालय ह घलो एक ठिन याचिका दायर करे गे रही से जिला हाईकोर्ट ह संज्ञान में ले हे। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ह काली ले छत्तीसगढ़ के दो दिन के दौरा में रही। अपन प्रवास के दौरान उमन ग्रामीण विकास मंत्रालय कोती ले चलाए जात आने आने योजना मन के समीक्षा करी। संगे संग ग्रामीण विकास ले जुड़े जनप्रतिनिधि अधिकारी और हितग्राही मन ले गोटबात करी। श्री पासवान विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ले जुड़े तैयारी और ग्राम पंचायत मन में चलाए जात ग्रामीण विकास के बारे में घलो जानबाली ही। अपन प्रवास के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री स्व सहायता समूह मन के माइलोगिन और आने आने योजना मन के हितग्राही मन ले गोटबात करी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के पेंड्रा रोड में न्यायिक कर्मचारी मन बर बनाए जात आवासीय परिसर और मरवाही में नवा सिविल कोर्ट भवन बनाए के भूमि पूजन करी। ए मौका में मुख्य न्यायाधीश जिला जज और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मन ला निर्देश दिन है कि जम्मू प्रस्तावित काम ला तय करेगे मापदंड के मुताबिक कराए जाए। प्रदेश में नगर पालिका और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाई के तहत आदर्श आचार संहिता लागू होए के संग लाउडस्पीकर जैसन यंत्र के प्रयोग पर दिशा निर्देश जारी करे गए है। जौन क्षेत्र में चुनाई होइया है वहां रतिहा 10 बजे ले बिहनिया 6 बजे तक लाउडस्पीकर के प्रयोग पर रोक लगा दे गए है। चुनावी सभा और प्रचार वाले गाड़ी मन में लाउडस्पीकर लगाए पर सक्षम अधिकारी ले अनुमति लेना जरूरी होगी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचा थन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बढ़बो पांचे समाचार को दी। दुर्ग जिला के कुम्हारी थाना क्षेत्र में आज संझा सिलेंडर में विस्फोट होए ले एके परिवार के 4 जिन लोगन के मौत हो गए। इमा 1.5 साल के एक जिन नोनी घलो शामिल है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर है बतैन कि कपरी रोड स्थित एक ठिन मकान में 60 सर्किट की स्थिति आगे लग गई। आगे के चपेट में आए ले घर में रखे गैस सिलेंडर फट गए और आगे पूरा घर में फैल गए। घर में आगे लगे की स्थिति यहां रहैया परिवार के मनखे मन बाहर नहीं निकल सकिन और जिंदा जल गए। पुलिस मामला की जांच करत है। जांजगीर चांपा जिला के धुरकोट गांव में कलिंदर खाए के बाद एक झीन लड़का के मौत और 3 झीन आने लड़का मन के बीमार होए के मामला आगुआ है। बीमार लड़का मन के इलाज जिला अस्पताल में चलत है और उखर हालत सामान्य बताया जात है। प्रशासन कलिंदर के सैंपल ला जांच पर भेज दे है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में लोगन मन के स्वास्थ्य की जांच करत है। रायपुर पुलिस ऑपरेशन निश्चय के तहत गांजा तस्कर मन के खिलाफ बड़का कार्रवाई करे है। महासमुंद धमतरी और गरियाबंद जिला मन में नाकेबंदी के दौरान फेरी लगा के कपड़ा बेचे के आड़ में करे जात अंतर्राज्यीय तस्करी के खुलासा हो है। पुलिस आरोपी मन के ले 378 किलो ले ज्यादा के गांजा जब्त करे है जेखर भाव बाजार में 1,98,00,000 रूपया बताया जात है। इस कार्रवाई में 11 ठीन गाड़ी जब्त करे गए है और पुलिस 12 झीन तस्कर मन ला घलो गिरफ्तार करे है। ये तस्कर मन कपड़ा के ढेर के बीच गांजा रख के ओडिशा ले मध्य प्रदेश जावत रहिन। नारायणपुर जिला में जिला सुरक्षा बल मन माओवादी मन डहार ले लुका के रखे गए 1 करोड़ रूपया नकदी के संगे संग बड़ मात्रा में हथियार गोला बारूद विस्फोटक जिनिस और रोजे काम में अवैया जिनिस बरामद करे है। जिला के पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुरिया सुरक्षा बल मन डहार ले करे गए कार्रवाई के जानबादी बात बतैन कि बछर 2025-26 में जिला में 270 हथियार के रिकवरी हो है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांव गंवई के सड़क मन के बढ़िया रखरखाव में पूरा देश में दूसर स्थान पाए है। मध्य प्रदेश के सीहोर में राखे गए योजना के रजत जयंती समारोह में केंद्रीय

0: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ह राज्य ल सम्मानित करिन। राज्य कोती ले पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह और प्रमुख अभियंता के कटारे ह पुरस्कार लिन। प्रदेश में अब तक 32,000 किलोमीटर लंबा और 8,000 ले ज्यादा सड़क मन के नवीनीकरण करे जा चुके हैं। महासमुंद के जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव ल गैस चोरी के मामला में निलंबित कर दे गए है। पाछू 9 मई के ए मामला के खुलासा करत पुलिस जिला खाद्य अधिकारी के संगे संग 3 झन लोगन मन ल गिरफ्तार करे रहिन। आरोपी मन 6 ठिन LPG गैस कैप्सूल टैंकर मन ले गैस चोरी करके ओला 80 लाख रूपया में बेचे रहिन। हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरा होए के मौका में अवैया 30 मई के रायपुर में पत्रकारिता मारतंड उत्सव मनाया जाही। ए बारे में रायपुर के प्रेस क्लब के प्रतिनिधिमंडल मन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ले मिलके उमल्ला कार्यक्रम में शामिल होए के न्योता दिन। मुख्यमंत्री आयोजन के पोस्टर के विमोचन करिन। ए कार्यक्रम में बड़का पत्रकार संपादक और मीडिया विशेषज्ञ मन शामिल हुईन। अब पेशे मौसम के हाल। मौसम विभाग ले मिले जानबा के मुताबिक प्रदेश में काली एक दो जगह में हल्का वर्षा हो या गरज चमक के संग बूंदाबांदी हो के संभावना है। मौसम विज्ञानी आकाशवाणी समाचार ला बताएं कि प्रदेश में अवैया 4 दिन के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के बढ़ोतरी हो सकते। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। प्रधानमंत्री पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा के बचत पर लोगन मल्ले ईंधन बचाए और विदेशी उत्पाद के प्रयोग कम करे के करीन विनती। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिला भर 3 मई के होए NEET UG परीक्षा ला रद्द करे के फैसला ले है। और दुर्ग जिला के कुम्हारी थाना क्षेत्र में आज संझा सिलेंडर में विस्फोट होए ले एक परिवार के 4 जन लोगन के मौत। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यहीं सिरावत है। जय जोहार।
1: अभी आप छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:20 होने को हैं। अब संस्कृत में समाचार हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका वंदना कश्यप। आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रीय परीक्षा संस्थया अस्मिन् मासस्य तृतीये दिनांके आयोजिता नीट परीक्षा निरस्ता भविष्यतीति निर्णयः गृहीतः। भारतीय जनता दलस्य वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्वा शर्मा अनवरतम द्वितीयवारं असम राज्यस्य मुख्यमंत्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। अस्मिन् मासे 14-15 दिनांकयोः ब्रिक्स विदेश मंत्रिणा सम्मेलनस्य आतिथ्यं भारतं करिष्यति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवने आयोजिते कार्यक्रमे 15 परिचर्या वृत्तिकर्तृभ्य राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कारान् प्रदत्तवती। अपि च इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य सायंकाले अहमदाबाद नगरे गुजरात टाइटन्स अथ च सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये स्पर्धा भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रीय परीक्षा संस्थया अस्मिन् मासस्य तृतीये दिनांके आयोजिता नीट परीक्षा निरस्ता भविष्यतीति निर्णयः गृहीतः। सामाजिक माध्यमेषु प्रकाशिते संदेशे संस्थया सूचितं यत् छात्रहितं राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाल्याः विश्वसनीयता च रक्षितं एषः निर्णयः स्वीकृतः। संस्थया स्पष्टीकृतं यत् प्रश्नपत्र सम्बद्धानां आक्षेपाणां विस्तृत अन्वेषणार्थं एषः विषयः केन्द्रीय अन्वेषण अभिकरणाय प्रेषितः। एतदर्थं संस्था पूर्ण सहयोगं प्रदास्यति तथा अन्वेषणाय आवश्यकानि साहित्यानि अभिलेखानि साहाय्यं च उपलब्धं करिष्यति। केन्द्रीय संस्थाभिः आरक्षक बलैः च सह समन्वयनान्तरं प्राप्त सूचनानां आधारेण एषः निर्णयः कृतः। भारतीय जनता दलस्य वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्वा शर्मा अनवरतम द्वितीयवारं असम राज्यस्य मुख्यमंत्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। गुवाहाटी नगरस्य खानापाड़ा स्थिते पशु चिकित्सा महाविद्यालयस्य प्रांगणे आयोजिते समारोहे राज्यपालः लक्ष्मण प्रसाद आचार्यः तस्मै पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं प्रादापयत्।
3: मय श्री हिमंत विश्व शर्मा ईश्वरर नामत शपथ लौ जे विधिर द्वारा स्थापित भारत

0: एक एक शून्य शून्य शून्य एक, और हमारा फोन नंबर है 9 3 1 1 5 0 4 0 0 4। जी हाँ, 9 3 1 1 5 0 4 0 0 4।
1: ऐ परिंदे यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? ऐ परिंदे यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? पंखों को खोल, क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ दोस्तों, वक्त चाहे कितना भी अंधकार में क्यों ना लगे, बस प्रेम और उम्मीद हमेशा जिंदा रखें। दोस्तों, उम्मीद और विश्वास पर ही दुनिया कायम है, और ऐसा नहीं है कि दुनिया में हम सबके जीवन में दुख या परेशानी नहीं होती। सबके साथ जिंदगी में ऐसा होता है कि हम निराशाओं में, परेशानियों में, उदासी में पड़ जाते हैं। पर आज मैं आपको यही बताने आई हूँ कि कुछ भी क्यों ना हो, जिंदगी में कोई भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, बस आप अपनी आशा कभी नहीं छोड़िए। तो आशा बड़ी बलवान होती है। उम्मीद के सहारे व्यक्ति बड़े से बड़े कार्य को अंजाम दे देता है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति अपने भविष्य को आशाओं के साथ जोड़े बिना रह नहीं सकता। जी हाँ, बिना आशा और भरोसे के कुछ भी करना संभव नहीं। जो आशा में विश्वास करता है, उन्हें उपलब्धि की राह मिल ही जाती है। आशा या उम्मीद ईश्वर के द्वारा दिया गया ऐसा उपहार है जिन्हें हम एक दूसरे को दे सकते हैं। उम्मीद जीवन जीने का सहारा है। इसके जरिए बड़ी बड़ी जंग पर जीत हासिल की जा सकती है। कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन जिंदगी में कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब उम्मीद ही डगमगाने लगती है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? दरअसल जिंदगी में परिस्थितियां हमारे अनुरूप नहीं होती। हमने जिस चीज या जिस परिस्थिति के बारे में सोचा भी नहीं होता, वो अचानक एक चुनौती बनकर हमारे सामने खड़ी।

कहा कि सब कुछ खो देने से भी बुरा उम्मीद खो देना होता है। उम्मीद जिसके भरोसे आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए बुरे से बुरे वक्त में भी हमको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उम्मीद के कारण ही हम अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में उम्मीद का साथ नहीं छोड़ा। जी हाँ, उनका नाम है योगेश। योगेश जी को जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर ले आई जहां शायद वो हार मान लेते, पर उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में भी बड़ी समझदारी से काम लिया। उन्होंने कितनी मेहनत से अपनी फसल उगाई, खेत तैयार किए, बीज का इंतजाम किया। पर दोस्तों, फसल उगने का इंतजार तो उन्होंने किया और मेहनत भी उन्होंने बहुत की, पर समय ने उनका साथ नहीं दिया और पानी खेत पर पूरी रीति से भर गया और उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई, उनकी सारी फसल सड़ गई। सोच के देखिए क्या बीती होगी उन पर, क्या हाल हुआ होगा उनका। ये दर्द एक किसान ही समझ सकता है। दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि कई लोग ऐसे समय पर निराश होकर गलत कदम उठा लेते हैं और दुख में गम में डूब जाते हैं। पर ऐसे समय में जो हिम्मत से काम ले और अपनी आशा को कसकर पकड़ के रखे, अपनी उम्मीद का दामन थाम ले, वही जिंदगी का असली विजेता है।

0: ऐसी ही एक और सच्ची घटना के विषय में हमारी सहयोगी एना आपको एक और कहानी बताएंगी।
1: जी हाँ, ऐसी ही एक लड़की है जिनका नाम पूजा है। पूजा ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया और वो अपने दादाजी के साथ रहती थी, पर माँ बाप का इस तरह से चले जाना उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहने लगी और दुख ने उसको अंदर ही अंदर घुटन में डाल दिया था। श्रोताओं, उसका दुख और उसकी घुटन उसके अंदर आत्महत्या का विचार ले आई और उसने आत्महत्या करने की सोच ली। और एक दिन जब वो आत्महत्या करने को जाने वाली थी, उसके दादाजी रेडियो पर एक कार्यक्रम सुन रहे थे। उसके दादाजी को रेडियो सुनना बेहद पसंद था। पूजा बस घर के कुछ काम निपटा रही थी और उसने मन बना लिया था कि वो इसके बाद अपनी जिंदगी खत्म कर देगी। तभी रेडियो पर कार्यक्रम शुरू हुआ और उस दिन उस कार्यक्रम का विषय था आत्महत्या। जी हाँ, आत्महत्या। और ये शब्द जैसे ही पूजा के कान में पड़ा, उसने ध्यान से सुनना शुरू किया और फिर आगे कार्यक्रम में बताया गया कि आत्महत्या कैसे एक गलत फैसला है और आत्महत्या करने वाले के परिवार को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। श्रोताओं, जब ये सब पूजा सुन रही थी, वो फूट फूट कर रोने लगी और उसको अपने बूढ़े दादा और दादी का चेहरा नजर आया। पूजा ने एकदम अपना फैसला बदल लिया और उसने सोचा कि जो तकलीफ उसको हुई है, उसके माता पिता के जाने के बाद वो कैसे अपने दादा दादी को ऐसा दर्द दे सकती है। पूजा उठी, अपने आंसू पोंछे और खुद से उसने वायदा किया कि वह गलती से भी ऐसा गलत काम नहीं करेगी और अब से वो अपने दादा दादी की देखभाल करेगी और अपनी जिम्मेदारी को उठाएगी।

दोस्तों, देखा आपने, जिस चीज ने योगेश जी को हार नहीं मानने दी, उनको टूटने नहीं दिया, वह थी उम्मीद, आशा, होप। जी हाँ, पूजा को उस प्रोग्राम से जो मिला वह थी आशा। बस हमको भी यही करना है, हालात कैसे भी क्यों ना हो, बस अपने जीवन में आशा को पकड़ कर रखना है, कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है। दोस्तों, एक बार स्कॉटलैंड के राजा ब्रूस ने जब इंग्लैंड से युद्ध किया तो वह युद्ध हार गया और इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर कब्जा कर लिया। पर राजा ने अपना राज्य वापस पाने को बार बार युद्ध किया, पर वह बार बार असफल होता गया। 14 बार उसने युद्ध लड़ा पर नहीं जीत पाया और भागकर एक गुफा में छिप गया। पर दोस्तों, वहां उसकी नजर एक मकड़ी पर पड़ी। एक मकड़ी बार बार ऊपर चढ़ती और गिर जाती। कभी वह ऊपर चढ़ते वक्त गिर जाती और कभी जाल बनाते हुए गिर पड़ती। राजा ने गौर किया कि ऐसा लगभग 20 बार हो गया था और आखिर में मकड़ी कामयाब हुई। तभी राजा ने अपनी निराशा को छोड़ दिया। राजा ने कहा, मेरे तो अभी 7 प्रयास बाकी हैं। और राजा ने फिर से उम्मीद का दामन थाम लिया और फिर खुद को तैयार किया और जब फिर युद्ध किया तो वह जीत गया। उसको उसका राज्य वापस मिल गया। दोस्तों, आज हम आपको अपने इस प्रोग्राम से यही उत्साहित करना चाहते हैं कि परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, हालात कैसे भी क्यों ना हो, पर अगर आप अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते तो असफलता भी सफलता का रास्ता आपको दिखा देती है। कई बार बच्चे स्कूल में फेल होने पर निराश हो जाते हैं और घर पर बैठ जाते हैं। कई बार लोग अपने व्यापार में सफल ना होने पर अपना प्रयास बंद कर देते हैं। कई बार किसान भाई फसल खराब होने पर निराश होकर गलत फैसले कर लेते हैं। पर बस यही नहीं करना है दोस्तों, जबकि ये ऐसा पल है जब आपको मजबूती से उम्मीद का दामन पकड़ के रखना है, क्योंकि कहते हैं ना, हर रात के बाद सवेरा होता है और प्रकाश तक पहुंचने के लिए हमें अंधेरे से गुजरना ही पड़ता है। हर बात के पीछे भलाई होती है, पर तब जब हम अपनी आशा नहीं खोते, जब हम उम्मीद से गहरा रिश्ता जोड़ के रखते हैं। दोस्तों, किसी ने इस प्रकार कहा कि जिंदगी के रेगिस्तान में उम्मीद का घड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब दुनिया और हालात कहते हैं हार मान लो, तब यही आशा धीरे से कान में कहती है, एक बार और प्रयास करो। जी हाँ दोस्तों, बस हम यही कहना चाहते हैं कि कुछ भी हो, बस अपने जीवन में आशा का, उम्मीद का दामन पकड़ के रखिएगा। जी हाँ, किरण चाहे सूरज की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार को मिटा देती है। इसलिए जीवन में कभी आशा को ना छोड़ें, क्योंकि आप कभी ये नहीं जान सकते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लाने वाला है। आपके वर्तमान और भविष्य के बीच का सफर उम्मीद ही तय कराती है।

तो श्रोताओं, आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं या आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं।

हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़िया, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 11001, और हमारा फोन नंबर है 9311504004। जी हाँ, 9311504004। श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी बेड़िया, विकास दर्शन रेडियो प्रसारण की प्रस्तुति। हम आपको बता दें कि यह कार्यक्रम सप्ताह में 2 बार प्रसारित किया जाता है, संध्या 7:45 पर हर बुधवार और रविवार। जी हाँ, संध्या 7:45 पर हर बुधवार और रविवार। तो आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे 545.45 मीटर बैंड पर। जी हाँ, 545.45 मीटर बैंड पर। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।

0: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:45 हुए हैं। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
2: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
2: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
3: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
5: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
5: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
5: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
6: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
5: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
5: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
6: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
6: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
5: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
7: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित होने के बावजूद कक्षाएं लगाने वाले अशासकीय स्कूलों के खिलाफ होगी कार्रवाई। दुर्ग जिले के कुम्हारी क्षेत्र में सिलेंडर में विस्फोट होने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने नर्सिंग स्टाफ का पदनाम बदलने की घोषणा की। नर्सिंग सिस्टर अब सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर कहलाएंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
8: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है, कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले।
7: इधर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी पश्चिम एशिया संकट से उपजे हालात के बीच लोगों से सहयोग की अपील की है।
9: प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से वैश्विक परिदृश्य पर आह्वान किया है, पेट्रोल डीजल रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम हो, ऐसे कुछ आग्रह प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश पर जब भी इस प्रकार की परिस्थितियां आती है वो देश के नागरिकों के सहयोग से ही उस पर अमल करना संभव होता है। निश्चित रूप से हम सब भी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर अमल करने की दिशा में बढ़ेंगे।
7: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने चिकित्सीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित NEET UG परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। NTA ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। NTA ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किए जाने के बावजूद कुछ अशासकीय संस्थाओं द्वारा वर्तमान में भी कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। इसे शासन ने गंभीरता से लेते हुए अपने आदेश का उल्लंघन माना है। लोक शिक्षण संचालनालय ने शिक्षा विभाग के सभी संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर ऐसे निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। इस संबंध में बिलासपुर उच्च न्यायालय में भी एक याचिका दायर की गई थी जिसे हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा है कि यह अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर आज छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रायपुर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय में आयोजित कार्यक्रम में नर्सिंग संवर्ग के पदनाम में परिवर्तन की घोषणा की है। इसके अनुसार नर्सिंग सिस्टर अब नर्सिंग सीनियर नर्सिंग ऑफिसर कहलाएंगी जबकि स्टाफ नर्स का नाम नर्सिंग ऑफिसर होगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान कल से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अपने प्रवास के दौरान वे ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। साथ ही ग्रामीण विकास से जुड़े जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और हितग्राहियों से भी संवाद करेंगे। श्री पासवान विकसित भारत GRAMJI अधिनियम से संबंधित तैयारियों और ग्राम पंचायतों में संचालित ग्रामीण विकास गतिविधियों की भी जानकारी लेंगे। अपने प्रवास के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री स्वसहायता समूहों की महिलाओं और विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से भी

0: बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गौरेला पिंडरा मारवाही जिले के पिंडरा रोड में न्यायिक कर्मचारियों के लिए बनाए जा रहे आवासीय परिसर और मारवाही में नए सिविल कोर्ट भवन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश ने जिला जज और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी प्रस्तावित निर्माण कार्य निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कराया जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र में आज शाम सिलेंडर में विस्फोट होने से एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। इनमें 1.5 साल की एक बच्ची भी शामिल है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर ने बताया कि खपरी रोड स्थित एक मकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग की चपेट में आने से घर में रखा गैस सिलेंडर फट गया और आग तेजी से फैलने लगी, जिसके कारण घर के अंदर मौजूद परिवार के सदस्य बाहर नहीं निकल सके और जिंदा जल गए। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांजगीर चांपा जिले के धुरकोट गांव में तरबूज खाने के बाद एक बच्चे की मौत और 3 अन्य बच्चों के बीमार होने का मामला सामने आया है। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिता श्रीवास्तव ने बताया कि बिस्तर रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले के सारे तथ्यों का पता चल पाएगा।
1: जो 4 बच्चों ने कुछ तरबूज खाया था और रात में चिकन खाया था, तो उन 4 बच्चों को जिला अस्पताल जांजगीर लेके आए तो उसमें रास्ते में एक बच्चे की मौत हो गई और 3 बच्चे यहाँ पे भर्ती थे, तो उसके लिए जांच की टीम तुरंत ही वहाँ पे गांव गई उनके और वहाँ जाके और बाकी भी बच्चों की जांच की। तरबूज में कुछ कीटनाशक किस चीज से पकाया था वो नहीं जानते। बाकी जैसे कि ये पता चला है कि वो तरबूज 1 दिन पहले का कटा हुआ था और उसके बाद शाम को बच्चों ने खाया, जो कि पूरा दिन इतनी तेज गर्मी है तो उससे सड़ भी सकता है। तरबूज का सैंपल है वो फूड डिपार्टमेंट वालों लेके गए हैं और दूसरा रिपोर्ट हमारे फॉरेंसिक विभाग से आएगी, तभी पता चलेगा कि ये किस कारण से हुआ है।
0: इस बीच बच्चे का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बताया कि मृत बच्चे का बिस्तर सुरक्षित रखा गया है, जिसे जांच के लिए भेज दिया गया है। नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपा कर रखे गए करीब 1 करोड़ रुपए नकदी सहित बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुरिया ने सुरक्षा बलों द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि हाल के महीनों में जिले में 270 हथियारों की रिकवरी हुई है।
2: 47 3 SLR, 2 303 315 है, बहुत सारे मोर देन 250-300 लाइव राउंड्स हैं और साथ ही साथ अन्य दैनिक उपयोगी सामान भी मिले। ड्यूरिंग ऑपरेशन डंप से कैश रिकवरी भी हुई, तो 2 जगहों से कुल 1,64,000 रुपया जब्त हुआ है। ये पूरी कार्रवाई में STF नारायणपुर DRG हमारे BSF ITBP का एक संयुक्त योगदान रहा।
0: रायपुर पुलिस ने ऑपरेशन निश्चय के तहत गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद जिलों में संयुक्त नाकेबंदी के दौरान फेरी लगाकर कपड़ा बेचने वालों की आड़ में की जा रही अंतर्राज्यीय तस्करी का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपियों से 378 किलो से अधिक का गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 1,98,00,000 रुपये बताई गई है। कार्रवाई में 11 वाहन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने 12 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो कपड़ों के ढेर के बीच गांजा कर ओडिशा से मध्यप्रदेश ले जा रहे थे। महासमुंद के जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव को गैस चोरी के मामले में सम्मिलित पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है। बीते 9 मई को इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने जिला खाद्य अधिकारी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने 6 LPG गैस कैप्सूल टैंकरों से गैस चोरी कर उसे 80,00,000 रुपये में बेच दिया था। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के उत्कृष्ट रखरखाव में देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। मध्यप्रदेश के सीहोर में आयोजित योजना के रजत जयंती समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य को सम्मानित किया। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में कल 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञानी डॉ. गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रदेश में अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है।
3: प्रदेश में आज से लेकर आगामी 5 दिन तक मेघ गर्जन का एक्टिविटी 1-2 स्थानों पर होने की संभावना है। मेघ गर्जन के साथ तेज हवा लगभग 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा हवा चलने की संभावना है और इसके साथ साथ हल्की वर्षा भी होने की चांसेस है। अधिकतम तापमान के बारे में बात करें तो अधिकतम तापमान आज से लेकर अगले 4 दिन तक लगभग 2 से लेकर 3 डिग्री का क्रम

0: वृद्धि जो है वो एक्सपेक्टेड है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित होने के बावजूद कक्षाएं लगाने वाले अशासकीय स्कूलों के खिलाफ होगी कार्रवाई। दुर्ग जिले के कुम्हारी क्षेत्र में सिलेंडर में विस्फोट होने से एक ही परिवार के चार लोगों की मौत। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने नर्सिंग स्टाफ का पदनाम बदलने की घोषणा की। नर्सिंग सिस्टर अब सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर कहलाई जाएंगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: अभी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7 बजे हैं। अब आनंद लीजिए चित्रपट संगीत का। कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म लुटेरा से, मोनाली ठाकुर की आवाज में। गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत से सजाया है अमित त्रिवेदी ने।

चित्रपट संगीत का अगला गीत है द ग्रेट गैम्बलर से आशा भोसले की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सवारा है आर डी बर्मन ने।

चटपट संगीत को देते हैं थोड़ा सा विराम और सुनते हैं एक सूचना। शनिवार 16 मई 2026 को कार्यक्रम घर आंगन में प्रसारित होने वाले छत्तीसगढ़ी फोन इन फरमाइश कार्यक्रम जोहार बहनी के लिए श्रोताओं के फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग बुधवार 13 मई 2026 को दोपहर 12 बजे से 12:30 तक की जाएगी। इसके लिए हमारा फोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर के बाहर के श्रोता एसटीडी कोड 0771 लगाना ना भूले। तो श्रोताओं, हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। अगला गीत है फिल्म तुम्हारे लिए से लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं नक्श लायलपुरी और संगीतकार हैं जयदेव।

चित्रपट संगीत का अगला गीत है फिल्म तपस्या से किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की आवाजों में। गीतकार हैं MG हसमत और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत आप रात 8 बजे भी सुन सकेंगे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:21 हुए हैं। अब सुनिए किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

0: राम राम मनीषा।
1: राम राम मोनिका। और संगे संग कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगवारी मन लगला हमर दोनों के
0: राम राम।
1: मोनिका, आज तोर करा एक ठा में सवाल पूछूं, ठीक है? और ओकर ते हां बने सोच समझ के उत्तर देबे।
0: हां पूछ, मैं हां दहूं सही उत्तर तोला।
1: तो ध्यान से सुन रहे हैं, ना रंग हावे ना रूप हावे, फिर सबके मन भाए हावे, जिंदगी भर वो साथ निभाते, बिना एकर सब कुछ सुखा जाते, नदी नरवा बादर माये मिलते, धरती ला हरियल बनाते। ये काय जिनी सरे संगी मोनिका बता।
0: तस सुन मनीषा, बूंद बूंद मा बसे मोर जान, धरती के मैं हरो पहचान, नदी नरवा मोर घर, मोर बिन सुना संसार, प्यास लगते तो मोला मांग थो, खेती बारी मा मोला डार थो, जीवन के मैं हरो आधार, बता थो संगी टोला ओखर नाम, पानी मोर नाम, पानी मोर नाम।
1: वाह, बहुत सुंदर मोनिका, तोर जवाब सुंदर और एकदम सही दे हंसते हैं, और तोर दे के तरीका घलो बड़ सुंदर। और जानतस मोनिका, हमर जिंदगी मा वास्तव मा पानी हावे ना, देखर खातिर हमर जिंदगी हा बड़ सुघर हावे है नहीं। और ये पानी हमर धरती में हावे, यही पाए के हमर धरती ला अनोखा ग्रह घलो कह जाते।
0: मैंने तोर बात एकदम सोला आना सही है मनीषा। देख, कतका कवि है, लेखक, गीतकार मन कतका अकन रचना रचे हावे पानी।

0: के ऊपर। हमर साहित्य में घलोक विशेष स्थान पाए हवे पानी हर। ठीक वैसने है जैसे खेती खार में होते, काबर की अगर सब जिनिस के और पानी नहीं है तो फिर सब जिनिस बेकार है।
1: हाँ मोनिका, ये देख बिहनिया ले जब हमन सूत के उठन ना तब ले रात के सूतत ले पानी के अब बड़ उपयोग हवे।
0: हाँ।
1: कहूँ अगर पानी अचानक सिरा गे तो हमर काम बूता है जे में रहवे ना तिहिच में रह जाइए, है नी। पानी के बहुत जरूरत है, खेती खार मा पशु पक्षी ला मानव सब के जिंदगी के आधार हरे ये पानी। कही सकत हन पानी हावे तबे हमन हावन।
0: तबे तो हमर सियान मन कही थे पानी ले जिंदगानी, पानी ले हमर खेती किसानी। भाई पानी एक तरह से देखे जाए तो प्रकृति ले मिले वरदान है। देखना अनोखा ग्रह मने हमरे ग्रह में पानी मिलते तभी तो जीवन है। अब इसे है मनीषा गुड बात करवो, फिर उकर पहली सुनथन ये संदेश।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है अभी प्रोसेसिंग के लिए।
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: मनीषा, हम बात करते रहे कि पानी घलोक प्रकृति के मिले एक वरदान है, माने सबले कीमती चीज रही थे, अब ओला बने बचा के रखना चाहिए। और पानी है तो घलोक कीमती हवाई, इला बचाए खातिर हमला उद्यम करना है। अब ऐसे भाई कि हमला अब अलग से तो कुछ नहीं करना है, बस ये है कि कुछ जैन भी उदीन है होकर सही जानकारी लेके ओला सावधानी ले अपना के छोटे छोटे बात के ध्यान रखन तो ये काम बड़ा आसानी ले हो जाए। अब जैसे देखा होते ककरो घर छोटे गाड़ी है बड़े गाड़ी है, ककरो घर दोनों प्रकार के गाड़ी है, तो मन का करते बने पाइप में पानी नल खोल के चालू कर देन। हाँ। और पूरा गाड़ी धोल शुरू कर देते। होते का कि उमा पानी ज्यादा खराब हो जाते, पानी के ज्यादा मतलब उपयोग हो जाते। तो ऐसे है कि हम लोग तो पानी बचाना है और सीमित उपयोग करना है, तो भाई संगवारी हो एला ना ऐसे उपयोग नहीं करके बाल्टी में बने पानी लेके उमा कपड़ा लेके बने धोबो ना तो बने पोछा ही घला और पानी की बचत घला हो ही।
5: हाँ एकदम सिरतोन गोट करेस मोनी कहते हैं कि कैसे हमन पानी ला गाड़ी धोए बर कम से कम पानी में अपन गाड़ी चमका सकथन है नहीं, और वैसने है पानी के हर बूंद है बहुत कीमती है नहीं, नहीं। अब एकर मतलब पानी के उपयोगिता हम वही समझ सकत हन कि ये देखो मेरे जात हन बने गला सुखा गए और पानी नहीं मिलिस, तब हमला पानी के बूंद के कीमत समझ में आ जाते नहीं। तो यही पाए के कहूँ कहूँ जात हन और नल हमला खुल्ला दिख गए तो ओला तुरंत बंद कर देवन, काकर नल है ओकर से हमला कुछ नहीं, नल हरे पानी बहुत कीमती है तो नल ला बंद कर देवन। और कोनो मेरे ऐसे होते कि ये हमरे घर के नल है और बूंद बूंद टपकत है दिन।

0: तम कतका अगन पानी खाता होगे तो ओला पहली से प्राथमिकता देवन और ओला बने जतन के बंद करवा लेवन है नहीं बनवा लेवन तो जत के जरूरत है तत के पानी के धार ला नल के धार ला रखन है नहीं
1: और ऐसे होते ना देख अब लेकेज मन है कतकुन बखत ऐसे होते है कि बीनिया लुटते तहां ले ब्रश करम पानी ब्रश करत है नल चालू है पानी बहात है नहावत है बाल्टी में भले नहावत है बाल्टी में पानी भर के फिर का करते नल चालू कर देते बाल्टी में पानी बहात रही थे नहावत रही थे भाई छोटे छोटे लड़का मल्ले ननपन लही उमला सिखाना बहुत जरूरी है कि पानी की बचत करना है पानी की साफ सफाई के ध्यान रखना है तो उमल्ला ने ये छोटे छोटे बात अगर हम शुरू से सिखा बो तो वो घर मन की आदत में आ जाएगी अब आदत में आई तो फिर पानी तो बाँच बेच करी
0: एकदम सही कहा था मोनी कहते हैं और ये देख उसने कहूँ घर मन में गमला भी रखे नहीं नहीं तो गमला मन में घलो कहते हैं बहुत सुंदर गोट के सब मग्गा और बाल्टिक बहुत उपयोग करना चाहिए है ना ताकि जत के पानी लागत तत के हमन देवन पाइप ला डारथन एती तेती वो हाथे भर और जत का जरूरत है उतका जल्दी जल्दी जाए घलक नहीं है नहीं और यही बात कहूँ हमन खेती खार के गोट करन तो ऐसा कई ठन तकनीक आगे है जेकर ले हमला हर बूंद के फायदा मिलते जेना सीधा भूया में जाते जेकर ले हमर मन के काय ओकर जड़ ला अच्छा से पानी घलोक मिलते और उपरहा पानी घला नहीं लागे
1: माने जितना जरूरत है उतने च पानी पौधा के जड़ी में पहुंचते
0: हां
1: और इसने एक होती विधि जेला हमन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं अब गर्मी तो ओकर उपयोग नहीं हुआ है फिर कतकोन का है ना कि अभी लगवा देवे तो बरसात के वक्त में जिन पानी आते हो छत में आते ना वो इकट्ठा होके पाइप ले सीधा भूमि में जाते तो खले ये है कि पानी के जल स्तर बढ़ते और खले हमला फायदा होते अब ऐसे है मनीषा हाँ। कि गोट बात तो करबो फिर बेरा है किसानवाणी के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

संगवारी हो, बेरा है फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी के। आज के विषय है गर्मी में पशुओं की देखभाल और आहार प्रबंधन। विशेषज्ञ है डॉक्टर निधि बंजारी, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी पशु चिकित्सालय भांटागांव रायपुर। संचालन करे है मोनिका जैन, प्रस्तुत करते हैं शशि प्रकाश पांडे और तकनीकी सहयोगी आई एस खान।

0: संगवारी हो, खेती किसानी के समस्या फोन के माध्यम ले करैया वाणी हेलो किसान वाणी क्रम में आप जम्मो जन के स्वागत है। भाई आज हमारे हेलो किसान वाणी क्रम के विषय है कि गर्मी के मौसम में जिन हमारे पशुधन मन होते ओखर मन के देखभाल कौन प्रकार ले करना चाहिए, ओखर मन के आहार प्रबंधन कौन प्रकार ले होना चाहिए और ये सारी जानकारी खातिर आज हमारे संग विशेषज्ञ हवे डॉक्टर निधि बंजारी जी। आप मन हा वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी है पशु चिकित्सालय भाटा गाँव रायपुर में। डॉक्टर निधि बंजारी जी आप मन के स्वागत है क्रम में।
1: नमस्कार मैम
0: जी। डॉक्टर साहब आज के विषय ले जुड़े हमारे संगवारी मन के फोन आवा थे तो पहली सुनता हमारे संगवारी मन का जानना चाहत। हेलो हेलो किसान वाणी।
2: हाँ हेलो किसान वाणी
0: जी। भैया राम राम। कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
2: राम राम। मैं रानीगांव नगरी जिला धमतरी ले बोला। शिलेश कुमार साहू रानीगांव नगरी ले।
0: तो भैया जैसे आज हमारे हेलो किसान वाणी के विषय है गर्मी के मौसम में जिन हमारे पशुधन मन होते ओकर देखभाल कैसे करान, ओकर मन के आहार प्रबंधन कौन ढंग के करन, तो एखर ले जुड़े का जानकारी चाहिए आप ला?
2: का है अभी बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गए है तो अभी का है हमारे कोती माल मवेशी मन सब छेड़ चेहरा थे। अब अपने ज्यादा फसल नहीं है और फसल है तो मन को खैर अपन रोका छेका कर पुरा के है तो अपन पशु मन जैसे अभी पिंजरा थे चर के आखे तो एकदम से लार निकला था मुंह भर ले तो का गर्मी से थी कि का है तो ओकर बार

0: वातावरण का तापमान रहता है वो अधिक रहता है और जो उसकी पाचन की क्रियाओं के द्वारा जो उसके शरीर की हीट रहती है वो कम रहती है। लेकिन जब गर्मी का मौसम रहता है तो जो उसकी जो चयापचय की जो गर्मी रहती है उसकी मात्रा जो है वातावरण के टेम्परेचर से अधिक हो जाती है, जिसके कारण ये जो पशुओं में तापमान की अधिकता बनने से पशुओं की जो शारीरिक क्रियाएं हैं जैसे कि उनकी श्वास की गति बढ़ जाती है, पशु हांफने लगता है, मुंह से लार गिरने लगता है जैसे कि आपने बताया, तो पशुओं के शरीर में बाइकार्बोनेट आयरन की कमी हो जाती है और उसके रक्त में पीएच की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण शरीर में उसके अचानक से बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि उसके र्यूमेन में जो उसका पेट रहता है उसके अंदर जो भोजन के जो पदार्थ रहते हैं उसके जो मूवमेंट उसकी जो गति है वो धीमी हो जाती है, जिसके कारण उसके पाचन क्रिया में भी कमी आ जाती है, उसकी त्वचा के ऊपरी सतह पर रक्त का प्रभाव बढ़ जाता है जिसके कारण उसकी त्वचा जो है लाल सी हो जाती है और उसके शरीर के अंदर भी जो रक्त का प्रभाव रहता है उसकी वजह से कम हो जाता है, जिसके कारण पशु जो होता है बहुत ही ज्यादा कमजोरी फील करने लगता है, उसका जो खाने का आहार लेने की क्षमता रहती है वो भी 50% तक कम हो जाती है। तो पशुओं में इस तरह से पानी की आवश्यकता जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, तो पानी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसके लिए पशुओं को हमें हरे चारे और विटामिन ई जैसे पोषक तत्वों को अधिकता से देना चाहिए जिससे पशु के अंदर जो कमजोरी है वो ठीक हो जाए। तो हरे चारे में पानी की मात्रा भी अधिक होती है और उसके साथ ही साथ विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई के सप्लीमेंट या जो अलग से उसे पोषक आहार के रूप में देना चाहिए। और बहुत ज्यादा ही अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है और पशु अनइजी फील कर रहा है, थकान महसूस कर रहा है, तो तुरंत ही नजदीकी पशु चिकित्सालय जाकर पशु चिकित्सक से संपर्क करके उसका इलाज जरूर कराना चाहिए।
1: हाँ, और जैसे कि अभी हम पानी पिला देखें, सादा पानी हमें नमक भी मिला सकते हैं।
0: नमक मिलाना चाहिए जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि उसमें नमक, खनिज लवण और जो भी विटामिन है उसके साथ में इलेक्ट्रोलाइट जो आते हैं अलग बाजार में उपलब्ध है जो कि उसी के हिसाब से बने रहते हैं। हीट स्ट्रेस जो होता है ये गर्मी से बचाव के लिए ये मार्केट में उपलब्ध है, चाहे तो आप उसको भी ले सकते हैं या तो नमक शक्कर का घोल, गुड़ का घोल, उसको मिलाकर नींबू डालकर उसके पानी में दे सकते हैं।
2: धन्यवाद भैया।
1: धन्यवाद।
2: हेलो हेलो, किसानवाणी।
3: हाँ दीदी, राम राम।
2: राम राम भैया, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
3: हाँ, मैं भगत राम पटेल बोला था, सिंगारवाड़ी घुट बिलासपुर छत्तीसगढ़ ले।
2: जी भगत भैया, आज हमारे हेलो किसानवाणी के विषय है कि गर्मी के जिन मौसम है वो हमारे पशुधन मन की देखभाल कैसे करें, ओखर मन के आहार प्रबंधन कौन ढंग ले होना चाहिए।
3: हम डॉक्टर साहब जी मन जानना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, राम राम।
0: राम राम भैया, राम राम।
3: हाँ, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे अभी गर्भवती पशु है या फिर अभी जन्मे पशु है, उष्णा मन के गर्मी के दिन में खान पान कौन टाइप के रखे जाए जेकर से बच्चा और जिन महतारी वो स्वस्थ रहे और बढ़िया तंदुरुस्त रहे, उसके बारे में जानना चाहते हैं।
0: जी जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है भैया आपका। जो गाभिन गाय रहती है उसको, गाभिन गाय को ब्याने के 5 दिन पूर्व से ही विटामिन डी की खुराक बढ़ा दी जानी चाहिए। इसके कारण क्या होता है, जो दुग्ध ज्वर रहता है जिसको आप लोग जानते होंगे उसको रोकने में ये मददगार साबित होता है। मतलब विटामिन डी का जो खुराक है के दवाई के रूप में उसको 5 दिन पहले से दे देनी चाहिए और गाय को प्रतिदिन 50 ग्राम नमक, 40 ग्राम असी चूर्ण, 20 ग्राम खड़िया देना चाहिए और उसमें जो कॉन्सेंट्रेट की मात्रा रहती है उसको प्रतिदिन जो है 1.5 से 2 किलो गाय को देना चाहिए, 2 से 2.5 किलो भैंस को देना चाहिए अतिरिक्त, मतलब जो उसके डेली आहार है उसके अतिरिक्त 1.5 से 2 किलो गाय में दाने की मात्रा बढ़ानी चाहिए और 2 से 2.5 किलो भैंस में दाने की मात्रा बढ़ानी चाहिए। और जो गाय है जिसने तुरंत अभी बच्चा जन्म दिया है का राशन जो है वो सुपाच्य होना चाहिए, शक्तिवर्धक होना चाहिए, उपयुक्त चारे होने चाहिए जो रसीले हों, हरे हों, सुपाच्य हों, ताजे हों। आहार में 50 से 60% दलहनी चारे का होना चाहिए, मतलब जो आहार में जो चारा रहता है वो दलहनी चारा होना चाहिए, जैसे कि बरसीम हो गया, लूसन हो गया, इस तरीके के चारे, ग्वार हो गया, इसकी फली वाला चारा, इस तरीके के चारे देना चाहिए। और कॉन्सेंट्रेट जो होता है उसका जो आहार होता है वो किस तरीके से बनाना चाहिए, अलग से जो दाना रहता है उसमें अलसी की खली 25 किलो लेना चाहिए, पीसी जौ 18 किलो, पीसी जई 30 किलो, गेहूं का चोकर 25 किलो, नमक 1 किलो, असी चूर्ण 1 किलो, यह बनाकर ये जो सुपाच्य आपने कॉन्सेंट्रेट मिक्सर बनाया है इसको प्रतिदिन 1.5 से 2 किलो गाय को देना चाहिए, 2 से 2.5 किलो भैंस को देना चाहिए। और कॉन्सेंट्रेट की मात्रा उसके दूध उत्पादन पर भी निर्भर करती है। अगर कोई गाय 3 किलो मिल्क देती है प्रतिदिन तो उसे 1 किलो ये दाना आहार देना चाहिए और अगर कोई भैंस है जो 2.5 किलो दूध देती है तो उसे 1 किलो ये आहार देना चाहिए उसके दाने में अतिरिक्त। और खनिज और नमक जो रहता है वो 40 से 50 ग्राम देना चाहिए और ब्याने के तुरंत बाद, जैसे कि गाय ने बच्चा भी जन्म दिया है उसके तुरंत बाद जो भैंस है अथवा गाय है उसको 1 किलो गुड़ के साथ में 2 किलो गेहूं का चोकर तथा थोड़ा सा गर्म पानी मिलाकर इस शक्तिवर्धक राशन को उसे देना चाहिए। दूसरा बिंदु यह है कि दूध उत्पादन को देखते हुए कॉन्सेंट्रेट की मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। अगर गाय दूध उत्पादन शुरू करी है तो पहले जो आपने आहार बनाया, दाना या कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं जिसे, उसकी मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। जैसे दूध बढ़ते जाएगा तो दाने की मात्रा आप उसमें बढ़ाते जाएंगे। इस परीक्षण में गाय का उचित आहार जानने में लगभग 2 सप्ताह लग सकता है, मतलब जो आपने 1 kg कॉन्सेंट्रेट किया है 3 kg मिल्क आते तक उसको 2 सप्ताह का समय लग सकता है। स्वच्छ सुरक्षित ताजा पानी कम से कम 2 से 3 बार उसको पिलाना आवश्यक होता है।

0: से भी गाय की जो दूध रहता है उसका 87% भाग जो है जल का बना होता है, इसलिए उसको पानी की मात्रा बहुत ही पर्याप्त मात्रा में देनी चाहिए। धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: हेलो हेलो, किसान वाणी।
1: नमस्ते मोनिका जी।
2: नमस्ते भैया, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था? जी उमेंद्र भैया, आज हमारे ना हेलो किसान वाणी के विषय है कि गर्मी में जिन पशुधन होते ओखर देखभाल कौन प्रकार ले करन, ओखर मन के आहार प्रबंधन कैसे होना चाहिए, तो एक ले जुड़े का जानकारी चाहिए आप लोग?
1: गर्मी में पशु मन के देख रेख कैसे करना है, खान पान कैसे है, एकर बारे में जानकारी लेना।
2: जी तो हमारे आज के जिन विशेषज्ञ हैं डॉक्टर निधि बंजारी जी, आप मतलब बतावा थे।
0: गर्मियों के मौसम में पशुओं को लू और हीट स्ट्रेस या गर्मी का जो प्रकोप रहता है उससे बचाने के लिए हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में अगर हम इसके वजह से जो है आर्थिक नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है, जैसे कि उसके दूध उत्पादन में भारी कमी हो जाती है। उसके कारण क्या होता है, गर्मी बढ़ने से 30% खाना कम कर देती है, जिसके कारण जो दूध उत्पादन है वो 10% तक कम हो जाता है। तो ये किसान को बहुत ही आर्थिक नुकसान के लिए ये एक कारण बनता है। इसे बचाने के लिए 24 घंटे ठंडा साफ पानी होना चाहिए, छायादार हवादार स्थान में उसे रखना चाहिए, सुबह शाम उसकी चराई करानी चाहिए, मतलब सुबह के समय धूप का प्रकोप कम रहता है उस समय, और 4 बजे के बाद या 5 बजे के बाद मतलब अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से ठंडे समय में उसकी चराई करनी चाहिए। और हरा चारा मिनरल मिक्सचर को उसके संतुलित आहार में देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मिनरल मिक्सचर जो होता है कुछ कुछ आयन जो बाइकार्बोनेट आयन रहते हैं उसके शरीर में उसकी कमी हो जाती है, इसलिए मिनरल मिक्सचर, नमक, हरा चारा यह सब बहुत जरूरी होता है देना। तापमान 45 डिग्री से अधिक होने पर पशुओं की पाचन क्षमता और दूध उत्पादन कम हो जाता है, इसलिए सही प्रबंधन से ही उन्हें स्वस्थ रखा जा सकता है। पशुओं की देखभाल और आहार प्रबंधन के प्रमुख उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। पानी जो होता है ये बहुत जरूरी चीज है, पशुओं को हर समय साफ ठंडा पानी उपलब्ध कराएं, और जो पानी की खपत रहती है वो 50% से अधिक बढ़ जाती है गर्मी के समय में। दूसरा बिंदु है कि शेड और आवास, पशुओं को सीधी धूप से बचाना चाहिए, उन्हें छायादार शेड में या पक्के मकानों में रखें, छायादार जगह में रखें, छत पर घास फूस या खपरेल का उपयोग करें, ठंडा रखें, यदि संभव हो तो शेड में कूलर, मिस्ट, फॉगर या तो फिर पानी का छिड़काव करें। नहलाने का कार्य जो है पशु को 2 से 3 बार करें, ठंडे पानी से नहलाएं। ये पानी और आवास प्रबंधन के अलावा आहार प्रबंधन में आप उसका समय निर्धारित कर सकते हैं कि जैसे उसको दाना है या चारा है वो भी सुबह 10 बजे के पहले देना है और शाम को 4 से 5 बजे के बाद ठंडे समय में ही देना है, क्योंकि आहार लेने के बाद पशु के शरीर में चयापचय की प्रक्रिया के कारण, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेटाबॉलिक हीट उत्पन्न होती है जो कि वातावरण के टेम्परेचर के अलावा उसके शरीर में गर्मी की अधिकता को बढ़ा देती है, तो इसलिए चारा या दाना देने का समय सुबह 10 बजे से पहले और 4 बजे के बाद रहना चाहिए। हरा चारा अधिक देना चाहिए, अधिक हरा चारा, साइलेज या पौष्टिक चारा खिलाएं, क्योंकि यह पचाने में आसान होता है, और जो सूखा चारा रहता है उसे पचाने में समस्या आ सकती है, तो इसलिए हरे चारे की मात्रा को उसके शरीर में बढ़ाना चाहिए। और पसीने के द्वारा खनिज नष्ट होते हैं गर्मी के समय में, इसलिए पानी में खनिज मिलाना अत्यंत आवश्यक है। और इसके अलावा स्वास्थ्य में विशेष देखभाल रखनी चाहिए, गर्भवती और उच्च दूध देने वाले जो पशु हैं उनके स्वास्थ्य बहुत ध्यान रखना चाहिए। कुछ समस्या होने पर जैसे कि हाफना, खाना कम करना, एक जगह बैठ जाना और किसी भी प्रकार का व्यवहार में जो उसके है बदलाव दिखाई देता है, अत्यधिक उसको डेबिलिटी जिसको कहा जाता है मेडिकल टर्म्स में, तो उस स्थिति में उसे पशु चिकित्सक से अवश्य दिखाएं। और स्वच्छता का ध्यान रखना है, जहाँ पे वो पशु बांध रहे हैं वहाँ पे किसी भी प्रकार के मच्छर, मक्खी या किसी भी प्रकार के कीटाणु नहीं रहने चाहिए। पशुओं को हमेशा साफ जगह पे बांधना चाहिए, उनके जो गोबर है उनको पूरी तरह से साफ करके पोटाश पानी का जो घोल बनाकर शेड की सफाई के उपरांत उससे भी अच्छी तरह से धुलाई करनी चाहिए, जिससे कि जो भी कीटाणु है, बैक्टीरिया है, वो नष्ट हो जाए। इन सब बातों का अगर हम अच्छे से ध्यान रखते हैं, पशुओं को विटामिन सप्लीमेंट्स देते हैं, AD3E देते हैं अनेक प्रकार से, अगर हम उसकी हर तरह से ध्यान रखेंगे तो पशुओं को गर्मियों में कोई समस्या नहीं आएगी और उत्पादन में आपके कमी नहीं आएगी, जिससे आर्थिक नुकसान को रोका जा सकता है।
1: और गाय के दूध नहीं दे रहा है तो दूध चालू हो जाएगा मैम? दो बार हो गए बछड़ा देते, दूध ही नहीं कर रहा है।
0: गाय का अगर 2 बार बछड़ा दे चुकी है तो उसे पशु चिकित्सक के पास जाए, उसे लुगाइल आयोडीन डालकर उसका जो इंट्रा वेजाइनल, इंट्रा यूट्राइन उसकी जो क्लीनिंग होगी एक्चुअली क्या इसमें समस्या क्या आती है, जब 1-2 बार ये इस तरह की स्थिति हो जाती है तो पोषक तत्वों की कमी की वजह से विटामिन ए या विटामिन AD3E इन सब पोषक तत्वों की वजह की कमी से जो हीट में वो नहीं आ पाती है, तो हीट में जब आएगी उसके बाद वो दोबारा उसको कृत्रिम गर्भाधान पे लाया जा सकता है। उसके बाद जब वो प्रेग्नेंट होगी गाय दोबारा, तो दूध उत्पादन अपने आप नेचुरली बढ़ता है, तो आप नजदीकी पशु चिकित्सालय जाएं, उसे लुगोल साइडिन से धुलाई करवाकर अगर उसमें कोई फॉलिकल्स है, सिस्ट है, इस तरह की समस्या हो जाती है जो कि बाहरी तौर पे नहीं दिखाई देता है, इस वजह से गाय जो है हीट में नहीं आती है, तो लगातार रेंट का इंजेक्शन और रेगुलर पशु चिकित्सक के विजिट कराने के बाद आपकी गाय हीट में आएगी, जिसके पश्चात जब उसका गर्भधारण होगा फिर उसके उपरांत दूध उत्पादन फिर से आप प्राप्त कर सकते हैं।
1: धन्यवाद।
2: डॉक्टर

0: अब अपन बड़ सुघर सुघर जानकारी देवा था जिसे हमारे संगवारी मल्ला अपन बताए तो एक शब्द अपन बार बार उपयोग करत रहे हो हीट स्ट्रोक। तो ये विषय में थोड़कुन विस्तार ले बताते हो कि ये का होते खले हमारे पशुधन मल्ला हमन कैसे बचा सकते हैं।
1: हीट स्ट्रोक जो रहता है कि जो हमारा शरीर है इस शरीर में जो आहार होता है जिसके अवयव होते हैं जैसे कि अगर हमने मैंने उसको लिए बताया आपको कि मेटाबॉलिक हीट रहती है तो जो मेटाबॉलिक हीट रहती है वो मेटाबॉलिज्म जो होता है चयापचय होते हैं शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जैसे कि डाइजेशन हो गया एक्सक्रीशन हो गया ब्लड सर्कुलेशन हो गया और शरीर के सारे अंगों के सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए जितनी भी क्रियाएं जो हो रही हैं जो हमारे शरीर के द्वारा हमारे जितने भी तंत्र हैं हमारे शरीर के वो सब इस कार्य को कर रहे हैं तो उसके द्वारा हीट उत्पन्न होती है। तो जो ये मेटाबॉलिक हीट कहलाती है तो जो मेटाबॉलिक हीट रहती है वो एनवायरमेंटल हीट से जनरली कम रहती है लेकिन अगर पशु विभिन्न अवस्थाओं में है जैसे कि दूध उत्पादन की अवस्था में है या ग्रोथ की अवस्था में है या किसी तरह से प्रोडक्शन की अवस्था में है जैसे कि प्रेगनेंट है हो गया या प्रजनन की अवस्था में तो इन सभी अवस्थाओं में जो शरीर को अत्यधिक कार्य करना पड़ता है तो जब जब शरीर अत्यधिक कार्य करता है तो उसे आहार की मात्रा अगर हम उसके साथ में नहीं देते हैं तो शरीर एग्जॉस्ट हो जाता है और इसके कारण क्या होता है एनवायरमेंटल टेम्परेचर से हमारे बॉडी का टेम्परेचर अधिक हो जाता है तो शरीर की जो क्रियाएं हैं वो सुस्त पड़ जाती हैं। तो इस स्थिति में पशु का जो बाइकार्बोनेट आयन कम हो जाता है और शरीर के पीएच में जो ऑक्सीडाइजेशन की वजह से रक्त के पीएच में वृद्धि हो जाती है तो जैसे ही शरीर के पीएच में वृद्धि हो जाती है तो पीएच में वृद्धि होने के बाद शरीर में वो हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स आने लगते हैं एग्जॉशन हो जाता है पसीना आने लगता है लार गिरने लगता है कई कई बार पशु जो होता है मूर्छित भी हो जाता है। तो इसके वजह से और दूसरी बात ये है कि तो त्वचा है त्वचा के अंदर ऊपर जो ऊपरी सतह पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और अंदर जो ऑर्गन्स है उनको ब्लड की सप्लाई जो होती है वो थोड़ी देर के लिए कम मात्रा में जाने लगती है तो इसके वजह से जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं। तो इस तरीके से जो उनकी चमड़ी जो होती है अगर किसी हीट स्ट्रोक वाले एनिमल का अगर हम परीक्षण करते हैं तो हम पाते हैं कि उनकी जो चमड़ी के अंदर मांस के ऊपर ब्लड क्लॉट हो जाता है या हेमरेज देखा जाता है। तो इस तरीके से हीट स्ट्रोक एक बहुत ही गंभीर समस्या है तो इसको रोकने के लिए को मतलब एनिमल के जो आहार में हमें विटामिन AD3E विटामिन ई सी इस तरीके का इलेक्ट्रॉल और ठंडा पानी या बार बार उसको नहलाने से जो बॉडी टेम्परेचर है वो सडन थोड़ा कंट्रोल स्थिति में आ जाता है उसके बाद आप नजदीकी पशु चिकित्सालय में ले जाकर जान को बचाने के लिए जो मेडिसिन है देना बहुत आवश्यक।
0: बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ये बताते हो कि जो संगवारी मन पशुपालन करत है ओमन दो चार यंत्र के उपयोग करते हैं जैसे कि मिस्ड हे या फिर फॉगर तो ये विषय में थोड़कुन विस्तार ले बताते हो कि ये का होते और कैसे ले हमन पशुधन मल्ला लाभ दे सकते हैं गर्मी के मौसम में।
1: ये जो प्रश्न है आपका ये बहुत अच्छा प्रश्न है इसको अगर जानकारी हो जाए तो अगर इसके द्वारा हम हीट स्ट्रोक को काफी मात्रा तक सीमित कर सकते हैं। तो मिस्ट या फॉगर जो होता है शेड के अंदर लगाया जाता है पाइप का चैनलाइज सिस्टम होता है जिसके द्वारा पानी की बौछारें आती रहती है शेड पे थोड़े थोड़े देर में इसको चालू कर सकते हैं। इसको चालू करने का समय जनरली 10 बजे सुबह से जब गर्मी का प्रभाव चालू होता है उसके बाद से दिन के जो उजाले का समय रहता है जैसे कि 4 से 5 बजे तक इसको कंटिन्यू आधे घंटे चलाना है उसके बाद आधे घंटे बीच में ब्रेक कर सकते हैं फिर आधे घंटे चलाना है इस तरीके से दिन भर ये चलता रहता है। इसके लिए पानी की टंकी बनी हुई रहती है तो जो मेन पानी का जो स्टोर रहता है बोर से एक बड़ी टंकी बनी रहती है उसमें पंप के माध्यम से पाइपलाइन का कनेक्शन शेड के अंदर दिया जाता है तो वहां पे समय समय पे इसको संतुलित किया जा सकता है वहाँ सर। और इसका जो मैकेनिज्म रहता है बहुत ही आसान है किसान भाई आसानी से इसको प्रयोग में ला सकते हैं। तो मिस्ट या फॉगर एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसके द्वारा बॉडी टेम्परेचर को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है और इसे निश्चित रूप से प्रयोग करना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब अपन बड़ सुगर सुगर जानकारी देवा था तो हमारे मन में ना और ज्यादा प्रश्न पूछे की इच्छा हुआ थे तो आप मन ये बताते हो ये तो इसकी गर्मी के मौसम में हम कौन प्रकार लेकर देखभाल कर सकते हैं। अब अगर हम उखर खान पान की बात करें तो अभी जैसे गर्मी के मौसम में कहा होते ना कि हरा चारा तो मिलवे नहीं करे कतकुन जगह दिक्कत होती कतकुन संगवारी मन ओकर प्रबंधन पहले ही करके रखते तो अभी के बेरा में अगर हमन ला पशुधन मन पर हरा चारा चाहिए तो वो हमन कैसे ओकर व्यवस्था पहले ही करके रख सकते हैं।
1: तो मैं इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि गर्मी के समय में जो हरा चारा है जो उगता है जो गर्मी के समय के ही हरे चारे हैं उनका नाम आपको बता देती हूँ ताकि उसको आप लोग अपने फसल चक्र में किसान भाई अगर अपने खेत में थोड़ी सी जगह में अगर अनाज के अलावा इसको लगा दिया जाए तो आपको ये जो हरे चारे की उपलब्धता गर्मी में भी प्राप्त हो जाएगी और बहुत ही सीमित क्षेत्र में लगाकर भी अगर आप बार बार इसकी फसल की कटिंग करते जाते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा हरा चारा है जो कि बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस है वाटरी है और बहुत ही अधिक पोषक तत्व प्रदान करता है जो कि दलहनी चारे में आता है। तो इसलिए इसमें है सिम जो होता है ये एक हरा चारा होता है जो कि दलहनी होता है लूसन होता है इसमें एक मटर होता है मटर जिसको आप जानते हैं मेथी होता है तो ग्वार हो गया लोबिया हो गया इसके अलावा जो ग्रीन फॉडर में साइलेज होता है सुडान ग्रास होती है

0: इन सब का आप लोग आहार में प्रयोग कर सकते हैं, तो गर्मी के मौसम में आहार की कमी नहीं होगी
1: जी। अच्छा, अब जैसे हम मनुखर मन के देख रेख की बात करें तो भाई रोग बीमारी की समस्या तो सभी जन्म आते, और जब पशुधन मन में रोग बीमारी की समस्या आते तो दिक्कत ये होती है कि भाई हमला तो ऐसे समझ में नहीं आए कि मल्ला का समस्या आगे है, काबर की जैसे लड़का वैसे पशुधन, तो गर्मी के मौसम में हमारे पशुधन मल्ला का समस्या आ सकते।
0: गर्मी के समय में पशुओं को ये समस्या होती है कि सबसे पहले तो पशु जो है वो दूध देना बंद कर देते हैं, तो दूध देना बंद करेंगे तो उसका जो है प्रोडक्शन कम हो जाता है, ये पहली समस्या है। दूसरी समस्या है कि पशुओं की ग्रोथ जो होती है के लिए अतिरिक्त आहार की आवश्यकता होती है, और गर्मी के समय में वो आहार उसको किसान भाई अज्ञानतावश या किसी जानकारी के अभाव के कारण उसको नहीं दे पाते हैं, तो पशुओं की ग्रोथ नहीं आएगी, और ग्रोथ नहीं आएगी तो पशु की जो बॉडी की कंडीशन है तो उसके जो हर साइकिल उसकी डिले हो जाएगी, उसको फिर दूध उत्पादन आगे चल के दुधारू पशुओं में अच्छी तरह से दूध उससे प्राप्त नहीं हो पाएगा, तो ये एक समस्या आती है। और उसके अलावा अगर प्रेगनेंसी है तो प्रेग्नेंट गाय है तो उसको भी एक अतिरिक्त आहार की आवश्यकता होती है। इस तरह से अलग अलग आहार अलग अलग समय में हीट स्ट्रोक के वजह से गर्मी के प्रकोप के वजह से जो उसकी बॉडी कंडीशन है उसमें जो है पोषक तत्व की कमी होगी, मिनरल विटामिन की कमी होगी, तो न्यूट्रिशनल डिसीजेस जनरली इनमें देखी गई है, जैसे कि विटामिन ए की कमी से जो प्रॉब्लम आ सकती है, इसी तरह से अलग अलग मिनरल की कमी से अलग अलग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है, उसके कारण इसको समस्या देखनी पड़ सकती।
1: डॉक्टर साहब गुड बात है करबो, फिर हमारे संगवारी मन की फोन आवा थे तो जानथन की ओमन की का जागरूकता है का समस्या है। हेलो हेलो किसान वाणी।
2: हाँ नमस्कार मैडम जी।
1: हाँ नमस्ते भैया, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
2: मैं धमधा छत्तीसगढ़ से बोला था मैडम।
1: क्या नाम है भैया आपके?
2: मेरा गणेश नाम है मैडम, मैं नवल्टी टेलर में काम करता हूँ।
1: अच्छा भैया, आज हमारे हेलो किसान वाणी के विषय है कि गर्मी के मौसम में हमारे पशुधन मन की देखभाल कैसे करें, ओखर मन के आहार प्रबंधन कैसे होना चाहिए, तो इकले जुड़े का जानकारी चाहिए आप ला?
3: अच्छा, आप टीकाकरण के बारे में जानकारी देता हूँ मैम
0: जी। नमस्कार भैया, पशु में प्रतिबंधात्मक टीकाकरण निम्नलिखित बीमारियों के लिए किया जाता है, जैसे कि पहला तो होता है गलघोंटू बीमारी, तो गलघोंटू बीमारी जो है उसका टीका लगाने की प्रारंभिक आयु है गौवंशीय भैंसवंशीय में 6 माह है, 6 माह में उसका प्राइमरी डोज या प्रारंभिक पहला टीका जो है 6 माह में लगाया जाता है, और उसके बाद उसका प्रतिरोधक क्षमता 6 माह पे है, और उसका जो बूस्टर है वो प्रतिवर्ष लगाया जाता है, और इसे मानसून के पूर्व जून से सितंबर तक इसको गलघोंटू का टीका लगता है, उस समय गलघोंटू बीमारी जो होती है HS जो बीमारी रहती है उसका टीका लगाया जाता है पशुओं में।
2: मैम छोटे बच्चे से लेके बड़े तक को लगाते हैं ना
0: जी इसको? गलघोंटू बीमारी में 6 माह में लगाने की उसकी प्रारंभिक उम्र है, मतलब 6 माह से ऊपर भी लगा सकते हैं।
2: बछरू है, छोटा बच्चा है बछरू
0: जी,
2: और गाय जी, तो सभी को टीका लगाते हैं?
0: हाँ लगा सकते हैं, इसमें छोटा जो बच्चा है 6 माह का उसको लगाया जाता है पहले तो जी।
2: जैसे 3-4 महीने का है उसको?
0: नहीं, 6 माह उसकी प्रारंभिक आयु 6 माह है। एक टंगिया जो बीमारी होती है गलघोंटू बीमारी, छड़ रोग जी जी, एंथ्रेक्स, ये सभी का जो है 6 माह है जी जी।
2: अच्छा, टीका कहाँ से प्राप्त होगा मैम?
0: ये पशु चिकित्सालय से टीकाकरण अभियान चलाया जाता है, तो ये समय पे जो मानसून के पूर्व
2: जैसे
0: जी जी घर घर जाकर लगाया जाता है पशु चिकित्सालय द्वारा, पशु चिकित्सक के माध्यम से ये टीकाकरण कराया जाता है।
2: अगर डॉक्टर नहीं आता तो उसको बुलाने से आ जाएगा मैम?
0: हाँ, ये आप सूचना दे सकते हैं कि आपके पास ये पशु है, या पशु चिकित्सालय ले जाकर आप इसको लगवा सकते हैं। बिल्कुल,
1: धन्यवाद भैया। हेलो हेलो किसान वाणी।
4: हेलो किसान वाणी।
1: हाँ भैया, राम राम, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
4: सीताराम, मैं बोला था सारदा बिहार अमलीडी रायपुर ले, मोहन लाल जवांगल बोला था।
1: जी जी, तो मोहन भैया, आज जैसे हमारे हेलो किसान वाणी के विषय है कि गर्मी के मौसम में हमारे मन के जिन पशुधन होते ओकर देखभाल कौन प्रकार ले करना चाहिए, और ओकर मन के आहार प्रबंधन कैसे होना चाहिए, तो एकल ले जुड़े का जानकारी चाहिए आप ला?
4: जानकारी बोला चाहिए, जैसे गर्मी के अभी समय चला थे एकदम, तो ये पशुधन के जो देख रेख आहार के बारे में बताते तो थोड़ा जानकारी होती है।
1: जी जी, तो आप मतलब ये जानकारी देवे थे हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर निधि बंजारी जी। हाँ
4: जी,
0: नमस्कार भैया। पशुओं को जो आहार रहता है उसकी शरीर की अवस्था के अनुसार अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे कि अगर उत्पादन पे है जैसे दूध उत्पादन पे है, और उसके अलावा अगर प्रजनन पे है जैसे कि अगर कोई प्रेग्नेंट गाय है गाभिन है, और उसके अलावा अगर कोई बैल है जो कि कार्य कर रहा है, या कोई सांड है, तो उसके लिए सबके लिए अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग आहार होता है। तो इसके लिए जो अतिरिक्त मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है जैसे कि कंसेंट्रेट बनाया जाता है, जो दाना बनाया जाता है अलग से, उस आहार को उसके जो दैनिक आहार है उसके अतिरिक्त अपन को उसके आहार में मिलाना चाहिए। जैसे कि दूध उत्पादन पे अगर कोई गाय है तो 3 किलो दूध अगर देती है एक गाय, तो 1 किलो अतिरिक्त आहार जो है दाना वो देना चाहिए, और अगर कोई भैंस है तो अगर 2.5 किलो दूध देती है तो 1 किलो उसको अतिरिक्त आहार देना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई बैल है, तो उसके 100 किलो उसका जो अगर शरीर का भार, यदि मान लीजिए 100 किलो का एक है गाय या भैंस है, तो उस

0: हाँ, आपको एक हाँ, किलो बुल है जो अगर एक हरा चारा देना चाहिए और चार किलो उसको अतिरिक्त हरा चारा देना चाहिए और एक किलो अतिरिक्त उसको सूखा चारा देना चाहिए। मतलब एक अगर कोई वयस्क सांड है तो उसको 2 से 3 किलो अतिरिक्त आहार देना चाहिए, और अगर कोई बैल है जो गाँव में जो खेती किसानी के लिए जो उपयोग में लाए जाते हैं तो 100 किलो अगर कोई बैल है तो उसको 2.5 किलो अतिरिक्त आहार देना चाहिए, जिसमें से 2/3 हिस्सा जो होता है वो सूखा चारा होना चाहिए और 1/3 हिस्सा जो उसका मेन पार्ट है वो है ये दाने के रूप में या कंसेंट्रेट आहार के रूप में देना चाहिए। इसका मतलब आप प्रति 100 किलो पे 2.5 किलो आप सूखा अलग से आहार दे रहे हैं, उसमें से जो मेन जो आपका जो है वो है 1/3 हिस्सा कंसेंट्रेट है और उसका जो 2/3 हिस्सा है वो सूखा चारा होना चाहिए जो ड्राई फॉडर कहते हैं, उसमें से भी जो हरा चारा है वो जो है वो ज्यादा होना चाहिए और जो सूखा चारा है उसे कम होना चाहिए गर्मी के समय में, क्योंकि अगर सूखा चारा जो रहता है वो पचाने में थोड़ा दिक्कत करता है।
1: जी, मैं आजकल हरा चारा मिलत नहीं है।
0: जी जी,
1: हरा चारा कम मिलते समझ
0: जी जी, हरा चारा कम मिलता है तो हरा चारा कम मिलता है तो इसके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा में बताया है कि बरसीम आप उगा सकते हैं अपने खेत में, बरसीम, लूसन, मेथी, ये सब आप उगा सकते हैं अपने खेत में, मटर उगा सकते हैं, ग्वार उगा सकते हैं, जो कि गर्मी के समय में आराम से आपको चारे के रूप में, हरा चारा में ये सबसे उपयुक्त है, दलहनी हरा चारा है बरसीम का, इसको उगा सकते हैं। तो
1: बहुत अच्छा जानकारी देखने, बहुत धन्यवाद डॉक्टर,
0: बहुत बहुत धन्यवाद दिया।
2: संगवारी हो, फोन के माध्यम ले हेलो किसान वाणी ले हमन गोट बात करथन और खेती किसानी के समस्या, पशुधन और मछली पालन, जम्मो जिन खेती किसानी ले जुड़े दिगर काम होता है उकर समस्या के निदान जानथन हमारे विशेषज्ञ मन ले। और आज हमारे हेलो किसान वाणी के विषय ही से कि गर्मी के मौसम में पशुधन मन की देखभाल कौन प्रकार ले करन, उकर मन के खान पान मने आहार प्रबंधन कौन प्रकार ले होना चाहिए, और ये सारी जानकारी दिन डॉक्टर निधि बंजारी जी हा, आप मन हाँ वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी हवे पशु चिकित्सालय भाटा गाँव रायपुर में। डॉक्टर निधि बंजारी जी, आप मन आए हमर संगवारी मल्ला इतना सुघर सुघर और विस्तार ले जानकारी दे कि भाई गर्मी के मौसम में हमर पशुधन मन की देखरेख हमन कौन प्रकार ले कर सकथन, ओखर मन की खान पान की व्यवस्था कैसे होना चाहिए, संगे संग आप मन बड़ सुघर तरीका ले बताए कि अभी गर्मी के बेरा में हमन कौन प्रकार ले ओखर मन की खाए बर हरा चारा की व्यवस्था कर सकथन, ये सारी जानकारी दे खातिर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैम।
3: संगवारी हो, ये रहिन फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। आज के विषय रहिस गर्मी में पशुओं की देखभाल और आहार प्रबंधन। विशेषज्ञ रहिन डॉक्टर निधि बंजारी, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी पशु चिकित्सालय भाटागांव रायपुर। संचालन करे रहिन मोनिका जैनर और प्रस्तुत करते रहिन शशि प्रकाश पांडे। तकनीकी सहयोगी रहिन IAS खान।

0: संगवारी हो, आप कृषक प्रश्न मंच क्रम में बता देते हैं आज के प्रश्न। हमारा आज के प्रश्न है, गर्मी माँ पशुधन मन खातिर कौन कौन से हरा चारा उगा सकथन। एक गाँव बता देते हैं कि भाई गर्मी माँ पशुधन मन खातिर कौन कौन से हरा चारा उगा सकथन, और एक सही जवाब लिख के भेजू, फिर अवैया यही दिन आप मन के नाम पढ़वो और सही जवाब संग। तो बता देते हैं पाँचों हफ्ता का प्रश्न रही से, पाँचों हफ्ता पूछ रहे हैं कि स्मार्ट मत्स्य पालन का होते। एक सही जवाब है उन्नत प्रजाति, अच्छा वातावरण, जल के सही प्रबंधन, तालाब के सही प्रबंधन, सही बेरा, मछली बीज, ये जम्मो बात के ध्यान रखें जिन हम मत्स्य पालन करते हैं वो स्मार्ट मत्स्य पालन कहलाते। और सही जवाब भैया संगवारी मन के नाम बताई मनीषा।
1: सही जवाब भेजिया संगवारी मन के नाम में पिपरिया ले कमलकांत गुप्ता, श्रीमती रिमझिम गुप्ता, समडेल नवापारा ले मुकेश, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक और अंकु राघव गुप्ता, मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू।
0: जम्मू संगवारी मल्ला घाड़ा घाड़ा बधाई संगवारी हो। ये रही से किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: संगवारी होगे जाए के बेरा जाए के पहली बता देथन काली के कार्यक्रम। काली आज के सलामा सुनबो गर्मी स्वास्थ्य वर्धक पे एवं खाद्य पदार्थ विशेषज्ञ हुई डॉक्टर रेखा सिंह। क्रम हो ही चिट्ठी मिले और कृषक प्रश्न मंच के संग सुघर गीत संगीत तो हो बेच कर ही
1: तदेव विदा कार्यक्रम से नहीं जम्मू संगवारी मल्ला मोनिका
0: और मनीषा के।

अभी आप किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजे हैं, आइए मिलकर सुनते हैं चित्रपट संगीत।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे बेजुबान फिल्म का गीत। गीत लिखा था रविंद्र रावल ने और संगीत से संवारा था राम लक्ष्मण ने।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोट, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनो संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

एक आवश्यक सूचना सुनिए श्रोताओं। गुरुवार 14 मई 2026 को कार्यक्रम बिंदिया में प्रसारित होने वाले फोन इन फरमाइश कार्यक्रम हेलो बिंदिया के लिए श्रोताओं के फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग मंगलवार 12 मई 2026 को सुबह 11 बजे से 11:30 तक की जाएगी। इसके लिए हमारा फोन नंबर है 4003482, 4003483, 4003484। रायपुर के बाहर के श्रोता एसटीडी कोड 0771 लगाना ना भूलें। श्रोताओं, इसी प्रकार शनिवार 16 मई 2026 को कार्यक्रम घर आंगन में प्रसारित होने वाले 36 घड़ी फोन इन फरमाइश कार्यक्रम जोहार बहनी के लिए श्रोताओं के फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग बुधवार 13 मई 2026 को दोपहर 12 बजे से 12:30 तक की जाएगी। फोन नंबर वही

है 400-3482 400-3483 400-3484। रायपुर के बाहर के श्रोता एसटीडी कोड 0771 जरूर लगाएं। तो श्रोताओं, हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से ये आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत तेरे नाम। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। समीर के लिखे बोल हैं और हिमेश रेशमिया का संगीत है।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:15 हुए हैं, अब समय है, माफ कीजिएगा, 8:15 हुए हैं लोक संगीत में। आज कलाकार हैं शैलजीत साहू और साथी।

शैलजीत साहू और सावित्री का हार के स्वरों में आप सुन रहे थे यह आंचलिक गीत। और अब सुनिए नकुल जायसवाल, शैलजीत साहू और सावित्री का हार के स्वर में ये विकास गीत।

लोक संगीत में आज कलाकार थे शैलजीत साहू और साथी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:30 होने को है। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम अब हम आकाशवाणी के दिल्ली

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ जी राजारमन। राजारमन, आपका स्वागत है।
1: थैंक यू शक्ति।
0: सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी। कल दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हराया। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हुआ। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने पहले दिन जीत दर्ज की। एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंचे, जबकि 4 अन्य मुक्केबाजों ने कांस्य पदक हासिल किया। और ईस्ट बंगाल ने इंडियन विमेंस फुटबॉल लीग का खिताब जीता। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 11 ओवर में 3 विकेट खोकर 78 रन बना लिए थे। हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इससे पहले कल दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हराकर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को नई जान दी।
2: कल का दिन उतार चढ़ाव से गुजर रही दिल्ली कैपिटल्स के लिए नई उम्मीद लेकर आया, जबकि दूसरी तरफ पंजाब किंग्स की हार का सिलसिला जारी रहा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स ने 5 विकेट खोकर 210 रन बनाए, जिसमें सबसे बड़ा योगदान कप्तान श्रेयस अय्यर की 36 गेंद में नाबाद 59 रन और प्रियांश आर्य की 33 गेंद में 56 रन की पारी का रहा। दिल्ली के लिए मिचेल स्टार्क और माधव तिवारी ने 2-2 विकेट लिए। 211 के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने 33 के स्कोर तक अपने 3 विकेट खो दिए। इसके बाद टीम के निचले मध्यक्रम ने पारी को संभाला। अक्षर पटेल ने 30 गेंद में 56 रन की कप्तानी पारी खेली, जबकि डेविड मिलर ने 28 गेंद में 51 रन की तेज पारी खेली। अंत में आशुतोष ने 10 गेंदों में 24 और माधव तिवारी ने 8 गेंद में 18 रन की छोटी मगर महत्वपूर्ण पारियां खेली, जिसकी बदौलत दिल्ली ने 19 ओवर में 7 विकेट खोकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। माधव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ ही डीसी अंक तालिका में एक पायदान ऊपर चढ़कर 7वें स्थान पर आ गई है, जबकि लगातार चौथी हार के बाद पंजाब किंग्स 13 अंकों के साथ चौथे पायदान पर बनी हुई है। जया भारती, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो जिस प्रकार का कल का मुकाबला रहा राजारमन, कह सकते हैं क्या हम ये सोचें कि पंजाब किंग्स की टीम थोड़ा सा शायद ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आ रही, जो कि लगातार फील्डिंग में आप ढील दे रहे हैं, रन बनाने का मौका दे रहे हैं सामने वाली टीम को?
1: शक्ति, इस सीजन पता नहीं फील्डिंग को क्या हो गया, कई सारे कैचेस छूट रहे। अक्षर पटेल जैसे बेहतरीन फील्डर भी आसान सा कैच ड्रॉप कर रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है आईपीएल में। लेकिन दिल्ली ने जिस तरीके से जीत हासिल किया है, पंजाब के लिए ये तकलीफ पहुँचा सकती है लॉन्ग रन में। जो टेबल अगर आप देखें तो पंजाब चौथे स्थान पर है, खिसक के नीचे आ सकते हैं, वो प्लेऑफ शायद क्वालिफाई नहीं करेंगे, वो खतरा है उनके सामने। अपने गेम को संभालना होगा और फिर जो बाकी 3 मैचेस बचे हैं वो जीतने होंगे पंजाब को। लेकिन कल एक मौका था उनके पास, लेकिन जिस तरीके से फील्डिंग किया है, जिस तरीके से रन अलाउ किए हैं, हालांकि ड्यू फैक्टर काफ़ी बड़ा रहा, लेकिन पंजाब को शायद ये मैच जीतना चाहिए था, उनके हाथ में था ये मैच। और शायद डेविड मिलर की पारी जो बहुत ही बेहतरीन निकली है इन द एंड, आई थिंक दे शुड हैव वन दिस गेम पंजाब।
0: जी बिल्कुल, डेविड मिलर ने इस बार कोई गलती ना करते हुए कह सकते हैं कि टीम को जिताया, और बल्लेबाजी में वो कॉन्फिडेंस भी नजर आया, और खास

0: पांडा और श्वेत पांडा की जोड़ी को, श्वेत पर्णा पांडा की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। भारत को इस प्रतियोगिता में सिंगल्स वर्ग में खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी, जिनके मुख्य मुकाबले कल से शुरू होंगे।
1: सातवीं वरीयता प्राप्त लक्ष्य सेन पहले मैच में सिंगापुर के जैसन तेज या हेंग से खेलेंगे, जबकि आयुष शेट्टी का सामना जापान के छठी वरीयता प्राप्त विश्व चैंपियन पदक विजेता कोडाई नराओका से होगा। महिला सिंगल्स में छठी वरीयता प्राप्त सिंधु पहले दौर में चीनी ताइपे की तुंग सियू तोंग से खेलेंगी। किदंबी श्रीकांत का सामना आठवीं वरीयता प्राप्त लो किन यू से होगा। तरुण मल्लीपल्ली का सामना जापान के कोकी वातानबे से होगा। महिला वर्ग में उन्नति हुडा चौथी वरीयता प्राप्त पोनपावी चोचू वोंग से खेलेंगी, जबकि देविका सिहाग की टक्कर जापान की नत्सुकी निदायरा से और तन्वी शर्मा का सामना हिना अकेची से होगा। मालविका बंसोड पहले दौर में कनाडा की वेन यू झांग से खेलेंगी, जबकि अनमोल खरब का सामना दूसरी वरीयता प्राप्त और पूर्व ओलंपिक चैंपियन चेन युफेई से होगा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो कह सकते हैं कि सिंगल्स में भारत की दो पीढ़ियां एक साथ आपको चुनौती देते हुए नजर आएंगी। एक तरफ पीवी सिंधु जैसी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, लक्ष्य सेन है, दूसरी तरफ तन्वी शर्मा, मालविका बंसोड़, अनमोल खरब। तो एक नई पीढ़ी यहां पे आगे बढ़ रही है और कह सकते हैं कि असली उम्मीदें वहीं से होंगी।
2: बिल्कुल है और होनी भी चाहिए, लेकिन इनको अभी तक इतना अनुभव हो गया है, ये बड़े टूर्नामेंट्स में पहले दौर में या दूसरे राउंड में बाहर नहीं होना चाहिए, इनको क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक का अनुभव लेना चाहिए। संघर्ष करना पड़ेगा, इट इज़ नॉट ईजी एट द इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि बाकी खिलाड़ी खास करके चाइनीज ताइपे से हो या कोरिया से हो या इंडोनेशिया से हो या चाइना से हो ये और जापान से हो, दे आर कमिंग टू कम्पीट। लेकिन हमारे जो युवा पीढ़ी है इनको चाहिए कि अपना गेम का एक स्तर उठाएं और फिर सिंधु जैसे बने या साइना नेहवाल जैसे बने या उनसे बेहतर बने। वो बुक शायद नज़र नहीं आता है, दिखाना पड़ेगा। ये हम शायद गलत सोच रहे हैं कि उनमें भूख नहीं है, बिल्कुल है भूख, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको दिखाने की ज़रूरत है, उसको अपने जो क्षमता है उसके अनुसार खेलना पड़ेगा।
0: जी बिल्कुल, अपनी क्षमता के अनुसार खेलना होगा और उम्मीद होगी कि थॉमस कप में मिले हुए ब्रॉन्ज मेडल की चमक को और तेज़ करने के इरादे से लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी भी कल कोर्ट पर उतरेंगे। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि चार अन्य मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में कांस्य पदक हासिल किया। लक्ष्य ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में कोरिया के सोइंगविंग ली को सर्वसम्मत 5-0 के फैसले से हराया, जबकि नरेंद्र नेला को 46 किलोग्राम वर्ग, यश यादव को 50, निवेश पाल को 54 और नमन को 70 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल हुआ। तो लगातार इस प्रतियोगिता से भारत के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं और आज का दिन कह सकते हैं इतना ज़्यादा ऊँचे बेंचमार्क सेट हो गए हैं इस प्रोग्राम में कि कल 8 खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे, तो थोड़ा सा डाउन रहा एशियन अंडर 17 में बॉयज़ का प्रदर्शन आज।
2: हायर वेट कैटेगरी से, और हमेशा ये होता है शक्ति कि भारत के हेवियर वेट कैटेगरीज के बॉक्सर्स चाहे वो जूनियर्स हो या सीनियर्स हो वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन अच्छी प्रदर्शन है अभी तक। आपको कम से कम 10 मेडल शायद नज़र आ रहे हैं,
0: जी बिल्कुल,
2: 5 तो गोल्ड मेडल होंगे और 4 या 5 आपके ब्रॉन्ज मेडल्स भी कन्फर्म्ड है, गोल्ड या सिल्वर हो सकते हैं, 5 गोल्ड या सिल्वर हो सकते हैं। लेकिन बॉक्सिंग का हाल जो है, जो हो रहा है इधर, साई और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीच में जो विवाद चल रहा है, ये खेल के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात इन लड़कों से या लड़कियों से जो ताशकंद में खेल रहे हैं वो अपना फोकस वहाँ पे लगा के खेल रहे हैं, अपने घर में जो हो रहा है उस पे ध्यान ना दे के अपना बेस्ट गेम देने का प्रयास कर रहे हैं, एंड आई थिंक दैट इज़ क्रेडिटेबल।
0: जी बिल्कुल, ये प्रशंसनीय होगा कि वो BFI की तमाम बैटल्स को छोड़ करके जो बैटल वो इस समय रिंग में लड़ रहे हैं उस पर पूरा ध्यान देते हुए और उस पर एक बेहतरीन प्रदर्शन की ओर आगे बढ़ते हुए। बंगाल ने इंडियन विमेंस फुटबॉल लीग का खिताब जीत लिया है। सेतु FC और सेसा FA के बीच आज मुकाबला 1-1 से ड्रॉ होने के बाद ईस्ट बंगाल ने सफलतापूर्वक अपने खिताब का बचाव किया। नीता FA के खिलाफ अपना मैच शुरू होने से पहले मोशाल गर्ल्स के 11 मैचों में 30 अंक थे और ड्रॉ के बाद सेतु के 12 मैचों में 23 अंक हो गए, तो कह सकते हैं बैक टू बैक वापस डिफेंडिंग चैंपियन बन गया ईस्ट बंगाल इस बार।
2: नहीं, ये अच्छी बात है, महिला फुटबॉल का जो स्तर है वो उठ ही रहा है भारत में, यंगर प्लेयर्स आर डूइंग वेल और महिला टीम का रैंकिंग भी विश्व स्तर पर बेहतर है देन द मेंस टीम। लेकिन ऐसे टूर्नामेंट शायद और लंबा करना चाहिए, मैचेस ज़्यादा देने चाहिए इन लड़कियों को, तब जाके शायद भारत का स्तर

0: और बेहतर होगा।
1: जी बिल्कुल। और अब रुक करते हैं गुजरात का, जहां गुजरात के गांधीनगर में आज भव्य उद्घाटन समारोह के साथ एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता का औपचारिक शुभारंभ हुआ। हालांकि कल से स्पर्धाएं शुरू हो गई थी, जहां कोमल कोहर ने 48 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए पहला पदक अपने नाम किया था। तो भारत खेल में प्रदर्शन के तो नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, मेज़बानी के भी कुछ नए कीर्तिमान उसकी झोली में आ रहे हैं। गुजरात में कुछ भी बड़ा होता है तो नजर जाती है 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए।
0: नहीं, कई सारे विश्व चैंपियनशिप्स होने हैं, कई सारे एशियाई स्तर पे कंपटीशन होने हैं। पिछले साल एशियन तैराकी कंपटीशन हुआ था, तो बहुत कुछ होने जा रहा है भारत में। और अच्छी बात है कि हम मेज़बानी तो बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। मुझे 2010 वाला कॉमनवेल्थ गेम्स भी याद है, कई लोगों को शिकायत है लेकिन वी डिड अ ग्रेट जॉब। जब हम सोच जब मन में ठान लेते हैं कि कुछ करना है, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू होस्टिंग इंटरनेशनल इवेंट, हम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। यही देखने को मिल रहा है एशियन वेट लिफ्टिंग में भी। और लेकिन इन रिजल्ट से शायद हम बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो, क्योंकि एशियन गेम्स इस साल शायद हमारे लिए बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन होगा। लेकिन एनी मेडल इन एशियन चैम्पियनशिप इज़ अ वेलकम मेडल।
1: जी बिल्कुल, वेलकम मेडल होना चाहिए, और ख़ासकर उस खिलाड़ी के लिए जो मीराबाई चानू जैसी खिलाड़ी को रिप्लेस करके इस प्रतियोगिता में आया है। और क्योंकि नज़रें ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की मेज़बानी पर हैं, तो उम्मीद ये भी होती है जब आप मेज़बानी करें तो आपके खिलाड़ियों का प्रदर्शन सबसे बेहतर आए। और जिस तरह 2010 में हुआ था कि हम लोगों ने सबसे बेहतर प्रदर्शन दिया था तब तक का, उम्मीद होगी 2030 में भी ऐसा देखने को मिलेगा। अहमदाबाद में 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से पहले आज भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने माई इंडिया के साथ मिलकर देश में 3 जागरूकता अभियान शुरू किए हैं, जिनका मकसद देश में खेल भावना, रचनात्मकता और युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है।
2: इस अभियान के अंतर्गत प्रतिभागी कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 टॉर्च डिजाइन प्रतियोगिता, CWG रील चैलेंज और कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 क्विज में हिस्सा ले सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 टॉर्च डिजाइन प्रतियोगिता में नागरिकों को एक ऐसी टॉर्च का डिजाइन बनाना होगा जो भारत की संस्कृति, विरासत, इनोवेशन, स्थिरता और खेल में उत्कृष्टता से प्रेरित हो। यह प्रतियोगिता 11 मई से 20 मई तक ऑनलाइन चलेगी। प्रत्येक प्रतिभागी सिर्फ एक डिजाइन जमा कर सकता है। CWG रील चैलेंज में प्रतिभागी को भारत की उभरती खेल संस्कृति, स्थानीय खेल ढांचे, फिटनेस और CWG 2030 की मेजबानी को लेकर रील बनानी होगी। यह चैलेंज 7 मई से 16 मई तक चलेगा। प्रत्येक प्रतिभागी सिर्फ एक ही रील जमा कर सकता है। राष्ट्रमंडल खेल 2030 प्रश्नोत्तरी में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिन्हें 5 मिनट के भीतर पूरा करना होगा। यह प्रश्नोत्तरी 9 मई 2026 से 26 सितंबर 2026 तक खुला रहेगा और प्रत्येक सप्ताह शीर्ष 5 विजेताओं की घोषणा की जाएगी। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो ये कॉमनवेल्थ का आयोजन सिर्फ खिलाड़ियों के लिए और आयोजकों के लिए नहीं, नागरिकों के लिए भी काफ़ी कुछ लेकर के आ रहा है, और उम्मीद होगी कि बढ़ चढ़ के लोग प्रतिभाग करते हुए नजर आएंगे अपने अपने हिस्से का।
0: शक्ति, ये खेल सिर्फ खिलाड़ी के लिए नहीं है। आई थिंक ये खेल भारत का जो बढ़ावा हो रहा है, जो बेहतरी हो रही है, इसको दिखाने के लिए है और हम सबको इसमें भाग लेना चाहिए। वी शुड ऑल टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स।
1: जी बिल्कुल, चूंकि गेम सिर्फ वही नहीं जो मैदान पे खेला जाए, बात उस स्पिरिट की भी है, उस माहौल की भी है और उस जोश की भी है जो लोगों में नजर आएगा। और चलते चलते बात कर लेते हैं गोंडा में चल रही सीनियर ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट 2026 में पुरुषों की ग्रीको रोमन स्पर्धाओं का समापन हो गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में ग्रीको रोमन पदक विजेताओं की घोषणाओं के बाद अब महिला वर्ग की स्पर्धाएं होंगी, तो रैंकिंग सुधारने का मौका जो है गोंडा में इस समय भारतीय पहलवानों के सामने है। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। राजा रमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू शुक्रिया।
1: श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। CBI ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक संबंध में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। तमिलनाडु में AIADMK पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के

0: द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। जांचकर्ता अब संदिग्ध नेटवर्क के विस्तार और परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों के प्रसार से जुड़े धन के लेन देन की जाँच कर रहे हैं। दल ने कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। सूत्रों के अनुसार इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। अगले दिन 4 नीट परीक्षार्थियों को भी गिरफ्तार किया गया। उधर नासिक पुलिस ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीति स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर 2 गुटों में बट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानीसामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न देने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। सरकार को अम्मा मक्कल मुनित्र कड़गम के एकमात्र विधायक एस कामराज का भी समर्थन प्राप्त है, जिन्हें आज ही उनकी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय कल से ही विश्वास मत से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं से बैठकें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंत नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा सहित 4 मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने कुशल प्रशासक के रूप में पहचान बनाई है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। इस बीच पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति

0: अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं।
1: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक, लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। श्री शाह ने कहा कि इस कदम से अवैध खातों का तेजी से पता लगाया जा सकेगा और उन्हें समाप्त किया जा सकेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आर्थिक, तकनीकी अथवा भू राजनीतिक हर तरह की बाधाओं का सामना करने में सक्षम है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि खंडित भू राजनीतिक और व्यावसायिक परिस्थितियों के कारण दुनिया हर दिन संकटों का सामना कर रही है, लेकिन भारत ने लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसरों में परिवर्तित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की खरीद टालने और विदेश यात्रा से बचने की अपील एक सकारात्मक कदम और एहतियाती उपाय है। उन्होंने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि इस समय विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
2: विपक्ष को चाहिए कि वो पैनिक ना फैलाए, भ्रम की राजनीति ना करे और आपदा में अवसर की खोज और आविष्कार ना करें। और जिस तरह से कोविड की महामारी में भी विपक्ष ने ऐसी ही भूमिका निभाई थी, लेकिन भारत कोविड की महामारी से उभर पाया और मजबूत होकर निकल के आया, वैसे ही ये जो वैश्विक संकट है, चुनौतियां हैं इसमें, लेकिन भारत में वो मजबूती है कि इन चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ा भी रहेगा और मजबूत होकर उभर के आएगा।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
3: आईसीसीआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये आईसीएसएसआर के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी

0: भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स चिकित्सा नवाचार और स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता के क्षेत्र में देश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। आज नई दिल्ली में एम्स के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स ने किफायती दरों पर रोगी देखभाल और आधुनिक चिकित्सा के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच बंबई शेयर बाजार में लगभग 2% की गिरावट आई है। अन्य आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
2: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.9% के नुकसान से 1456 अंक लुढ़ककर 74,559 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.8% की गिरावट से 436 अंक गिरकर 23,380 के स्तर पर रहा। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 32 पैसे की गिरावट से 95.63 रुपए प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर दर्ज हुआ।
1: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। गुजरात में जनगणना का पहला चरण 1 जून से शुरू होगा। लोगों को पहली बार भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से जनगणना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। 17 से 31 मई तक लोग पोर्टल पर स्वगणना पूरी कर सकेंगे। 1 से 30 जून तक नामित जनगणना अधिकारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करने के लिए परिवारों की सूची तैयार करेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज रीभोई जिले के भोईरिम्बोग में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य के पारंपरिक रेशम उद्योग को मजबूत करना और बुनकरों के लिए बेहतर बाजार पहुंच बनाना है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के पुत्र एरवियान स्याह और बगास मोलाना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि हरिहरन अमसा कारुनन और एमआर अर्जुन तथा महिला डबल्स में रितुपर्णा श्वेतापर्णा पांडा को हार का सामना करना पड़ा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लक्ष्य फोगाट ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि 4 अन्य मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल मुकाबलों में कांस्य पदक हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए mygov.gin पर लॉगिन कर सकते हैं। सीबीआई अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु में AIADMK पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कुछ यादें अतीत की।
1: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
0: कुछ बातें वर्तमान की।
2: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ, रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
0: कुछ सपने भविष्य के।
3: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
0: कुछ किस्से अनकहे।
4: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
0: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए, इनसे मिलिए।

हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से ही आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत लुका छुपी। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत तुलसी कुमार की आवाज में। कुणाल वर्मा के लिखे गीत को संगी से सजाया है तनिष्क बागची ने।

गुरु रंधावा की आवाज में लीजिए अब सुनिए तुम्हारी सुलू फिल्म का गीत। गीतकार हैं गुरु रंधावा और संगीतकार हैं रजत नागपाल और गुरु रंधावा।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:30 हुए हैं। अब सुनिए आदिवासी जनजातीय संगीत का कार्यक्रम लोक सुधा। आज इसमें हल्बी गीत के कलाकार हैं मेघनाथ पटनायक और साथी, और कमार गीत के कलाकार हैं भोड़बोड़ा सोरी और साथी। सबसे पहले सुनिए हल्बी गीत मेघनाथ पटनायक और साथियों के स्वरों में।

0: आदिवासी जनजातीय संगीत के कार्यक्रम लोक सुधा में आप सुन रहे थे हल्बी गीत। कलाकार थे मेघनाथ पटनायक और साथी। और इसी कार्यक्रम में अब सुनिए कमार गीत। कलाकार हैं भोड़भोड़ा सोरी और साथी।
1: कोर के होय ना बलतो मंजर लेबो, कोर के होय ना बलतो मंजर ले रे, बेको को ना बलतो मंजर ले रे, ठाम ठोमा हिंड यंदा धनरे मारे ना चला, बेको को ना बलतो मंजर लेबो, ढाई कर मार तो रे मंजर लेबो, जिंगे गोडे पुका तो मंजर लेबो, धन चेड़ा जंदाय बाकी बलन जबल अंदा का कौन है न हो अंदा का कौन है न बलो न बल दे ले लारिन नानी यंदाय थामक तो माही डतरे यंदाय तो नो धामक तो माही डतरे यंदाय तो नो धन रे यंदाय मारी बारे रे चोला कूर के हो न बोलता मंजर लेबो ब्रेको को ना बोलतो मंजर लेबो गोवा पानी ना पीतो मंजर ली रे नंद तो न बोले रे को नहीं फूले डोंगा ना गिर तो मंजर लेबो धन रे यंदा बोल दे को नहीं ये सही बोलत यंदा तो न बे सूरज कुमार यंदा तो न बोले यदा बे सूरज कुमार नहाय नहाय नहाय नहाय नहाय नहाय यंदा बलो नहीं बलिया रे को नहीं बो हाय दानी हाय करम बल यंदा हाय दाई हाय करम बल यंदा केदी की दी हिंदा दी मंजर लेबो ठामक तो माहिंदा दे मंजर लेबो खाटम कोटम हिंदा दे मंजर लेबो पाट जेल या कहो मारे मंजर ले यंदा तो न बोले बो को नहीं न होए बो नाचन देवन देख यंदा फिर पैंद हो दे देना पसारो न बो नाचो बलाग इंद न मारी यंदा बा को नहीं बन हो इंद न मारी बा को नहीं बन हो बालन बला दे यंदा को नहीं बन हो यो तो न मजरा लिए यंदा तो न बो छेका यंदाय को नहीं बाके छेका को खटा ये का यान को यंदाय तो न गोड़े यब उठावे दो ये गोड़े उठावे काय भटेले पड़ फिर पैंदो जो हो देवा मंजर ले यंदा फिर पैंदो जो हो देवा मंजर ले यंदा देना पापड़ नहीं बा नाचो बलाग यंदा तो न बले बा को नहीं बनो इंदन रे चेड़ा यंदा बा मंजर ली बो यंदा को नहीं न हो तामक टोमा हिंदो ही बलाग तामक टोमा यंदा तो न कोड़ो घाट का जाय दे बा मंजर ली बो कोड़ो घाट का जाय दे बा मंजर ली बो ठा दे यंदा बा पारध या पीला झिकत या न यंदा तो न फटले बाईंधा लपले जो बसे बा मंजर लेबो कुर के हो न बोला था मंजर ले कुर के हो न बोला था मंजर ले ढोमक ढोमक ढोमक यंदा नाचो बालाग चमक चमक चमक यंदा जावे बालाग काया झाट कला रे यंदा तो न पर धिया कैबो बलन जह बल दे यंदा फोले डोंगा ढोकुर ले गेहूँ लागे दे फोले डोंगा ढोकुर ले गेहूँ लागे दे सीध मालो सोने यंदा इंडिया बासोने पट बेरा ईदा तो न शिकारी दादा नहन बहा दे यंदा नहन बना ईंद दे यंदा लाप ले यंदा तो न फट फटो न उड़न दादी यंदा तो न देना पाखड़ा झड़ झड़ो न

दरिया घरे बावलिया चाहे बलिया ना हो बलन बल दे दाना बलन बल दे दाना गाय रे दाना बार बार नींद करना हो बहुत गला रे जाते वाले ने कहा जाता माने यहाँ दाए रे वा बांदा तार जाए ताना गंद्र बाजी तारो का ना हो मटी मटी आ रे

जाने गला नायोंदाए रेवा बंदा तरिया कहियो बरोन गला योंदाए तानो बाओ मिटे झुलपा हो योंदाए तानो रायगढ़ जा तीन भवान किंदरिया याने कहवा जो खोटा कच्चा घर योंदाए ना हो मरवा जा काटक माया ने वो इतना निकलता तो नहीं धुआं।

फिर माँ दिन नानी आंदा जमक जा जमक ये मैला देना बाहो इंभो कहा बनता आंदा इंबाई खाव आंदा।

हा कर गे रे दरिया बोंदुल बलिया ना दरिया दरिया नाने दिशा देना दन पैग दे।

0: ਵੀਰਾਜੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾਏ ਸੰਸਾਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰਾ ਜਿੰਨੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸਮੇਂ ਢਾਲ ਜਾਏ ਨਾ ਬਲੋ ਨਾ ਬਲ ਜਾਏ ਨਾ
1: आदिवासी जनजातीय संगीत के कार्यक्रम लोक सुधा में आज कलाकार थे हल्बी गीत के मेघनाथ पटनायक और साथी और कमार गीत के कलाकार थे भुड़बुड़ा सोरी और साथी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु साहू का नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में पहला गीत हमने लिया है फिल्म हम दोनों से, फिल्म तुम्हारी कसम से मुकेश और आशा भोसले की आवाजों में। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सवारा है राजेश रोशन ने और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सब। भाटापारा से नारायण यदु, पुनिया यदु, राकेश यदु, आरती यदु, गोल बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित, ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान, आप हैं सादुल शहर राजस्थान से, छत्रपति संभाजी नगर से, राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश, महादेव घाट अमलेश्वर से मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज और सुजला ठाकुर, अमलेश्वर से ही डोमन ठाकुर, सुमन, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर, सिमगा से प्रदीप जैन, सविता जैन और उनके साथी, कोरदा लवन से भूधर प्रसाद वर्मा, घनश्याम प्रसाद वर्मा, गुलशन कुमार वर्मा, शिव कुमारी, हेमलता और वेद किरण वर्मा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा और आदिबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमरी डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अक्रम आसमा बेलदार, उल्ला आसमा बेलदार, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू, भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू पद्मनी रावत, शुभम सौरभ रावत, दरसीवा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना अरुणा यादव, अनुराधा अल्पना यादव, दुर्गानगर संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग अभिषेक, अलका अनामिका बलदाऊ, रानू खुशी, प्रवीण साहू और सी एल यादव, सुभाष वार्ड भाटापारा से एम एल यादव, अजय कुमार यादव, अमित अमीन, गिरीश करण यादव, युवान डाबेश यादव, महावीर वार्ड भाटापारा से अमृता यादव, पार्वती यादव, ईश्वरी यादव, लक्ष्मी यादव, प्रेरणा, डिम्पी यादव। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म तलाश से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीत को संगीत से सवारा है SD बर्मन ने और सुनना चाहा है आप सभी ने। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना अनुज आयुषी और रमेश चंद्र वर्मा। ग्राम पहारा अहिवारा से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण प्रीति और छाया बंछोर। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से विजेंद्र कुमार जयजान, छोटी गुड़िया नूर नमन और गुरक्रीत। ग्राम धुर्राबांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेत्राम और भूपेंद्र साहू। देवपुरी से भावना पटेल, राकेश पटेल, जिग्नेश मनाली और देव पटेल। खमारमुड़ा से सतीश गिरी गोस्वामी, श्रेयांश गिरी गोस्वामी। पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, सोनू वर्मा। देवपुरी से दिनेश शारवा, वेदश शारवा, ऋषभ शारवा और मनीषा शारवा। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से शेख मूसा भाईजान और राजकुमार बुडाना। शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव सैनी, राधिका और दीपिका सैनी। भाटापारा दत्तरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। रामनगर रायपुर से राजेश अम्बादे, शशिकला अम्बादे, पूजा अम्बादे। बक्सर बिहार से शरफुरुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी और आसमा नाज अंसारी। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर आदिबा। सारिमपुर बक्सर से राज SD अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुलफराज भागलपुरी। परसाटोला से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, तुषानी मसिया और खुमेंद्र मसिया। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

फिर से तो फरमाना। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। अगला गीत है फिल्म दिल तेरा दीवाना से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। शैलेंद्र के लिखे बोल हैं और उषा खन्ना का संगीत है। सुनना चाहा है भाटापारा से बचकमल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर, सोनाडी से सुब्रत चौधरी, रामचंद माखीजा का फिर सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, पूजा छुटकी, शरद और पूरा माखीजा परिवार है। बनियापारा धमतरी से

रमज़ान ख़ान सिकंदर, असरफ ख़ान, नासिर ख़ान, अयाज़ अल्फेज़ ख़ान और हजरून निशा शांति नगर भाटापारा से हैं। शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा और वाणी वर्मा। धामणी मानोरा से हैं माया डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण, प्रज्वल और दादुल्या डेरे। ग्राम दरचुरा से ददवा साहू, भूरी साहू, रेखा, मोतीलाल साहू। दतरंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा, रीना यदु और लक्ष्मीना यदु। पटेल नगर मालोट मलोट पंजाब से हैं रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, बेबी आरजू जाजोरिया। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

इंतकाम। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में इस फिल्म का गीत। गीत लिखा है राजेंद्र किशन ने और संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सब। चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियानमल अनिता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी, झूलेलाल चौक तिलदा से हरीश कमल, सेतपाल भूमिका, सुशीला दादी, निजामाबाद आंध्र प्रदेश से हैं वासुदेव सावलानी, अशोक कुमार सावलानी, हिच्छा महासमुद से अदालत दास वैष्णव, माना सतीश, ऋचा गायत्री, भीषम दास मानिकपुरी, पावर हाउस भिलाई जामुल से हैं विकास वर्मा, खुशी वर्मा, ग्रंथ वर्मा, संजय प्रधान और पूजा प्रधान, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा दामिनी वर्मा, दुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू, युवराज साहू, कोटा रायपुर से योगिता वर्मा, रुचि, खुशी और ओजल वर्मा, कोटा रायपुर से ही अरुण वर्मा, अनिल वर्मा, ईश्वर वर्मा और दिनेश सेन, सिर्री गतापार से है लावण्या साहू, उपासना साहू, देवराज साहू, ओम कुमार साहू, पुष्पराज साहू और प्रभुराम साहू। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

आपकी पसंद का अंतिम गीत सुनिए, फिल्म युवा से मधुश्री और एआर रहमान की आवाजों में। गीत लिखा है महबूब ने और संगीत से सवारा है एआर रहमान ने। सुनना चाहा है हरदेव लाल पारावाट सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव, बेमित्रा से भरत लाल सिन्हा, लव कुमार, लक्की सिन्हा, भगवान सिंह राजपूत, सुरेश कुमार सारथी और कमलकांत सारथी। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये अंतिम गीत।

इस गीत के साथ ही श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं पर समाप्त होता है। मधु को दीजिए इजाजत, नमस्कार। अभी आप श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए बसंत तिमोथी का वायलिन पर बजाया राग जन सम्मोहिनी। तबले पर संगति की है सती शंकर पांडा ने।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप बसंत तिमोथी का वायलिन पर बजाया राग जन सम्मोहिनी सुन रहे थे। तबले पर संगीतकार थे सतीश शंकर पांडा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को है। कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ

0: विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from the Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. NEET UG 2026 exam was conducted by the National Testing Agency, or NTA, on the 3rd of this month. In this case, the Rajasthan Police Special Operations Group, SOG, has so far detained 15 people. The SOG yesterday detained an alleged mastermind identified as Manish from Jaipur. Addressing a press conference on NEET exam cancellation in New Delhi, DG National Testing Agency Abhishek Singh said, NTA will conduct a re-exam for students and it will be done in a fair manner and no additional fee will be charged for the re-exam. The political situation in Tamil Nadu has turned dramatic ahead of tomorrow's floor test for the newly elected TVK government led by Joseph Vijay. The All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam has split into two groups over extending support to the government. The faction led by former Chief Minister and Party General Secretary, Edappadi K. Palaniswamy, has directed party MLAs not to support the TVK government. Senior leader Agri Krishnamurthy has warned that any MLA violating the party whip would face expulsion. Meanwhile, another faction claiming the support of 30 MLAs has elected SP Velumani as the AIADMK legislature party leader.

पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ इसी मीटर और इसी फ्रिक्वेंसी पर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

प्राइमरी से समय मिलाएंगे, 5:21, 51, 52, 53, 54 सेकेंड।

माइक नंबर वन, समय मिलाएंगे 5:23, 23, 24, 25, 26 सेकेंड। माइक नंबर टू, समय मिलाइएगा 5:23, 31, 32, 33 सेकेंड।